सुप्रभात, ये आकाशवाणी की विविध भारती सेवा का जयपुर केंद्र है। FM बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बृहस्पतिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की 31वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 21 मई सन 2026 सवेरे के 5:57 होने को हैं। अब आकाशवाणी की विविध भारती सेवा के जयपुर केंद्र की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

एफएम एंड सौदशमलव 3 मेगाहर्ट्ज पर ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा, कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती। वंदन वार।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, लोग कहते हैं कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। मैं कहता हूं खुद पर विश्वास करो, सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं। अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 195। 6:45 सुबह और शाम 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता। संगीत सरिता के अंतर्गत सुनिए श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा, भाग 10। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:30 पर हम हेराही प्यार के। आठ 8:15 पर सुनिएगा त्रिवेणी। 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा आज अभिनेता निर्माता आदित्य चोपड़ा पर। इसका पुनः प्रसारण रात 9:30 पर सुन सकते हैं। 10 सुबह पिटारा में आज के मेहमान सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत सुनेगा। इस बातचीत का आज दूसरा भाग आप सुन सकेंगे। ग्यारह 11 रंग तरंग और 12:05 पर दोपहर यादों की महफिल। 1 सुरीला सफर, 2 त्रिवेणी। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 सखी सहेली, इसके अंतर्गत सुनेगा संवाद और विकास के विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस और 1 कप चाय का अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर सुनिएगा कहानी पद्मश्री की राहीबाई सोमा पोपुरे महाराष्ट्र की बीज माता और सुनिएगा मुझे कुछ कहना है फोबिया से कैसे बचे। 4 हेलो फरमाइश और 5 छाया गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम। 4 का कार्यक्रम जयमाला सुनिएगा शाम 7 से। 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए। इनसे मिलिए में आज सुनिए गिटार वादक अनिकेत गुंदेवार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का तीसरा भाग। हवा महल में रात 8 सुनिए प्रहसन जान बची। लेखन विष्णु दत्त गौड़ का और निर्देशन जयदेव शर्मा कमल का। पर चित्रलोक 9 आपके लिए कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार। 10 छाया गीत सुनिएगा और 10:30 पर ढलती जाए रात और रात 11 रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, भाग 195।

दल बल समेत भरत के आगमन के समाचार से निषाद राज को आशंका होती है। क्या कारण है जो भरत वन में जा रहे हैं? यदि उनके मन में कपट भाव न होता तो साथ में इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों चलते? निषाद राज ने सेवकों तथा कुटुंबियों को सभी नावों को कब्जे में करके पानी में डुबो देने तथा सभी घाट रोक लेने के लिए सावधान कर दिया। कहा, सब लोग भरत से युद्ध में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं स्वयं भी स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देकर 14 भुवनों को अपने यज से उज्जवल कर दूंगा। निषाद राज की ललकार सुनकर निषादों की

एक छोटी मोटी सेना तुरंत खड़ी हो गई। सभी शूरवीरों ने कमर में छोटे छोटे तरकस बांध धनुष पर वाण चढ़ा लिए। रण के लिए ढोल बजा ही था कि बाई ओर से छींक सुनकर एक वृद्ध अनुभवी निषाद के मन में विचार आया कि भरत से मिल लेना चाहिए, शकुन शुभ है, अतः युद्ध नहीं होगा। भरत कदाचित राम को लिवाने जा रहे हैं।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी।
1: नमस्कार, भजन के सुरीले संसार से परिचय करा रहे हैं अनूप जलोटा जी। नमस्कार अनूप जी।
2: नमस्कार जी।
1: भजन के आज कौन से रंगों से हम सबको सराबोर करेंगे? हमें जहां तक याद आ रहा है एक भजन, अगर आप कहें तो उसके बारे में अगर आप बताएं।
2: कौन सा आपको याद आ रहा है?
1: इतना तो करना स्वामी जब प्राण तल अच्छा से निकले।
2: बहुत सुंदर भजन है,
1: इसके बारे में थोड़ा बताएं।
2: जी हाँ, ये भजन बहुत साल पहले मैंने इंदुबेन धानक से सुना था, जो मुंबई में ही रहती थी, फिर देवलाली शिफ्ट हो गई थी। तो वो इस भजन को बिल्कुल आंख बंद करके तन्मयता से रोते रोते गाती थी, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती थी इसमें। तो वो भजन मैंने भी गाना शुरू कर दिया और जो इसे सुनते हैं वो सच में द्रवित हो जाते हैं। भजन इतना अच्छा है, सुनाता हूँ।
1: जी बिल्कुल।

भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़ लिए कि ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं और ना भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं।

0: क्या बात है, बहुत सुंदर लगा। आपके भजन में अनूप जी, कला पक्ष और भाव पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें कुछ उदाहरण के तौर पर बताइए भाव पक्ष और कला पक्ष को।
1: कला पक्ष जो है वो संगीत है और भाव पक्ष जो है वो कविता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शब्द प्रथम, नाद द्वितीय। जो कविता है वो सामने है, संगीत उसके पीछे है। यदि हम यूं ही आलाप लेते रहें तो उसका असर नहीं होता है, लेकिन वही आलाप हम शब्दों के साथ लें तो उसका असर हो जाता है
0: जी।
1: ठुमक चलत रामचंद्र अगर गाएंगे तो लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन अगर सिर्फ आलाप में ठुमक चलत रामचंद्र गाएंगे तो उसका असर इतना नहीं होगा। इसलिए शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है, तो वो हमारा भाव पक्ष है। शब्दों के माध्यम से हम भाव प्रस्तुत करते हैं और जो संगीत की निपुणता है उससे हम कला पक्ष को उजागर करते हैं, और जब दोनों साथ में मिलके लोगों तक पहुंचते हैं तो उसका असर स्वर्गीय होता है।
0: अनूप जी, बड़ी बढ़िया बात आपने हमारे श्रोताओं को बताई, और अब
1: हनुमान जी का स्मरण कर लेते हैं।

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसी लागी लगन इस श्रृंखला की ये थी दसवीं कड़ी, और अगली कड़ी के साथ हम कल फिर उपस्थित होंगे संगीत सरिता कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर। सुनना न भूलिएगा संगीत सरिता।
1: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के लिए कीजिएगा बस थोड़ा सा इंतजार।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
3: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार दिन में 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली, प्रायोजक हैं देवदर्शन ओवरसीज।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। सबसे पहले सुनते हैं ये गीत।

0: अराउंड द वर्ल्ड इस फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे। शब्दकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुबह का तारा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं उषा मंगेशकर के आवाज में ये गीत। गीतकार हैं नूर लखनवी और संगीतकार हैं सी रामचंद्र।

भाभी ने जो घूंघट खोला तो आंख में पड़ गया कोला। खिड़की से निकाली गर्दन और भग भग बोला अंजन। भाभी ने जो घूंघट खोला तो आंख में पड़ गया।

शायरी की हवा निकल गई। जैक लगाओ, किक किक किक किक, ट्रेनिंग पहिया, अरे पंपिंग।

0: टैक्सी ड्राइवर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें थी। बोल साहिल लुधियानवी ने लिखे थे और धुन एसटी परमन ने बनाई थी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं। अंतराल के बाद फिर से उपस्थित होंगे।
1: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
2: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
1: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
2: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
1: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: अंतराल के बाद फिर से उपस्थित हैं और आपको सुनवा रहे हैं ये गाना। शबाब फिल्म का ये गीत।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में शबाब फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इस गीत को शकील बदायूनी ने लिखा था और नौशाद ने इस गीत की धुन बनाई थी।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: बूट पॉलिश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाजें थीं। बोल शैलेंद्र ने लिखे थे और धुन शंकर जयकिशन ने बनाई थी। और इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। सविता सिंह को नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्म

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस बहुत थोड़ा सा इंतजार।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जो आओ तो प्यार आ जाए, ये गीत आप सुन रहे थे सखी रॉबिन फिल्म से और मन्ना डे सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना। इसे योगेश ने लिखा था और रॉबिन बैनर्जी का संगीत था। वल्लाह क्या बात है, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: बल्ला क्या बात है। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थीं। इस गीत को प्रेम धवन ने लिखा था और रोशन ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

एक नजर किसी ने देखा, रंगोली फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे। बोल शैलेंद्र ने लिखे थे, तर्ज शंकर जयकिशन ने बनाई थी।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के।

0: बदली बदली दुनिया है मेरी, जादू है तेरे नैनन का बहुत ही सुंदर सा गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में आप इससे सुन रहे थे। शब्दकार शैलेंद्र थे और संगीतकार एस एन त्रिपाठी।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आपने सुना शकील बदायूनी का लिखा गीत, संगीतकार थे नौशाद, फिल्म का नाम सन ऑफ इंडिया। हम है राही प्यार के कार्यक्रम में, अब सुनिए ये गाना। फिल्म टावर हाउस, आवाज़ें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की।

प्रोफेसर फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में आपने अभी सुना, और शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन ने धुन बनाई थी। ये गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इसी गाने के साथ ही आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्ते।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
5: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
4: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
4: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
9: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
4: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताज़ा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
10: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताज़ा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
4: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमरीका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
11: अमरीका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
4: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नैनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
12: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
4: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, बच्चे कच्चे घड़े की तरह होते हैं। बचपन में उनकी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी शरारतें, रूठना मनाना, उनके मासूम सवाल बहुत प्यारे लगते हैं। उनकी नटखट जिद भी बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि उस जिद में प्यार, स्नेह, अपनापन भरा होता है। जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी को आकार देता है, उसी तरह माता पिता के द्वारा स्नेह सिंचित बच्चों का मन भी धीरे धीरे सुंदर रूप लेता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है और किशोरावस्था और युवावस्था की ओर बढ़ते हैं, उनके भीतर अपनी सोच, अपनी पसंद और अपनी पहचान बनने लगती है।

आजकल बच्चों और युवाओं में क्रोध और जिद की अधिकता हो रही है। हर बात पर उनकी ये जिद होती है कि वो ही सही हैं, बाकी सब गलत। बड़ों की बातों पर विश्वास ना करते हुए पुराने जमाने की सोच बताकर नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी बात मनवाने की जिद और बड़ों की बातों पर असहमति उनकी बढ़ने लगती है। यही वो समय होता है जब वो खुद को समझे जाने की अपेक्षा रखते हैं। बहुत सारे सवाल उनके जहन में होते हैं और आत्मसम्मान उन्हें बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन शब्दों में उसे वो व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए उनका व्यवहार बदलता हुआ दिखाई देता है। जबकि भीतर से वो बहुत अधिक स्नेह, प्रेम, विश्वास और अपनापन खोज रहे होते हैं, अत्यधिक ऊर्जा से भरे होते हैं।

अक्सर जिद और गुस्से का कारण केवल बिगड़ना नहीं होता और बच्चों और युवाओं की ये जिद अचानक नहीं आ गई, बल्कि आजकल के माहौल की ही देन है, जहां ज्ञान और जानकारी तो बहुत है लेकिन अनुभव बहुत कम। और भी बहुत से कारण हैं, जैसे करियर का प्रेशर, मन की उलझने, अकेलापन और उनकी बात ना सुने जाने, ना समझे जाने की भावना आदि आदि। ये वो समय है जब इन्हें प्यार और स्नेह की बहुत अधिक जरूरत होती है और ज्यादातर माता पिता इन्हें तमाम कारणों की वजह से ये समय नहीं दे पाते। यदि बच्चों युवाओं को समय निकालकर धैर्य से उन्हें सुना जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए और प्यार से सही गलत क्या है ये बताया जाए और उनसे बातचीत किया जाए, तो उनका स्वभाव धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। बच्चों और युवाओं के जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए परिवार और समाज को आगे आना होगा, जिससे उन्हें ये एहसास न हो कि हम अकेले हैं। उनके भीतर स्नेह और सहिष्णुता का बीज बोना होगा।

जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
3: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है।
2: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
3: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
4: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
5: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देखकर ही खरीदें।
6: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार दिन में 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली। प्रायोजक हैं देवदर्शन ओवरसीज।
7: नमस्कार, आप सभी को सविता सिंह का प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।
8: ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आए।
1: बंडी और बबली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, गुलजार के बोल थे, शंकर एहसान लॉय की तर्ज थी, शंकर महादेवन, सौम्या राय और साथियों की ये आवाजें आपने सुनी इस गीत में।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
3: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
4: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
5: शुक्रिया, शुक्रिया।
4: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: तनु वेट्स मनु फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें सुनिधि चौहान, उज्जैनी मुखर्जी, नीलाद्री देवनाथ और साथियों की थी। राजशेखर ने इस गीत को लिखा था और कृष्णा ने इस गीत की धुन बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

ऐश्वर्या कुमार, दर्शना मेनन, रीना गिलबर्ट, विद्या गोपाल और यशिका सिक्का की आवाज़ों में आप एनिमी फिल्म का गीत सुन रहे थे। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। दोस्तों, आज इंटरनेशनल टी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के चाय के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को उजागर करना, चाय के उत्पादन को बढ़ावा देना और इसके साथ जुड़े किसानों और श्रमिकों के अधिकारों और बेहतर कार्यस्थिति और कार्यस्थलों के प्रति जागरूकता फैलाना। दोस्तों, अलसाई सुबह हो या काम की थकान हो या फिर सुकून भरी शाम, चाहे अकेले हो, परिवार के साथ या फिर दोस्तों के साथ, चाय एक पेय पदार्थ नहीं है बल्कि ये हमारे अपनेपन का, बातचीत की मधुरता का और सुकून का प्रतीक है। चाय पीना केवल स्वाद या आदत नहीं, ये भावनाओं के जुड़ाव का भी हिस्सा है। सुनते हैं अब ये गीत।

0: नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: हाँ।
0: तेरी कसम आऊंगा।
2: दोस्तों, चाय की बड़े सुंदर रंग हैं और कई रंग हैं। लोगों की अपनी अपनी पसंद है। कभी ब्लैक टी, अदरक वाली चाय और कभी कुल्हड़ वाली चाय। इन सब की अलग अलग मिठास है। कुल्हड़ वाली चाय तो हमारे सफर को ही यादगार बना देती है ना। शायद यही वजह है कि चाय हमारे दैनिक जीवन का सबसे लोकप्रिय हिस्सा बन गई है। बहरहाल, अभी जो गीत आप सुन रहे थे, इसे हमने सौतन फिल्म से लिया था। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें थी। सावन कुमार ने इस गीत को लिखा था। उषा खन्ना ने इस गीत की धुन बनाई थी। और अब

0: अभी आप सुन रहे थे भारत की गूंज प्रोग्राम। ये आकाशवाणी की विविध भारती सेवा का जयपुर केंद्र है, एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 9 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, राज्य में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध, आम जन को घबराने की आवश्यकता नहीं। और प्रदेश में आज पहली बार गोडावण दिवस मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली दौरा पूरा कर नई दिल्ली लौट आए हैं। भारत और इटली ने कल अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की। दोनों देशों ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, समुद्री परिवहन और बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने टैक्स से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस बयान में कहा कि भारत इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक व्यवहारिक और भविष्यन्मुखी रोडमैप देगी।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई।

0: बैठक 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं और फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबैट सामग्री और अपुष्ट जानकारी फैलाते हैं। इससे छात्रों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र के ठुम्बड़ गांव में सुबह भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया। ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई, जिनमें पानी की समस्या सबसे ज्यादा थी। इस पर मुख्यमंत्री ने एनिकट, हैंडपंप और तालाब बनाने सहित कई कार्य स्वीकृत किए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार गांवों की मजबूती के लिए काम कर रही है। पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार संकल्पित है।
1: हम रोजगार सृजन करने का काम हमारी पंचायत में कैसे कर सकते हैं, हमारे उस क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं? हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हम नई तकनीकी से कैसे खेती कर सकते हैं, कम पानी में कैसे अच्छी खेती कर सकते हैं, कौन सी खेती लाभदायक है जिसको हम कर सकते हैं, उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की कहाँ आवश्यकता है जिसको हमारी खेती होती है, उसको कोल्ड चेन से कैसे जोड़ा जाए, सुगमता से किसान का माल मंडी में कैसे आए, पशुपालन को जोड़ते हुए डेयरी का लाभ कैसे हमारे किसानों को मिले, उसका उत्पादन कैसे बढ़े, किसान और हमारे माता बहने, हमारे मजदूर आर्थिक रूप से संबल कैसे हो। और ये जब संभव है, जब हम गांव की छोटी छोटी बातों को, गांव के लोगों को मोटिवेशन करते हुए उस गांव को हम मजबूत बनाए।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने किसानों और पशुपालकों से संवाद किया। श्री शर्मा ने किसानों से प्राकृतिक खेती और उन्नत तकनीक को अपनाकर आर्थिक रूप से मजबूत होने की बात कही। मुख्यमंत्री आज शाम डूंगरपुर पहुंचेंगे। वे वहां कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 84 विधानसभा क्षेत्र की तंबोला ग्राम पंचायत में ग्राम चौपाल में शामिल होंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे जालौर रेलवे स्टेशन से भुज दिल्ली वाया भीलड़ी जालौर पाली मारवाड़ जंक्शन एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इस रेल सेवा के जरिए जालौर पहली बार राजधानी दिल्ली से सीधा जुड़ेगा। ये ट्रेन अंजार, गांधीधाम, भचाओ, भीलड़ी, धनेरा, रानीवाड़ा, मारवाड़, भीनवाल, मोदरान, जालौर, मोकलसर, समदड़ी, लूनी, पाली मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर जंक्शन, जयपुर गांधीनगर स्टेशन, बांदीकुई, अलवर और रेवाड़ी स्टेशनों पर ठहराव करेगी। ये ट्रेन कल उद्घाटन स्पेशल के रूप में चलाई जाएगी। इसके बाद इसे नियमित कर दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। आमजन को किसी भी प्रकार की घबराहट में आकर अनावश्यक खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है। कल राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पर मुख्य सचिव ने जयपुर सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान देश की प्रमुख पाइपलाइन नेटवर्क प्रणाली से जुड़ा हुआ है, के माध्यम से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की नियमित आपूर्ति लगातार जारी है। केंद्र सरकार ने भी प्रदेश को आश्वस्त किया है कि भविष्य में भी आपूर्ति में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि अधिवक्ता केवल न्यायालय में पैरवी करने वाले व्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की सशक्त आधारशिला है। उन्होंने कहा कि समाज में न्याय की स्थापना, आमजन के अधिकारों की रक्षा और संविधान के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल्पावटा में न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ कार्यालय के लोकार्पण और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने कहा कि एक सफल अधिवक्ता वही है जो अपने मुवक्किल के विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल, डीजल बचाने की अपील का हम सभी को पालन करना है, बचत करना हमारी परंपरा भी रही है।
2: मोदी जी का आह्वान आम जन के लिए है, जनता में इसका बहुत फायदा मिल रहा है, इसीलिए हमारा भारतवासियों का आने वाला भविष्य सुरक्षित है। अपेक्षा अन्य देशों की, बड़े बड़े देशों में तेल के भाव, गैस की सप्लाई, उसके बनी से हम बहुत सुरक्षित स्थिति में। और मेरा सबसे अनुरोध है, हम सब मिलकर के हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी का आह्वान की पालना करें तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा और थोड़े दिन बाद में जो घटनाक्रम में निपट जाएगा उन्हें सामान्य स्थिति।
0: राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण को समर्पित गोडावण दिवस आज प्रदेश में पहली बार मनाया जा रहा है। इसे लेकर जैसलमेर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा आज डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। इस दौरान गोडावण प्रतिमाओं का अनावरण किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि गोडावण संरक्षण को लेकर किए जा रहे प्रयास रंग ला रहे हैं।
3: गोडावण दिवस को लेकर स्वर्ण नगरी में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा गोडाउन संरक्षण को लेकर चल रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस दौरान गोडाउन प्रतिमाओं का अनावरण भी किया जाएगा। वहीं आज जैसलमेर शहर के उत्कृष्ट जैन भवन में गोडाउन दिवस समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। गौरतलब है कि गोडाउन के संरक्षण के लिए जैसलमेर के रामदेरा व सुदासरी में विशेष ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां एआई तकनीक से इनकी आबादी बढ़ाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य पक्षी के सुरक्षित आवागमन के लिए रामदेरा में एक विशेष टनल का निर्माण भी करवाया जा रहा है। मनीष व्यास, गोडाउन दिवस को लेकर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध, आमजन को घबराने की आवश्यकता नहीं। और प्रदेश में आज पहली बार गोडावण दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी की विविध भारती सेवा के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं FM रेडियो पिंक सिटी।

नमस्कार आदाब खमागणी एंड गुडी गुडी मॉर्निंग जयपुर रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम का ये समर धमाका 21 मई है और मैं हूँ आरजे प्रियदर्शनी विद वही आवाज लेकर नए जज्बात। गुरुवार की है सुबह, बड़ी ही ये खास है सुबह।

तो गुरुवार की सुबह में वापस से स्वागत है आपका। टाइम भी गुड़ी गुड़ी वाला है, 9:12 और 12 बजे तक क्या क्या होगा खास, 11 से 12 चटकी लो राजस्थान, राजस्थान की होगी उसमें बात, और शायद 10 से 11 मेलोडी क्वेस्ट जिसमें होगा बॉलीवुड धमाका। और अभी वक्त है चिट चैट का, यानी लवली मॉर्निंग चिट चैट का। तो स्टे ट्यून्ड इनटू रेडियो पिंक 100.3 FM, कुछ तो खास है कुछ तो बात है। 9:12 इंजॉय दिस सॉन्ग।

रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है कुछ तो बात है। 9:22:53 हो चुके हैं तो फरारी की दिशा में जा रही है, और जहाँ जा रही है वहाँ कितना पसीना बह रहे हैं आप नहीं समझे भाई। टाइम

0: हम कैटोर की छत्रियां हैं। जयपुर से आमेर के रास्ते पर महान कछवाहा राजवंश के उन सपूतों की अंतिम निशानी है जिनके शौर्य, साहस और कला प्रेम का आज भी नहीं कोई सानी है। गैटोर शब्द का पूरा मतलब है गए की ठौर, लेकिन सच कहें तो जयपुर के वो सपूत कहीं गए ही नहीं, वे तो चिर निद्रा में लीन हैं। हमारे पत्थरों के सिंहासन पर उनकी पवित्र आत्माएं आज भी आसीन हैं। हमारा कोना कोना उनकी मनपसंद कला और चित्रों से सजा है। सवाई राजा ईश्वरी सिंह जी को छोड़कर हर राजा का सफर यहीं आकर थमा है। यादों के रंग महल में सोया है जयपुर का स्वर्णिम अतीत, लेकिन जीती जागती उसकी स्मृतियां हैं गैटोर। शौर्य के सम्मान में अदब से खामोश खड़ी गए की ठौर गैटोर, हम गैटोर की छत्रियां हैं। 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
1: ट्रैफिक इन्फॉर्मर
2: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। 9:32 गुरुवार की सुबह, प्रियदर्शनी आपके साथ में है और अजीम साहब बन गए हमारे ट्रैफिक इन्फॉर्मर। ये अभी जेएलएन मार्ग पर थे और इन्होंने बताया कि ये झालाना की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ है। तो अजीम जी, थैंक यू सो मच हमें ट्रैफिक की इस खबर से अपडेट करने के लिए। तो आप ही बन सकते हैं हमारे ट्रैफिक नंबर, बस आपको करना है नंबर डायल जो है हमारे 2200 800, यानी कि 2200800। और अगर आप जयपुर की सड़कों पर अफरा तफरी कर रहे हैं यानी कि धूम मचा रहे हैं, तो बता दीजिए हमें ट्रैफिक के क्या है खास जानकारी और क्या है खास अपडेट, कहाँ है ट्रैफिक ज्यादा और कहाँ है आधा। नंबर 2200 800। 9:33 हो चुके हैं, प्रियदर्शनी आपके साथ में है और गुरु रंधावा की आवाज में ये गाना बिल्कुल आपके कानों के पास में। स्टे ट्यून्ड इनटू रेडियो पिंक 100.3 FM।

0: पति पत्नी और वो दो, गुरु रंधावा की आवाज में सुना अभी आपने ये गाना, काली तेरी चटिया। यार ये ना पुरानी फिल्मों की याद दिला दी इस वाले गाने ने। रूपा गांगुली जी हुआ करती थी और क्या खूबसूरती से ये गाना फिल्माया गया था। 9:37 प्रियदर्शनी आपके साथ।
1: लवली मॉर्निंग चिट चैट ओनली ऑन 100.3 एफएम रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
0: भाई चलिए ट्रैफिक की आपको एक और अपडेट दे देती हूँ। सुदीप शर्मा जी ने बताया है कि वो वीर तेजाजी मंदिर से न्यू सांगनेर रोड की तरफ जा रहे हैं। जो वीर तेजाजी मंदिर रेड लाइट सिग्नल एरिया पड़ता है, वहाँ से वो जा रहे हैं न्यू सांगनेर रोड की तरफ। और खास साथ ही साथ उन्होंने एक अपील भी की है और वो कह रहे हैं कि अक्सर लोग क्या करते हैं, जो मैंने भी देखा है कई जगह, कई सिग्नल्स पर मैंने भी देखा है कि लोग ना रेड लाइट और मॉर्निंग आवर्स में ये ज़्यादा होता है कि लोग रेड लाइट जो होती है उसको जंप करके जाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग निकल जाते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं और कुछ लोग कभी कभी एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। तो बस इनकी भी यही गुजारिश है, सुदीप जी की भी और मैं, और मुझे लगता है हर कोई यही गुजारिश करना चाहता है कि यार अपनी अपने जो जान माल है उसका ध्यान रखो भाई, क्योंकि आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में। आपके आसपास ऐसी कई चीज़ें हैं, एक पेड़ से जो शाखाएं निकलती हैं ना, आप बस उन्हीं शाखाओं में से एक शाखा है। अगर एक शाखा भी टूट गई तो पूरा जो पेड़ है ना वो त्रासदी में चला जाएगा। तो बस ये रेड लाइट जो एरिया है, यानी कि सॉरी जो रेड लाइट सिग्नल हो, सिग्नल पर जो रेड लाइट होती है इसको क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि यही ये वो सीमा रेखा होती है जहाँ पर आपका जो जीवन है वो बचा रह सकता है। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM प्रियदर्शनी आपके साथ में है और आज बड़ा ही खास दिन है। क्या है वो खास दिन बताऊंगी आपको कुछ ही देर में, बने रहिए सुनते रहिए। फिलहाल विशाल ददलानी की आवाज में ये वाला गाना बिल्कुल आपके कानों के पास में आ रहा है रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। तो उस्ताना फिल्म से ये गाना विशाल ददलानी की आवाज में सुनिए, इंजॉय करिए। 9:38

0: रेडियो बैंक 100.3 एफएम, कुछ तो खास है कुछ तो बात है और प्रोग्राम चल रहा है
1: लवली मॉर्निंग चिट चैट ओनली ऑन 100.3 एफएम रेडियो बैंक सिटी, कुछ तो खास है कुछ तो बात है।
0: 9:45 और 48 सेकंड हो चुके हैं और जयपुर आज की जो सुबह है वो बड़ी खूबसूरत है और बड़ी ही खूबसूरत खबर है। और पता है क्या है? आज है इंटरनेशनल टी डे। वाह यार, मतलब सुबह सुबह चाय की प्याली हो और उसको पिलाने वाली हो। ये गाना अनु मलिक साहब ने बहुत पहले गा दिया था, लेकिन चाय का जो मिजाज है वो उनको समझ में आ गया था कि भैया चाय जो है ना वो ऐसी ही है कि चाय का साथ सभी का विकास कर देता है। क्या कहते हैं, आज इंटरनेशनल टी डे है। अब ज़रा सोचिए, अगर सुबह चाय ना मिले तो अलार्म भी ना नाराज़ हो जाता है। चाय सिर्फ पेय नहीं, रिश्तों की शुरुआत है, दोस्तों की मुलाकात है, ऑफिस की पहली राहत है और अगर माँ अपने हाथों से चाय पिला के लाए तो वो पहला प्यार है। एक बहुत ही अच्छी सी कुछ लाइनें आ रही हैं मेरे जहन में, कुछ यूँ हैं। उबलते पानी में जब पत्ती का रंग उतरता है, उबलते पानी में जब पत्ती का रंग उतरता है, जिंदगी का हर तनाव धीरे धीरे बिखरता है। दो घूंट चाय मिल जाए, अगर दो घूंट चाय मिल जाए तो हर दिन अपने आप संवरता है। क्या कहते हैं, है ना खूबसूरत। वाकई में चाय अपने आप में ऐसी ही है। और अब आप बोलेंगे साहब चाय इतनी गर्मी में है, तो भाई जयपुर में 45 डिग्री में भी चाय बंद नहीं होती, क्योंकि राजस्थानी जो दिल है ना और चाय का बिल वो हमेशा गर्म जोशी से भरा ही रहता है। तो और जयपुर की बात करें तो यहाँ पर तो चाय पीने का अंदाज ही निराला है, यहाँ की बात ही अलग है। और जब बात ही अलग है तो चाय भी अलग है। वैसे आपकी यहाँ पर फेवरेट चाय कौन सी है? बहुत सारी चाय आती है ना, जब हम जाते हैं तो कटिंग, अदरक वाली, मसाला, कुल्लड़ वाली देसी चाय या फिर दोस्तों के साथ की चाय। तो कौन सी आपकी फेवरेट वाली चाय, जल्दी से मुझे बता दीजिए हमारे फेसबुक पेज पर जाके, जो है रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम, कुछ तो खास है कुछ तो बात है। और आज इंटरनेशनल टी डे पर एक चाय मेरी तरफ से, एक गर्म चाय की प्याली। एंजॉय करिए अनु मलिक साहब की आवाज़ में ये वाला गाना।

0: निकला वो गड्डी लेके।
1: पारा सिंह की गड्डी कहाँ होगी फास्ट और कहाँ होगी स्लो। टेम्परेचर अपडेट, टेम्परेचर अपडेट ओनली ऑन 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
2: नमस्कार, 54 मिनट रेडियो पिंक 100.3 FM पर प्रियदर्शनी आपके साथ है। और मई की तपती धूप में भी अगर आपका मूड कूल है तो समझ लो पिंक सिटी की वाइब्स ऑन है। वहीं जयपुर के तापमान की बात करें तो 41 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम रहेगा। फिलहाल जो टेम्परेचर बना हुआ है वो है 36 डिग्री सेल्सियस। तो आज की गर्मी का मंत्र भी सुन लेते हैं। आम पन्ना बेस्ट कूलर, तरबूज माने बॉडी का एसी, मिट्टी के घड़े का पानी, देसी मिनरल वाटर, और अगर हो सके तो दोपहर में 20 मिनट का जो पावर नैप है ना, बस ये है सारी बड़ी वाली अच्छी वाली जड़ी बूटी। और हाँ, अगर आप बाहर जा रहे हो तो कॉटन पहनिए, क्योंकि फैशन बाद में कंफर्ट पहले, क्या बोलते हैं। और एक अगर फन क्विज यहाँ पे हो जाए गर्मी को लेकर, तो अगर मान लिए जयपुर की गर्मी एक बॉलीवुड हीरो हो तो आप उसको क्या कहेंगे। चलिए ऑप्शन दे देती हूँ यार, ऐसी क्या बात है। सलमान, क्योंकि गर्मी भी स्वैग से आती है। अक्षय, क्योंकि एकदम तेज और एक्शन मोड में होते हैं। या रणवीर, क्योंकि ओवर एनर्जेटिक। तो जल्दी से जवाब भेज दीजिए मुझे हमारे फेसबुक पेज पे, जो है रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। बता दीजिए मुझे कि आप होते तो गर्मी को कौन सा बॉलीवुड एक्टर मानते, सलमान, अक्षय या फिर रणवीर। रेडियो पिंक सिटी पर 9:55 हो चुके हैं, थोड़ी देर में लेकर आऊंगे मेलोडी क्वेस्ट। फिलहाल रावण फिल्म का ये वाला गाना, दिलदारा दिलदारा, शफाकत अमानत अली साहब की आवाज में। स्टे ट्यून्ड।

0: ने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
1: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है।
0: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
1: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
2: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
3: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्यघर।
6: गुरुवार होता है सबसे निराला, जब खुलता है इंफोटेनमेंट का पिटारा और होती है एक खास मुलाकात खुद जयपुर की अपने जयपुर के साथ। जयपुर के साथ सारे तेवर और सारे फ्लेवर। इट्स नाउ देन एंड फॉरएवर। ट्यून करिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
7: रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। मैं हूँ प्रियदर्शनी। 10:01 हो चुके हैं, गुरुवार की सुबह है, बड़ी खास सुबह। और इस गर्मी से जब भी त्रस्त होते हैं तो कुछ कूल कूल चाहिए होता है ना। उसके लिए हम एसी में, कूलर में बैठते हैं, ठंडा ठंडा कोई पेय पदार्थ लेते हैं, तो बस ऐसे ही कुछ ना कुछ काम चलाते रहते हैं, जुगाड़ लगाते रहते हैं। कभी कभी सर पे ठंडा पानी या ठंडा रुमाल रख लेते हैं, जो होना भी चाहिए, है ना। तो बस इस गर्मी को जो कूल करने का एक आइडिया है वो मेरे पास है, वो है हमारे एक गाने, क्योंकि ये जो टाइम है ना वो है मेलोडी क्वेस्ट का, जिसमें हम खेलेंगे गेम। जी हाँ, फिल्मों पर बेस्ड ये गेम एक शब्द पर बेस्ड होता है। ये गेम जितना इंटरेस्टिंग है ना उतना ही दिमाग की टिंग टांग घंटियाँ भी बजाता है। तो रेडी है ना आप? चलिए मैं आपको कुछ हिंट दूंगी, जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस का नाम, या सिंगर लिरिसिस्ट का नाम, या फिर किसी डायरेक्टर का नाम, या मतलब जिसने फिल्म बनाई है कौन से साल में बनी है, और या कोई गाने की सिचुएशन होगी। इस तरह की मैं आपको हिंट दूंगी वो गाना पहचानने के लिए, कोई भी हिंट ऐसी जिसके आधार पर आप वो गाना पहचान सकते हैं और मुझे बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर जाके। हमारा फेसबुक पेज तो आपको पता ही है, जो है रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम। तो आज का जो शब्द है जिस पर हमारे आज के गाने बेस्ड हैं वो है चुनरिया या चूनर। समझ गए, चुनरिया यानी कि दुपट्टा, चुनरिया या चूनर। अब अगर चुनरिया और चूनर की बात करें तो ये ना सिर्फ दुपट्टा नहीं है एक्चुअली, ये कभी इश्क होता है, कभी एक विद्रोह होता है, कभी इज्जत तो कभी समर्पण, ऐसा ही होता है ना ये चूनर और इसका रंग। वाह क्या बात है। तो आज का शब्द चुनरिया या चूनर। तो हो जाइए रेडी, मेरा पहला सवाल ये रहा बिल्कुल आपके कानों के पास में। जिस फिल्म की मैं बात कर रही हूँ वो आई थी सन 1999 यानी कि 1999 में। डायरेक्टर थे डेविड धवन साहब। गाना फिल्माया गया था सलमान खान और सुष्मिता सेन पर, और ये जो फिल्म थी ये एक तमिल फिल्म की रीमेक थी। तो बताइए कौन सी फिल्म की बात कर रही हूँ मैं, जल्दी से बताइए। फिलहाल मेरी पसंद के दो गाने बैक टू बैक बिल्कुल आपके रेडियो सेट पर है। कौन बनेगा करोड़पति हाइन। जी हाँ, तो बिल्कुल आपके रेडियो सेट पर ये दो गाने बैक टू बैक आ रहे हैं। पहला आ रहा है हेलो ब्रदर फिल्म से, ये अच्छा सा गाना है, बढ़िया सा गाना है, आप इन्जॉय कर सकेंगे इस गाने को। तो सुनिए और मेरे सवाल का जल्दी से जवाब दे दीजिए हमारे फेसबुक पेज पे जाके, जो है रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम।

प्यार में हो या रेलवे टिकट की कतार में, गुनगुनाना हमारी आदत है। किचन में करछी चलाए या ऑफिस में कंप्यूटर, गुनगुनाना हमारी आदत है। बच्चों के साथ खेलें या बुजुर्गों को सैर पर ले जाएं, गुनगुनाना हमारी आदत है। मैदान से खलिहान तक, सुबह से शाम तक, गुनगुनाना हमारी आदत है। क्योंकि रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM जयपुर की सुरीली आदत, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।

0: Melody Quest. Only on 100.3 FM, Radio Pink City. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है.
1: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है. 10:17 हो चुके हैं. प्रियदर्शनी आपके साथ में प्रोग्राम मेलोडी क्वेस्ट. और मैंने पूछा था एक सवाल. जी हाँ, मेलोडी क्वेस्ट चल रहा है. जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं लिसनर्स, उनको बता दूं कि मेलोडी क्वेस्ट एक ऐसा गेम है जिसमें एक शब्द पर, यानी कि जैसे आज का शब्द है चुनरी या चूनर, इस शब्द पर बेस्ड है आज का गेम. आपको बॉलीवुड सॉन्ग बताने हैं जिसके हिंट्स में कुछ दूंगे. हिंट्स एक्टर एक्ट्रेसेस का नाम हो सकता है, सिंगर या लिरिसिस्ट की जोड़ी का नाम हो सकता है, किसने डायरेक्ट की है ये हो सकता है, कौन से साल में आई थी. इस तरह के कुछ हिंट्स मैं आपको दूंगी जिनके आधार पर आपको बताने होते हैं गाने. तो मैंने जो पहला सवाल पूछा था कि ये फिल्म आई थी 1999 में और डेविड धवन ने इसको डायरेक्ट किया था. डेविड धवन साहब अपनी जो स्टाइलिश और जो उनकी कॉमेडी का अंदाज है ना, ऐसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, तो पहले तो सही जवाब बता देती हूं मैं. सही जवाब है PV No. 1. इसमें सलमान साहब के साथ में करिश्मा कपूर थी, साथ में थे अनिल कपूर, तब्बू. ये गाना फिल्माया गया था सुष्मिता सेन और सलमान खान साहब के साथ में. और इसमें वही ट्राइंगल लव स्टोरी है. इसमें सलमान खान साहब की वाइफ होती हैं करिश्मा कपूर, और फिर सलमान खान साहब को बाद में शादी के बाद में पसंद आने लग जाती हैं सुष्मिता सेन. तो कुछ ऐसा सा ही सिचुएशन है इस फिल्म की. एनीवेज, जिन्होंने सही

जवाब दिया है, उनके नाम बता देती हूँ। इस गाने को किसने गाया था? वो गाया था अभिजीत भट्टाचार्य और अनुराधा श्रीराम जी ने। और ये गाना ना 90s में कॉलेज में या हर शादी में एक स्टार ट्रैक बन गया था। और ये कौन सी तमिल फिल्म की रीमेक है? ये साथी लीलावती जो तमिल फिल्म थी उसकी रीमेक थी। तो जिन्होंने अब सही जवाब दिया है उनका नंबर फाइनली आ गया है नाम अनाउंस करने का। तो प्रीति नितिन अग्रवाल मालवीय नगर से बिल्कुल सही जवाब के साथ में हमसे जुड़ी हैं। अंकित विवेक विहार सोडाला से, प्रवीण चौहान ये भी सही जवाब के साथ में हमसे जुड़े हैं, और सही जवाब दिया है हनी भाटिया ने। सही जवाब बिल्कुल बीवी नंबर वन ममता माहेश्वरी, बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये गाना जिन्होंने अभी भी सही सही बताया वो गाना भी अभी प्ले होने वाला है। मधु सिन्हा स्मृति सिन्हा सुशांत सिटी से ये हमसे जुड़ी हैं, और सोडाला से पुष्पा दिलीवाल, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। महेश जांगड़ सही जवाब के साथ में हमसे जुड़े हैं, और मोरवाल फैमिली जिसमें विनोद मोरवाल, राजू मोरवाल, सीताराम मोरवाल, खेमचंद मोरवाल, गुलाब चंद्र मोरवाल, सुनील और दीपू कोठी कोल्यान से सही जवाब के साथ में जुड़े हैं। अशोक कनौजिया त्रिवेणी नगर से सही जवाब के साथ में जुड़े हैं। अल्फेज जवाहर नगर, शफीक सोनू रियाज और अल्फेज जवाहर नगर जयपुर से सही जवाब के साथ में जुड़े हैं। इंदु शर्मा जयपुर से सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, और आई थिंक आसान भी था, है ना। मुकेश सावरकर इनका भी जवाब बिल्कुल सही है। बनवारी लाल जांगड़ बिल्कुल सही जवाब। देखिए मैंने कितना आसान से सवाल पूछा ना, कितने सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। पंकज अरोड़ा साहब जनता स्टोर से सही जवाब के साथ में हमसे जुड़े हैं, वेरी गुड, बधाइयां जी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको अब ले जाती हूँ 1999 से सीधा 1963 यानी कि 1963 की फिल्म की बात करते हैं। इसमें हीरो थे राज कपूर साहब, और ये एक क्लासिकल ठुमरी थी, यानी इस अंदाज में इस गीत को गाया गया था, क्लासिकल ठुमरी अंदाज में। गाना जिसने गाया था ना, ये जिनकी आवाज़ थी वो मखमली आवाज़ के जादूगर, मखमली आवाज़ के सरताज थे हमारे मन्ना डे साहब। बताइए कौन सी फिल्म की बात कर रही हूँ। 1963 में ये फिल्म आई थी, राज कपूर साहब इस फिल्म में हीरो थे, मन्ना डे साहब ने इस क्लासिकल ठुमरी अंदाज में इस गीत को गाया था। बता दीजिए जल्दी से हमारे फेसबुक पेज पर जाकर कौन सा है ये गाना और कौन सी है ये फिल्म। फिलहाल बीवी नंबर फिल्म का ये वाला गाना बिल्कुल आपके कानों के पास में, चुनरी चुनरी चुनरी चुनरी। इसका म्यूजिक बड़ा शानदार है। 10:21 प्रियदर्शनी आपके साथ में, स्टे ट्यून्ड, मेलोडी क्वेस्ट चल रहा है।

0: मुझे आज भी याद है कॉलेज का वो दिन और रोहन से वो पहली मुलाकात।
1: ये पहली मुलाकात की मीठी सी बेखुदी।
0: कितना चुप चुप सा रहता था उन दिनों, लेकिन उसकी आंखें कितना कुछ बोला करती थी, मानो कुछ कहना चाह रही हूँ। और मैं भी तो खोई खोई सी रहती थी।
1: अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल।
2: इश्क में कुछ और रोमांस खोलते रोमांटिक सॉन्ग्स ओनली ऑन 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
3: दस बज के 27 मिनट प्रियदर्शनी आपके साथ में, और गुरुवार की सुबह में ये वाला जो टाइम होता है ना, बड़ा खास होता है, क्योंकि इसमें होता है एक इंटरेस्टिंग गेम जिसका नाम है ये।
4: मेलोडी क्वेस्ट ओनली ऑन 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
3: जी हाँ, मेलोडी क्वेस्ट, तो इसमें चल रही हैं फिल्मों की बातें शातें। मैं खेल रही हूँ एक ऐसा गेम जिसमें आपको एक शब्द दिया गया है और इस शब्द पर बताने हैं आपको वो गाने जिनके हिंट मैं आपको दे रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, 1963 की ये फिल्म, राज कपूर साहब इसमें लीड रोल में थे और गाना गाया था हमारे मन्ना डे साहब ने। सही जवाब दिया जिन लोगों ने, उनका नाम पहले ले लेती हूँ, उसके बाद में बताती हूँ कि क्या है सही जवाब। प्रीति नितिन अग्रवाल मालवी नगर से फिर से जुड़ी हैं सही जवाब के साथ में। नर्सिंग कॉलोनी पुरानी बस्ती से अमित कुमार नामा सही जवाब के साथ में हमसे जुड़े हैं, और आगे जो जुड़े हैं वो भी मैं उनके नाम भी ले देती हूँ। बहुत सारे लोग नहीं जुड़े हैं इस बार, लेकिन प्रवीण चौहान जी भी जुड़े हैं बिल्कुल सही जवाब के साथ में। हनी भाटिया फिर से बिल्कुल सही जवाब के साथ में जुड़े हैं। सोडाला से पुष्पा दिलीवाल सही जवाब के साथ में जुड़ी हैं, और वहीं एक बार फिर से हमसे रियाज, सोनू, शफीक, अल्फेज,

जवाहर नगर से सही जवाब के साथ में जुड़े हैं अशोक कनौजिया, सही जवाब के साथ में त्रिवेणी नगर से जुड़े हैं मधु सिन्हा, स्मृति सिन्हा सुशांत सिटी से सही जवाब के साथ में जुड़ी हैं। मतलब ये देखिए, ये वो हमारे लिसनर हैं जो लगातार सुन रहे हैं और पूरे इंटरेस्ट के साथ में हर सवाल का जवाब दे रहे हैं अच्छे से, तो अच्छी सी बात है। तो चलिए विवेक खोवाल का नाम भी ले लेते हैं। विवेक खोवाल, रीना वर्मा लूनियावास जयपुर से जुड़े हैं सही जवाब के साथ में। थैंक यू सो मच कि आप लोग लगातार हमारा प्रोग्राम यूं ही सुनते हैं और इतना पसंद करते हैं हमारे रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM चैनल को। एक्चुअली मैंने गलत कहा, हमारे नहीं, हमारा है ये, है ना। जब ही तो हम आपके बिना रह ही नहीं पाते हैं। अंकित विवेक विहार सोडाला से सही जवाब के साथ में हमसे जुड़े हैं और महेश जांगड़ फिर से जुड़े हैं सही जवाब के साथ में। अच्छा, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे धीरे ना, फेसबुक जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ वैसे वैसे बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है। देखिए, मोरवाल फैमिली यानी कि विनोद मोरवाल कोठी कोल्यान से फिर से सही जवाब के साथ में जुड़े हैं। ये पूरी मोरवाल फैमिली है जिसमें खेमचंद्र मोरवाल, गुलाबचंद मोरवाल, राजू मोरवाल, सीताराम मोरवाल, सुनील दीपू, ये सारे लोग हैं। नरेश कुमावत जी जुड़े हैं बगरू से बिल्कुल सही जवाब के साथ में। पंकज अरोड़ा जनता स्टोर से फिर से सही जवाब के साथ में जुड़े हैं। बनवारी लाल चांगड़ शिवार से सही जवाब के साथ में जुड़े हैं। ये कितनी अच्छी बात है ना टेक्नोलॉजी की, कि इतने सारे लोग एक साथ हम फेसबुक पेज पर उनको देख लेते हैं और पता चल जाता है हमें कि कितने सारे लोग हमें सुन रहे हैं और कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं और कितना ज्ञान है यार फिल्मों का आप लोगों को। वेरी नाइस। चलिए अब उन लोगों को मैं जवाब बता देती हूँ जिनको अभी तक जवाब नहीं पता है। तो सही जवाब था दिल ही तो है। 1963 में फिल्म रिलीज हुई थी और लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, बाद में इस टाइटल से एक फिल्म भी बनी है रानी मुखर्जी की, आप सभी को याद होगा। उसमें भी एक चुनरी शब्द पर गाना है और इस गाने को जो लिखा था वो गीतकार थे साहिर लुधियानवी साहब और मन्ना डे साहब ने अपनी खूबसूरत और दमदार आवाज़ से इस गीत को सजाया था। राज कपूर के साथ में नूतन जी लीड रोल में थी। ये क्लासिकल सिंगिंग इसमें की थी हमारे मन्ना डे साहब ने और डांस भी वैसा ही था। तो इसमें राज कपूर साहब जो है वो नकली दाढ़ी और मूंछ लगाकर इस गाने को गाते दिख रहे हैं, उन पर ये गाना फिल्माया गया है और पद्मिनी प्रियदर्शनी इस पर अपनी डांस कला दिखा रही हैं। तो इस तरह का पिक्चराइजेशन है इस गाने का, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। तो ये बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है, अभी आपको सुनाऊंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ यानी कि हमारे अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है ये, बिल्कुल आपके रेडियो सेट पर आपके कानों के पास में। 2001 की बड़ी हिट फिल्म, कॉमेडी फिल्म है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। अब नेक्स्ट इसमें आपको एक्टर्स बता देती हूँ, संजय दत्त गोविंदा इनकी जोड़ी है। इनकी जोड़ी और भी कई फिल्मों में है लेकिन इस फिल्म में भी इनकी जोड़ी है, तो आपको बताना है ये कौन सी फिल्म है। अच्छा जी, अच्छा जी, मतलब आप ये समझते हैं कि मैं आपको पूरी डिटेल दे दूं तो फिर हिंट क्या हुई, है ना। और बाकी एक्टर्स के नाम नहीं बताऊंगी ना एक्ट्रेस के नाम बताऊंगी आपको, इन दोनों जोड़ियों के नाम मैंने इस जोड़ी का नाम बता दिया है यानी कि संजय दत्त और गोविंदा की जोड़ी है। 2001 की कॉमेडी हिट है ये फिल्म जो है। तो चलिए बताइए कौन सी फिल्म है। फिलहाल मैं यहाँ पर मन्ना डे साहब की आवाज़ में ये गाना प्ले कर रही हूँ, लागा चुनरी में दाग, फ्रॉम द मूवी दिल ही तो है।

0: ने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
1: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है।
0: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
1: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
2: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
3: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: Melody Quest. Only on 100.3 FM, Radio Pink City. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
7: 10:40 हो चुके हैं साहब, और प्रिय दर्शनी आपके साथ में हैं। गुरुवार के इस समय में, गुरुवार के इस दिन में चल रहा है प्रोग्राम Melody Quest, जिसमें चुनरिया शब्द पर, चुनरिया या चूनर इस शब्द पर आज हम अपना ये गेम खेल रहे हैं मेलोडी क्वेस्ट, जिसमें बॉलीवुड के गाने हैं और चूनर शब्द पर, चुनरिया शब्द पर ये गाने हैं। तो मैंने आपसे एक सवाल ये पूछा था कि 2001 की बड़ी हिट कॉमेडी फिल्म जिसमें संजय दत्त और गोविंदा की जोड़ी देखी गई थी, कौन सी फिल्म थी? तो सही जवाब है जोड़ी नंबर वन। जी हाँ, वो बीवी नंबर वन था, ये जोड़ी नंबर वन है। इन दोनों की जोड़ी वाकई में नंबर वन रही है, क्योंकि इन्होंने हसीना मान जाएगी जैसी फिल्म और ऐसी फिल्मों में काफी काम किया और हिट फिल्में दी हैं। 2001 में ये फिल्म आई थी, डेविड धवन ने इस फिल्म को निर्देशित किया था। 13 अप्रैल 2001 को जारी हुई थी फिल्म। इसमें संजय दत्त तो हैं, गोविंदा साहब भी थे, साथ में अनुपम खेर और एक्ट्रेस के तौर पर थी ट्विंकल खन्ना और मोनिका बेदी। ये जो फिल्म थी ना, वो कमर्शियली भी काफ़ी सक्सेस रही थी, और ये जो गीत था जो मैं अब सुनाने जा रही हूँ, वो गीत गाया था सोनू निगम ने और उनके साथ में अलका याग्निक, इनका गाया हुआ ये गीत है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगी। जिन्होंने सही जवाब दिया है, चलिए अब उनका नाम ले लेते हैं। सही जवाब के साथ में हमसे जुड़े हैं अशोक कन्नौजिया। जी हाँ, लाल चुनरिया वाली पे दिल आया रे, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। महेश जांगड़ सही जवाब के साथ में, पंकज अरोड़ा जनता स्टोर से फिर से सही जवाब के साथ में जुड़े हैं, मोरवाल फैमिली कोठी कल्याण से सही जवाब के साथ में जुड़ी है, हनी भाटिया सही जवाब के साथ में, पुष्पा दिलीवाल सुडाला से सही जवाब दिया है आपने, आपको भी बहुत बहुत ही बधाइयाँ जी। विवेक खोवाल, रीना वर्मा लूनियावास जयपुर से सही जवाब के साथ में जुड़े हैं, सीतू सैनी बिल्कुल सही सही सही जवाब है आपका, अंकित विवेक विहार सुडाला से सही जवाब के साथ में जुड़े, और जिन्होंने सही जवाब दिया है वो है राम किशोर कुमावत जी, कालवाड़ से जुड़े हैं, इनके साथ में संजय, अजय और कोमल बिल्कुल सही जवाब, ममता महेश्वरी सही जवाब जोड़ी नंबर वन, घनश्याम हिरानी जी जुड़े हैं इस बार हमसे हीरापुरा से सही जवाब के साथ में, और जो जुड़े हैं वो हैं प्रवीण चौहान सही जवाब के साथ में। ये सारे फेसबुक पेज पे जो हमसे जुड़े हैं उनके नाम बता रही हूँ, क्योंकि जवाब जो मैं ले रही हूँ वो फेसबुक पेज पर ही ले रही हूँ। तो नर्सिंग कॉलोनी पुरानी बस्ती से अमित कुमार नावा सही जवाब के साथ में हमसे जुड़े हैं, गुड्डी जांगड़ और साथ में लवेश जांगड़ ये सही जवाब के साथ में हमसे जुड़े हैं, अंजना जांगड़ बिल्कुल सही जवाब आपने भी दिया है, और जो हैं प्रीति नितिन अग्रवाल सही जवाब मालवी नगर से हमसे ये जुड़ी हैं करेक्ट जवाब के साथ में। तो चलिए हाँ, संगीता अग्रवाल इनका भी जवाब बिल्कुल सही है, इनका जस्ट अभी अभी मुझे जवाब मिला है, अभी अभी तो अभी अभी मैंने बता दिया है। मधु सिन्हा, स्मृति सिन्हा सही जवाब के साथ में हमसे जुड़ी है। ऑल राइट, तो अब बढ़ते हैं आगे वाले स्टेप पे, यानी एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने इतने सारे सवालों के जवाब सही सही दिए, वेरी नाइस, बहुत अच्छा खेल रहे हैं जयपुर, वेल प्लेड। तो चलिए आगे भी आप ऐसे ही अच्छा खेलें यही दुआ करती हूँ। अब आपको लेकर जाती हूँ 1998 में, 1998 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म को निर्देशित किया था सोहेल खान ने, लिखा भी सोहेल खान ने था। बहुत ही शायद आसान सा मैंने पूछ लिया है, क्योंकि आप मैक्सिमम लोग समझ गए होंगे कौन सी फिल्म की मैं बात करने वाली हूँ। और इस फिल्म की एक बात बताऊँ, ये रोमांटिक फिल्म थी और वाकई में मतलब मुझे बहुत पसंद है ये फिल्म सीरियसली दिल से, जिस फिल्म की मैं बात कर रही हूँ। तो बताइएगा मैं कौन सी फिल्म की बात कर रही हूँ। फिलहाल जोड़ी नंबर वन फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है सोनू निगम और अलका याग्निक ने, अपनी आवाजें दी हैं लाल चुनरिया। तो चलिए सुन लीजिए, 10:44 हो रहे हैं गुरुवार की सुबह, प्रियदर्शनी आपके साथ में, प्रोग्राम चल रहा है मेलोडी क्वेस्ट। स्टे ट्यून्ड।

0: कुछ अलग एहसास होता है उन छोटी छोटी बातों का जो जिंदगी को खूबसूरत बनाती है, जैसे मम्मी की प्यार भरी डांट।
1: राहुल, अरे देखो तुम्हारे हाथ गंदे हैं, राहुल धो के खाना खाओ।
0: पापा का कहना,
2: बेटा आई लव यू एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू।
0: बहन का नाना करते हुए भी फाइनली अपनी वो स्पेशल वाली चॉकलेट शेयर कर लेना।
3: क्या यार, इमोशनल अत्याचार मत करो, लो रे खाओ, ठूसो।
0: भाई का गुस्से से देखना मगर फिर बाइक की चाबी पकड़ा देना।
4: अब मुंह मत बना, ये ले बाइक की चाबी, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: दोस्त का कंधा और सीक्रेट्स रखने का वादा।
5: एक बात बताओ यार, किसी से कहेगी तो नहीं ना? पक्का पक्का ना?
0: यानी जिंदगी हसीन है जब अपने संग है। ऐसा ही एक साथी 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी।
6: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
7: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
6: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
7: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
6: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: Melody Quest. Only on 100.3 FM Radio Pink City. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
8: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। मेलो रिक्वेस्ट प्रोग्राम चल रहा है जिसमें एक शब्द पर आधारित होता है ये वाला इंटरेस्टिंग सा गेम, और बॉलीवुड के गाने हम यहाँ प्ले करते हैं, यानी कि उस शब्द पर जो आप जवाब देंगे उस शब्द के आधार पर ही मैं कुछ हिंट्स देती हूँ और वो गाने हमारे लिसनर्स को बताने होते हैं और वही गाना यहाँ पर प्ले किया जाता है। जैसे आज का जो शब्द है वो चल रहा है चुनरिया या चूनर, और इसी से रिलेटेड मैं हिंट दे रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले हिंट दी थी कि ये फिल्म जो थी 1998 में बनी थी, और सोहेल खान ने इस फिल्म को न सिर्फ निर्देशित किया था बल्कि लिखा भी सोहेल खान ने था। तो फिल्म कौन सी है? फिल्म है प्यार किया तो डरना क्या, और इसमें सलमान खान साहब के साथ में काजोल और साथ में हमारे धर्मेंद्र पाजी और अरबाज खान साहब ने अभिनय किया था, और भी एक्टर्स इसमें थे। और इस फिल्म जो ये जो फिल्म थी इसे 44वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में 7 नामांकन मिले थे। फिल्म को मिला था सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए। निर्देशक सोहेल खान साहब को मिला था, मतलब नामांकन हुआ था उनका, नॉमिनेट हुआ था सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के तौर पर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर सलमान खान नॉमिनेट हुए थे, वहीं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अरबाज खान साहब को नॉमिनेट किया गया था। इसका एक गाना है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, अगर आपने फिल्म देखी है तो उसमें जो सलमान खान साहब है उनकी एंट्री होती है उस गाने से, और वो बाइक पर आते हैं और गिटार बजाते हुए इस गाने को गाते हैं, और वो गाना है ओ ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। जी हाँ, ये गाना गाया था कमाल खान ने। तो कमाल खान साहब को इस गाने के लिए आर.डी. बर्मन पुरस्कार उन्होंने जीता था। तो फिल्म प्यार किया तो डरना क्या, सोहेल खान ने इसको डायरेक्ट किया था। सही जवाब जिन्होंने दिया है उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन है वो। इस बार शायद मुझे लग रहा है बहुत कम जवाब आए हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम की, थैंक यू सो मच विवेक जी। ओढ़ली चुनरिया, प्यार किया तो डरना क्या, प्रवीण चौहान इन्होंने दिया है करेक्ट जवाब। गाना सही है लेकिन फिल्म गलत बता दी है अशोक कन्नौजिया जी ने। तो चलिए, मधु सिन्हा जी ने दिया है सही जवाब, प्यार किया तो डरना क्या है इस फिल्म का नाम। हनी भाटिया ने भी सही जवाब दिया है। पुष्पा दिलीवाल बिल्कुल सही जवाब के साथ में हमसे जुड़ी हैं। एक और गलत जवाब, कोई बात नहीं। चलिए, प्यार किया तो डरना क्या इस फिल्म को सही जवाब जिन्होंने दिया है वो है विवेक खोवाल, रीना वर्मा लूनियावास जयपुर से सही जवाब के साथ में जुड़ गए हैं ये हमसे। महेश जांगड़ जी बिल्कुल करेक्ट जवाब के साथ में। मोरवाल फैमिली ने दिया है गलत जवाब। गाना सही है लेकिन जो जवाब है वो गलत आ रहा है। अब ये क्या है, क्या कन्फ्यूजन है आपको, मुझे नहीं समझ में आ रहा। एनीवेज, लेकिन आपने गलत फिल्म का नाम बताया, और मैं आपको बता दूं ये जो हेलो ब्रदर आप कर रहे हैं ये ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में सबसे पहला गाना ही मैंने ये वाला प्ले किया था हेलो ब्रदर का। तो ये जो फिल्म थी जिसका मैंने आपको जिक्र किया था, ये फिल्म थी प्यार किया तो डरना क्या. और मैं ढूंढ रही हूँ जिन्होंने सही जवाब दिया हो. जी हाँ, संगीता अग्रवाल, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है. गुर्जर की थड़ी से जुड़ी हैं ये हमसे. और कौन जुड़े हैं करेक्ट जवाब के साथ में, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ ऊपर नीचे नाम, लेट्स सी कि कौन आते हैं. लीजिए, अब आपका नाम नहीं वापस लिया जाएगा जिन्होंने देख कर वापस से टाइप किया है. ओके, तो इस बार सिर्फ इतने ही लोगों ने सही जवाब हमें दिया था, करेक्ट जवाब दिया था. चलिए जाते जाते एक फाइनल सवाल पूछ लेती हूँ फटाफट से, राइट. तो अब मैं बात कर रही हूँ अर्जुन सबलोक की, जिन्होंने निर्देशित की थी ये फिल्म. संगीत दिया था राजेश रोशन ने. 2002 की ये फिल्म एक लव ट्राइंगल थी. इसमें ऋतिक रोशन है और साथ में और भी एक्टर हैं, बताऊंगी आपको बाद में. फिलहाल ये हिंट मैंने दे दी है, आपको बताना है उस फिल्म का नाम. अर्जुन सबलोक ने डायरेक्ट की थी, राजेश रोशन का संगीत है, 2002 की ये फिल्म है, लव ट्राइंगल है, ऋतिक रोशन इसमें लीड रोल में है. तो बताइए कौन सी फिल्म है. फिलहाल मैं यहां पर प्यार किया तो डरना क्या फिल्म का ये गाना प्ले कर रही हूं. एंजॉय करिए और जल्दी से पहुंच जाइए हमारे फेसबुक पेज पर. बताइए मुझे करेक्ट जवाब क्या है जो मैंने सवाल पूछा. मेलोडी क्वेस्ट प्रोग्राम चल रहा है, 10:55 हो रहे हैं. स्टे ट्यून्ड इन टू रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM.

हाँ जी, तो सही जवाब है ना तुम जानो ना हम। इसमें सैफ अली खान, ऋतिक रोशन और ईशा देओल अभिनीत इन्होंने अभिनय किया था इस फिल्म में। और इस फिल्म का जो शीर्षक है वो ऋतिक साहब की जो पहली फिल्म थी कहो ना प्यार है उससे लिया गया था। तो ये है करेक्ट जवाब, और जिन्होंने सही जवाब दिया है उनके नाम आपको फटाफट से बता देती हूँ। जी हाँ, सही जवाब है प्रवीण चौहान। सही जवाब के साथ में जुड़े हैं पंकज अरोड़ा जी, बिल्कुल सही जवाब के साथ में हमसे जुड़े हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है। और जो है वो

हनी भाटिया बिल्कुल सही जवाब के साथ में, और अशोक कन्नौजिया इन्होंने भी दिया है बिल्कुल सही जवाब। थोड़ी देर में लेकर आऊंगी चटकीलो राजस्थान। स्टे ट्यून्ड इनटू रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम।

0: आप हैं आरजे प्रियदर्शिनी के साथ, प्रियदर्शिनी के साथ ओनली ऑन 100.3 एफएम। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
1: आज हमारी जयपुर की लड़कियां पावो बाइक्स दौड़ाती हैं, लेकिन तीज और गणगौर पर मेहंदी लगवाने बापू बाजार पहुंच जाती हैं।
2: क्योंकि चाहे जो बदल जाए, पिंक सिटी अपना रंग और रेडियो कभी नहीं बदलती। तभी तो रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम।
1: जैसा कल वैसा आज और हमेशा। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है

0: जयपुर की है जान,
1: ओ मेरी जान।
0: जयपुर की है मुस्कान,
1: मुस्कुराने की वजह तुम हो।
0: आप सभी के दिलों में बसने वाला चैनल 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है, ये रिश्ता है हमारी शान।

0: साथे सुन रहा हो चटकीलो राजस्थान 100.3 FM माले काई तो खास छे और काई तो बात छे।
1: हाँ जी थे सुन रहा हो चटकीलो राजस्थान चटक सो मारो राजस्थान और यहाँ के सगला लोग भी चटक ही रहते हैं, यानी कि यहाँ का रंग ही है ना वो बड़ा चटक है, तो मिजाज भी चटक ही रहते हैं। 11:22 हो गए, प्रियदर्शनी आपके साथ में है और राजस्थान की चटकीले रंग की बात चल रही है। तो यहाँ की आज हम ऐसी चित्रकला शैली की बात करते हैं जिसमें मुगल और राजपूत कला का मिश्रण हो। तो बताइए कौन सी है ऐसी चित्रकला राजस्थान की जिसमें मुगल और राजपूत कला का मिश्रण हो, कौन सी चित्रकला की वो शैली है, जल्दी से बता दीजिए मुझे। फोन कर सकते हैं इस बार आप मुझे 2200-800 ये नंबर है मेरे 2200-800 या पहुंच जाइए जो हमारा FM पेज है ना जिसपे आप लगातार सुबह से मुझसे बात कर रहे हैं, वही हमारा रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, उस पर भी जाकर आप अपना सही जवाब टाइप कर सकते हैं। भाई राजस्थान की बात चल रही है और राजस्थान की कला संस्कृति में तो बसते हैं हम, और ये जो कला संस्कृति है हमारे रग रग में हमारे खून में बसी हुई है ना, और इसकी बात हो तो जवाब भी बड़े ख़ास आने चाहिए, बहुत सारे आने चाहिए। तो लगा दीजिए फ़ोन और बता दीजिए मुझे कि ऐसी कौन सी चित्रकला है जिसमें मुगल और राजपूत कला का मिश्रण माना जाता है, ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है, कहाँ की है वो, जल्दी से फ़ोन लगा दीजिए। 11:24 हो चुके हैं और चटकीलो राजस्थान में चटक से रंगों के साथ में ये सवाल मैंने पूछ लिया है आपसे और अब सीमा मिश्रा की आवाज़ में ये गाना बिल्कुल आपके कानों के पास में आ रहा है, सुन लीजिए, एंजॉय करिए।

0: बैठे सुन रहा हो चटकीलो राजस्थान 100.3 FM माला काई तो खास छे और काई तो बात छे।
1: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM कुछ तो खास है कुछ तो बात है और प्रोग्राम चटकीलो राजस्थान चटकते भड़कते गानों के साथ में चटकता भटकता हमने ये सवाल भी आपसे पूछ लिया है। तो सवाल का सही जवाब, सवाल पहले वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ। मैंने पूछा था राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली मुगल और राजपूत कला का मिश्रण मानी जाती है, तो जो सही जवाब है वो है किशनगढ़ शैली। जी हाँ, मेरे पास फ़ोन आया सुनील पारिक साहब का विद्याधर नगर से, तो पता है मैंने उनके साथ में एक प्रैंक किया, उन्होंने सही जवाब दिया किशनगढ़ शैली, तो मैंने कहा नहीं ये जवाब तो गलत है, तो बोले अच्छा, बिकॉज वो कन्फर्म ही नहीं थे शायद, तो बोले अच्छा गलत है हाँ, फिर हम लोग हंसने लगे। तो फाइनली सुनील साहब अगर आप सुन रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही था और मैंने उनको कहा भी था कि मैं अनाउंस करूंगी कौन सा जवाब सही है। तो एनीवेज आप बिल्कुल करेक्ट थे, किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है उसी में आपको मुगल और राजपूत कला का मिश्रण मिलता है। यू वर द करेक्ट, यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर विद द करेक्ट नेम किशनगढ़ चित्रकला शैली। थैंक यू सो मच कि आप हमसे जुड़े। चलिए अगला सवाल पूछते हैं और राजस्थान की बात में सिर्फ एक ही मेरे पास कॉलर जुड़े थे और फेसबुक पेज पर भी जिन्होंने जवाब दिया वो सही जवाब नहीं था। कोई बात नहीं, दूसरा सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। मेरा दूसरा सवाल है, राजस्थान के किस स्थान का मेला लवकुश के जीवन से संबंधित है? सवाल फिर से दोहरा देती हूँ, राजस्थान की बात हो रही है, राजस्थान की कला और संस्कृति की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक मेला भरता है लवकुश का मेला, तो वो किस स्थान से संबंधित है? जल्दी से बता दीजिए मुझे क्या है करेक्ट जवाब। आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, मेरे साथ बोले तो प्रियदर्शनी के साथ में, स्टे ट्यून्ड। 11:37 गुरुवार का ये दिन है और गुरुवार की सुबह गुड मॉर्निंग है।

0: बैठे सुन रहा हो चटकीलो राजस्थान 100.3 FM माला काई तो खास छे और काई तो बात छे।
1: 11:42 हो चुके हैं प्रियदर्शनी आपके साथ में और चटकीलो राजस्थान में चटक से रंगों की बात हो रही है, कला की बात हो रही है, संस्कृति की बात हो रही है जी। तो मैंने सवाल पूछा था राजस्थान को लेकर, यहाँ के लवकुश मेला भरता है, कहाँ भरता है और क्या नाम है उस मेले का। तो सही जवाब है सीताबाड़ी का मेला, सीता माता मेला भी इसको कहते हैं। और ये जो मेला है वो 12 ज़िले में आयोजित होता है और इसे लवकुश की तपोभूमि माना जाता है। ये जो मेला है वो रामायण की कहानी से संबंधित है। यहाँ पर ना मेला जो सीता माता और उनके जो पुत्र थे लवकुश, उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। सीता माता अभ्यारण्य में, यहाँ पर यानी इस अभ्यारण्य में पौराणिक कथाओं के मुताबिक माने तो लवकुश का जन्म हुआ था। यहीं पर माता सीता को महर्षि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में जगह दी थी। इसी जगह पर लवकुश ने हनुमान जी को बांधा था। अश्वमेध यज्ञ के बाद भगवान राम जी ने अपना घोड़ा छोड़ा जिसे लवकुश ने बांधा। तो इस तरह से बहुत ही फेमस है और 16 मई से 19 मई के बीच में आयोजित होता रहा है सीताबाड़ी मेला या सीता माता मेला। चलिए अगला सवाल आपसे पूछते हैं राजस्थान। ये मुझे लगता है ये जो सवाल मैं पूछने वाली हूँ ये बहुत सारी महिलाओं के जवाब आने वाले हैं, तो इन्होंने सही जवाब दिया है, पहले उनका नाम ले लूँ फिर अगला सवाल मैं आपके सामने रखती हूँ। सुशीला दत्ता बनी पार्क से इन्होंने दिया बिल्कुल सही जवाब। ये फ़ोन से हमसे जुड़ी हैं और सही जवाब के साथ में जुड़ी हैं। ये खुद इवन वहाँ जा भी चुकी हैं और पता है कितने साल की हैं, ये 75 साल की हैं सुशीला दत्ता जी, और ये हमारी रेगुलर लिसनर हैं। तो सल्यूट है सुशीला जी कि आप इस उम्र में रेडियो पिंक सिटी सुन रहे हैं और इतना ज्ञान है आपको कि आप हमारे सही हमारे सवालों के सही सही जवाब दे देते हैं। तो चलिए अगला सवाल, उम्मीद है कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़ेंगे। अगला सवाल है राजस्थान के किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है। समझ में आ गया सवाल, राजस्थान के किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है। ये जो जवाब है ये बहुत सारे लोग सही देंगे क्योंकि कपड़े पहनने का शौक ना बहुत सारे लोगों का, महिलाएं स्पेशली इस सवाल का जवाब बिल्कुल सही देने वाली हैं, है ना। तो चलिए जल्दी से फ़ोन लगा दीजिए, फ़ोन नंबर है हमारे वही 2200 800 यानी कि 2200 800, या पहुंच जाइए हमारे फेसबुक पेज पे जो है रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। फिलहाल यहाँ रुकेंगे कमर्शियल ब्रेक के लिए और उसके बाद हमारे राजस्थान के रंगों भरे गीत आपके सामने आएंगे। 11:45 हो गए, बने रहिए, सुनते रहिए चटकीलो राजस्थान।

0: भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
1: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है।
0: तुम्हीं ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
1: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
2: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
3: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।

0: एक नई खुशी।
1: जेडीए लाए है भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, स्वर्ण विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, पटेल नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, आदिनाथ सरोवर, यूनिक सिटी, शिवांग सिटी, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमिकला, अटल योजना, वसंत कुंज, गोविंदपुरा, न्यू आतिश मार्केट, द रिंग एवेन्यू, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशंस पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा मई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।

0: साथे सुन रहा हो चटकीलो राजस्थान 100.3 FM माले काई तो खास छे और काई तो बात छे।
1: 11:53 प्रिय दर्शनी आपके साथ में रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM कुछ तो खास है कुछ तो बात है और प्रोग्राम चटकीलो भड़कीलो राजस्थान। जी हाँ, चटकीलो राजस्थान, जिसमें आज चटक से सवालों की मैंने फहरिस्त यानी कि जो लिस्ट है वो आपके सामने पेश की हुई है। मैंने सवाल पूछा था कि राजस्थान के किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है। बहुत सारे लोगों ने फ़ोन पर हमें जवाब देने की कोशिश की है। कोशिश इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गलत जवाब आए हैं। कई लोग भीलवाड़ा को कह रहे हैं, किसी ने माउंट आबू को कहा है और फेसबुक पेज पर भी लोग हमसे जुड़े हैं। तो चलिए पहले लोगों के नाम बता देती हूँ। मुकेश प्रजापत जी फेसबुक पेज पर जुड़े, अशोक कन्नौजी और हनी भाटिया, इन्होंने दिए करेक्ट जवाब, फेसबुक पेज पर ही हमसे जुड़े। और सही जवाब है कोटा। जी हाँ, लोग शॉक हो गए होंगे ये सुनकर, लेकिन करेक्ट जवाब यही है। क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। असल में जो जगह है वो कोटा डोरिया साड़ियों के लिए बहुत ही फेमस है और इसीलिए इसको सिल्क सिटी कहा जाता है। क्योंकि जो कोटा डोरिया जो साड़ियाँ होती हैं उनकी वो बहुत ही हल्की होती हैं, पारदर्शी होती हैं, उनकी जो बुनाई होती है बारीक होती है और इसलिए इस शहर को यानी कि कोटा को सिल्क सिटी कहा जाता है। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM सुन रहे हैं आप, बने रहिए, सुनते रहिए। अगला सवाल पूछना चाहती हूँ लेकिन यार क्या करूँ, ये जो घड़ी की सुई है ना ये जवाब दे चुकी है कि नहीं। चलिए पूछ ही लेती हूँ आपसे फटाफट से एक सवाल और जाते जाते सही जवाब भी बता दूंगी। सवाल है मेरा, राजस्थान में किस हस्तकला को कांच की मीनाकारी के रूप में जाना जाता है। सुन लिया आपने, सवाल है राजस्थान में किस हस्तकला को यानी हाथ से बनी हुई कला को कांच की मीनाकारी के रूप में जाना जाता है। चलिए जल्दी से हमारे जो नंबर है 2200-800 वो डायल कर दीजिए या पहुंच जाइए हमारे फेसबुक पेज पर। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM सुन रहे हैं आप, बने रहिए, सुनते रहिए। और सुनिए फिलहाल सीमा मिश्रा की आवाज में फिर से ये वाला गाना।

अंजी, चटकिलो राजस्थान में मैंने सवाल पूछा था कि राजस्थान में किस हस्तकला को कांच की मीनाकारी के रूप में जाना जाता है, तो सही जवाब है थेवा कला, जो कि प्रतापगढ़ की है ये, और थेवा कला में कांच पर सोने की नक्काशी की जाती है, तो ये हमारा सही जवाब था। और ताजुब की बात है कि कोई किसी ने भी सही जवाब ना नहीं दिया है, ना फेसबुक पेज पर ना ही फ़ोन पर। एनीवेज अगली बार ट्राई करेंगे, बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।

हाँ जी, तो चलिए समय हो चुका है कि मैं आपसे विदा ले लूँ। मन नहीं कर रहा लेकिन जाना पड़ेगा। तो चलिए, आप ऐसे इंजॉय करते रहिएगा, गर्मी का ख्याल रखिएगा, और जो मैंने आपको बताया है, टिप्स जो दिए हैं, उनको आजमाते रहिएगा। खुश रहिए, सुनते रहिएगा रेडियो पिंक सिटी के ये धमाकेदार गाने। फिलहाल मैं प्रियदर्शन लेती हूँ आपसे यहीं पर इजाज़त। टेक केयर एंड बाय बाय।

0: अभी आप सुन रहे थे FM रेडियो पिंक सिटी के प्रोग्राम्स। यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र FM बैंड 100.3 MHz पर। सुनिए हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 23 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी हैं। नए मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। नए सदस्यों को आज सुबह लोकभवन में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। अब मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्री हैं। इनमें मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। पहला जो गीत है, जिस देश में गंगा रहता है, इस फिल्म का गाना बाली ब्रह्म भट्ट और सुनिधि चौहान की आवाजें, प्रवीण भारद्वाज का लिखा हुआ गाना, संगीत आनंद राज आनंद का।

दोस्तों आज है सांस्कृतिक विविधता दिवस, तो आज के गानों में कुछ यूं होगा कि हिंदी के अलावा कुछ जो दूसरी भाषा है उनके भी कुछ कुछ शब्द इसमें शामिल है इन गानों में, तो सुनिए आप इनका आनंद लीजिए और अगला ये गीत सुनिए। खुद्दार फिल्म का गाना किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है राजेश रोशन का।

0: यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गाने एक ब्रेक के बाद।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
3: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार दिन में 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली, प्रायोजक हैं देवदर्शन।

ब्रेक के बाद अब यादों की महफिल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गुलामी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। गुलजार के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: एक दूजे के लिए इस फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: मिशन कश्मीर फिल्म का ये गाना शंकर महादेवन, जसविंदर नरूला, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजों में। राहत इंदौरी की बोल, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: मुझे दे कल कल कल कल कल कल कल सीने पे गिर के तेरा चल
1: मुझको
0: सीना ताने बाहें खोल

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे और साथियों की आवाजें, स्वानंद किरकिरे के बोल, संगीत अमित त्रिवेदी का।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और साथियों की आवाज़ों में लीजिए अब सुनिए श्री 420 इस फिल्म का गाना। गीतकार शैलेंद्र हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, आर डी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम नौकर।

0: कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना गोदान फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, अनजान के बोल और रविशंकर का संगीत।
1: अरे पुरुआ के झोंकवा में

0: एक नई खुशी। जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, स्वर्ण विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, पटेल नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, SMS हॉस्पिटल अंडर पास, आदिनाथ सरोवर, यूनिक सिटी, शिवांग सिटी, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी कला, अटल योजना, वसंत कुंज, गोविंदपुरा, न्यू आतिश मार्केट, द रिंग एवेन्यू, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशंस पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध हैं।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा मई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141-256-9696 पर।
2: ये आकाशवाणी की विविध भारती सेवा का जयपुर केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार। थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र के चुड़ादा गांव में सुबह भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया। ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मॉर्निंग वॉक के बाद मुख्यमंत्री बांसवाड़ा सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के संदेश को आगे बढ़ाते हुए आम जनता से पेट्रोल डीजल बचाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की। सर्किट हाउस पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री का आज कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद वे डूंगरपुर के लिए रवाना होंगे। श्री शर्मा वहां भी कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 84 विधानसभा क्षेत्र की तंबोला ग्राम पंचायत में ग्राम चौपाल में शामिल होंगे। कल मुख्यमंत्री इसी गांव में प्रातःकालीन भ्रमण करेंगे। देशभर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा की प्रवृत्ति से दूर रखना है। इसी दिन वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इधर पाली के राजीव गांधी स्मृति भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया और 2 मिनट का मौन रखकर पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण को समर्पित गोडावण दिवस आज प्रदेश में पहली बार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जैसलमेर में राज्य पक्षी गोडावण की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी सहित वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वन मंत्री ने डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का भ्रमण कर गोडावण संरक्षण के लिए चल रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा भी की। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने सरस दूध

0: और दूध उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें आज शाम से लागू होंगी। डेयरी दूध के दाम में प्रति लीटर 2 रुपए की वृद्धि की है। दूध के साथ दही, छाछ, लस्सी और पनीर की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। 200 ग्राम पनीर का पैकेट अब 74 रुपए की बजाय 80 रुपए में मिलेगा। इसके अलावा 200 ग्राम दही का पैक अब 16 रुपए की जगह 18 रुपए में मिलेगा। सादा छाछ पर 1 रुपए और नमकीन छाछ और लस्सी पर 2-2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले 13 मई को अमूल और मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की थी। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अभी इससे कोई राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है। विभाग ने आगामी 3 से 4 दिन तक प्रदेश के आधे से अधिक हिस्सों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर और कोटा संभाग के अधिकांश जिलों में गर्म हवाओं का असर बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में राज्य के 7 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा, जबकि 8 शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड किया गया। श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं बीकानेर की रात सबसे गर्म रही, वहां न्यूनतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह जारी की है। पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक VK सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी अब गूगल जेमिनी, ChatGPT और ग्रोक जैसी AI तकनीकों का उपयोग कर आधार बायोमेट्रिक सुरक्षा प्रणालियों को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से अपने आधार बायोमेट्रिक्स को mAadhaar ऐप या UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से लॉक करने की अपील की है। बायोमेट्रिक्स लॉक होने पर फिंगरप्रिंट और आइरिस डेटा का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक स्वयं उपयोगकर्ता उसे अनलॉक ना करे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र FM बैंड 100.3 MHz पर। सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर।

सवेरा फिल्म का गाना आपने सुना, 1958 1958 की ये फिल्म है। मीना कुमारी और अशोक कुमार पर फिल्माया गया ये गाना है। हमारे बहुत सारे साथियों ने इसका सही जवाब भी हमें लिख करके भेज दिया है। एक साथी लिखते हैं कि नदी केवल एक पृष्ठ

भूमि नहीं है। नदी प्रेम में पड़े प्रेमियों की भावनाओं को प्रगाढ़ कर देने वाली, मन को निर्मलता और सुकून देने वाली एक सजीव साथी है। नदी की निश्चलता और निरंतरता को समय या फिर जीवन के प्रवाह के रूप में देखा जाता है। नदी बहती जलधारा, लहरें प्रिय के साथ गुजारे पलों को याद दिलाया करती है। इसके अलावा आज एक दिवस है, चाय दिवस। बहुत सारे श्रोताओं ने इसके बारे में भी हमें लिख भेजा है और शुभकामनाएं भी दी है। उनकी भी कुछ बातें हैं, वो भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। एक साथी लिख रहे हैं कि अचानक नदी की तरफ से एक ठंडी हवा का झोंका आता है। वो हवा सिर्फ मेरे शरीर को नहीं छूती बल्कि सीधे मेरे दिल को छूकर निकल जाती है। उस बर्फीली और मखमली हवा के स्पर्श के साथ ही मेरे जहन में अचानक तुम्हारी यादें ताज़ा हो जाती है। ऐसा लगता है मानो उस बहती हवा ने चुपके से कान में तुम्हारा नाम लिया हो। इस शांत माहौल में तुम्हारी याद आना कोई इत्तेफाक नहीं है। जी हाँ, ये बातें हमारे साथियों ने लिख करके भेजी है। लेकिन एक बात आपसे और भी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि गर्मी इस वक्त अपने चरम पर है। बहुत परेशान हैं हम सब लोग गर्मी की वजह से, कि जब बाहर जाते हैं तो गर्मी परेशान करती है। तो इस तपती गर्मी में पानी, हवा और छांव, ये तो हमें सुकून देते ही हैं। इनकी इच्छा तो हमें रहती है कि खूब अच्छे से हम पानी पिए, और चलते वक्त अगर ऐसा लगे कि छांव मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसके अलावा भी कौन सी चीज़ें हैं जो तन और मन को बहुत ठंडक देती है और सुकून देती है? क्या किसी की प्यार भरी बातें होती हैं? क्या किसी का साथ होता है या किसी की याद होती है जो आपको इस गर्मी में भी बहुत ठंडक का एहसास करवाती है? इसके बारे में भी आप हमें लिख सकते हैं। चलिए अपनी टेक्स्ट या इबारत की तरफ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हवा के साथ साथ। जी हाँ, अगला जो गीत है सीता और गीता फिल्म का, किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है, आरडी बर्मन का संगीत है, संजीव कुमार और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया ये गाना है।

सीता और गीता फिल्म का ये गाना हमने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत में खो जाने से मन भटक जाता है और गर्मी का एहसास नहीं होता, तन मन दोनों को सुकून मिलता है और विविध भारती इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अपनी पसंद के गाने सुनने मिलते हैं और सुरीले सफ़र में जो है बहुत सुरीले गाने भी आपको कई बार जो आपकी पसंद के होते हैं वो भी आपको सुनाई देते हैं। इसके अलावा एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज जो चाय दिवस है उसके बारे में बहुत सारे साथियों ने जिक्र किया है, लिखते हैं कि आज इंटरनेशनल टी डे है, यानी कि आज सुरीला सफ़र प्रोग्राम 1 बजे से मैं सुनूंगा, ऑफिस में सुन रहा हूँ और आपके साथ मेरी पसंद जो है वो अदरक इलायची वाली चाय का आनंद भी ले रहा हूँ, घर की चाय जो मेरी हमसफर यानी कि धर्म पत्नी ने बना कर दी है, स्टील के थर्मस में लेकर के आया हूँ और वही चाय पीते हुए आज का कार्यक्रम सुनूंगा। एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल नदिया के किनारे भी कमर्शियल हो गए हैं, जब लोग जुड़ते हैं तो कोलाहल बढ़ जाता है, उस माहौल में सुकून तो नहीं मिलता पर हाँ थोड़ा अच्छा ज़रूर लगता है। और इसके अलावा एक साथी लिख रहे हैं कि अगर संगीत में सुरीले सफ़र में चाय का जिक्र हो तो सफर का मजा दुगुना हो जाए, क्योंकि आज दोस्तों चाय दिवस है, हम जिंदगी को बड़ी जिंदा दिली से जीते हैं, मजा तब आता है जब चाय दोस्तों के संग पीते हैं, चाय की चुस्कियों में यादों को डुबोया करो, दुनिया वालों की बातों को खाम खा दिल पे न लगाया करो, महफिल में रंग बिखेर जाती है, ये चाय ही है दोस्तों जो हमें एक दूसरे के साथ बैठाती है। अब देखिए भाई, हमने अपने जो टेक्स्ट में बिल्कुल भी चाय का जिक्र नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने इतनी बार हमें याद दिलाया कि हमें लगा कि एक चाय का गाना सुन लिया जाए, उसके बाद इबारत की तरफ आगे बढ़ा जाए। सुनिए, ये लीजिए अपनी पसंद का गाना।

बन फूल, इस फिल्म का ये गाना हमने सुना। हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये गाना तो भाई सर्दियों के अनुकूल है, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है चाय पर हमें दो ही गाने पता है, एक तो ये और एक दूसरा शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, उसमें भी चाय का जिक्र आता है। इसके अलावा अगर आपको कोई गीत पता हो कि जिसमें चाय का जिक्र आता है तो वो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको बताते हैं कि हमारे एक साथी लिखते हैं कि श्रोताओं के मन और आग्रह का सम्मान कर ये गाना बजाकर आपने सिद्ध कर दिया कि विविध भारती हर समय श्रोताओं के साथ है। धन्यवाद जी। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद कि इस तरह के जब कोई ख़ास दिन होते हैं तो आप हमें लिख भेजते हैं उसके बारे में, और आपका जो इसमें रुचि है उसके बारे में भी आप हमें बताते हैं, हमें पता चलता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अपने परिवार के लोग साथ हों, आइसक्रीम कुल्फी का स्वाद हो, विविध भारती पर बजते हुए गीत हों तो गर्मी का एहसास बिल्कुल कम हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि चांद और तारों को प्रेमी अपने मन की बात बताते हैं और नदी किनारे ठंडी हवा में बैठ कर प्रेम का इजहार करते हैं। रात भर आकाश में तारे गिनना, यही सब करते सपनों के शहर में चले जाना, यही है पागल प्रेम की कहानी। जी धन्यवाद आपका। चलिए हमारी इबारत की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि नदिया के पानी के पास बैठ हवा के साथ साथ मैं आपको कोई खत लिखूं। चलिए अगला गीत कन्यादान फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शंकर जयकिशन का संगीत, आशा पारेख और शशि कपूर पर फिल्माया गया गाना है, गीतकार का नाम आपको बताना है।

कन्यादान फिल्म का गाना नीरज का लिखा हुआ ये गाना है। एक साथी की बात है कि वो छुपा कर रखे गए खत, जिनकी हर एक लाइन को कभी सैकड़ों बार पढ़ा था और जिन्हें छूते ही आज भी दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। वो खत भले ही धूल खा रहा था, लेकिन उसने दिल के किसी कोने में जमी धूल को साफ कर दिया। उसे पढ़कर आंखें भले ही थोड़ी नम हो जाए, लेकिन होठों पर एक ऐसी मुस्कान तैर जाती है जो सिर्फ और सिर्फ अतीत के उस खूबसूरत हिस्से को जीने से ही मिल सकती है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हमने पूछा था कि कौन सी और बातें हैं जो ठंडक देती है, तो लिखते हैं कि सच कहें तो हमें ठंडक देते हैं हमारी नन्ही परी के बोल और हमारे गुरुजी के इतने मधुर वचन और अपनों की प्यारी सी याद और फूलों के पास बैठना और चांद की चांदनी, और सबसे ज़्यादा ठंडक मिलती है अपने नटखट कान्हा जी से बात करके। हालांकि हमारी उनसे बातें किसी और को सुनाई नहीं देती, यानी हमारी और उनकी बातें किसी और को सुनाई नहीं देती, लेकिन वो बातें हमें सबसे ज़्यादा ठंडक देती है। चलिए, धन्यवाद आपका इन बातों के लिए। अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं, गहरा दाग, इस फिल्म का ये गाना है। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं, रवि का संगीत है। कौन से कलाकारों पर यह गाना फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

गहरा दाग फिल्म का ये गाना आपने सुना, माला सिन्हा और राजेंद्र कुमार पर फिल्म आया गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि मंजू जी इतनी गर्मी है कि छाछ और मट्ठे के बिना तो हमारा काम चल ही नहीं रहा है। और इसके अलावा हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि बस विविध भारती के सुरीले सफ़र की ठंडक है और आपका सूत्र संचालन है जो हमें बहुत ठंडक देता है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि गर्मी की चिलचिलाती दोपहर में जब चिलचिलाती धूप और लू मन को थका देती है, तब सुरीला सफ़र के सुमधुर गीत एक मरुद्यान का काम करते हैं। मानो को शीतल बयार, ठंडी हवा का झोंका तन मन को सहला रही हो, धीमी और मधुर धुने पुरानी मीठी यादों को ताज़ा कर रही है, जिसमें उदास दोपहर भी संगीत और खुशनुमा बन गई है। ये संगीत और गीतों का ही जादू है जो बाहर के मौसम की तपिश को भुलाकर भीतर एक खुशनुमा और भावुक मौसम का निर्माण कर देता है। बहुत धन्यवाद आपका इतने प्यार के लिए। चलिए हम अपनी इबारत की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं अनामिका फिल्म का गाना। लता जी की आवाज़ है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत है, संजीव कुमार और जया जी पर फिल्माया गया ये गाना है।

अनामिका फिल्म का गाना हमने सुना। एक हमारे साथी की ये बात है, लिखते हैं आदरणीय बहना जी, आपका ये संबोधन हमें बहुत पसंद आया। आज सुरीला सफ़र कार्यक्रम के गीतों का इतना सुकून मिल रहा है इनको सुनकर के, वो ठंडक भी जो मौसम, इस मौसम में कूलर पंखे उनमें भी जो ठंडक हमें नहीं मिल रही है वो विविध भारती को सुनने से मिल रही है। और एक साथी लिख रहे हैं कि ये अनामिका फिल्म का बहुत लाजवाब और सदाबहार गाना है, हमें बड़ा पसंद है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि इस गाने की लाइन लिखते हुए लिखा है कि हमारे समय की आरडी बर्मन के गाने क्या का ये बहुत ही इनका पसंदीदा गाना है उस ज़माने का, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बहुत, इन्होंने नमस्कार करते हुए प्यार भरे शब्दों में इन्होंने लिखा है कि इस भरी दोपहरी और गर्मी के मौसम में नदी का किनारा और ठंडी छांव कौन नहीं चाहता। बचपन में भैंस चराने नदी के किनारे जाया करते थे और नदी में नहाते ही भैंस तो घंटों पानी में से बाहर ही नहीं निकलती थी और उसे निकालने के लिए हमें तैर कर अंदर जाना पड़ता था और फिर उसकी पूँछ पकड़ कर हमें बाहर लाना पड़ता था। भाई देखिए, गर्मी से जब परेशान हम केवल इंसान ही नहीं होते, पशु पक्षी जानवर हम सब भी परेशान होते हैं, और जब उन्हें सुकून मिलता है तो वो वहाँ से आना क्यों पसंद करेंगे भला, है ना। चलिए आप बताइए हमें कि पानी, हवा और कूलर और पंखे ये तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस गर्मी से ठंडक दिलाने में या निजात दिलाने में आपकी मदद करती, कौन सी बातें हैं जो और भी ज़्यादा आपको ठंडक देती। ये सवाल हमने किया था, कुछ श्रोताओं की बातें हम तक पहुँची है, लेकिन अगर आप और भी इस बारे में लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अनोखा प्यार, इस फिल्म का गाना अब आपको हम सुनवाते हैं। ज़िया सरहदी का लिखा हुआ गाना, अनिल बिस्वास का संगीत है।

अनोखा प्यार फिल्म का गाना आपने सुना, कितनी खूबसूरती के साथ लता जी ने इस गाने को गाया है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज के अनुपम सुंदर इबारत देखकर दिल के झरोके से प्रकृति के सानिध्य में अपने साजन या सजनी के साथ गुजारे हुए बेहद खूबसूरत अनुराग के पल याद किए जा रहे हैं, जो उन्हें पसंद आ रहे हैं। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कितनी शांति है, कभी नदी किनारे बैठ कर देखा है, ऐसा लगता है बहती हवा के साथ साथ मन भी कहीं दूर उड़ चला है। चांद तारों भरी निशब्द रात के साए में जब कोई बात तुम्हारे कानों को छुए तो समझ लेना कोई तुम्हें दिल से याद कर रहा है, ऐसे में जहां कहीं भी हो चले आना। ये हमारी इबारत जो है उसमें से कुछ एक लाइन इन्होंने इसमें लिखी है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि दिल जब प्रेम में पड़ जाता है ना, तब दिन दुनिया और इस जहाँ की और कोई ध्यान नहीं जाता है, बस एक मैं और एक वो। उसे सामान्य जगह बैठकर भी ख़त लिखने लग जाऊँ तो अपने आप लगने लगता है कि नदी किनारे शीतल हवा के झोंकों के बीच लिख रहा हूँ। मुझे आज भी वो पहली मुलाकात याद है। बादल आसमान में छाए थे, बीच बीच में बिजली हल्के से चमक रही थी, दूर कहीं शायद हल्की बारिश भी हुई थी क्योंकि मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू वातावरण में घुल गई थी। कितना प्यारा समा था वो। धन्यवाद। उमर कैद, इस फिल्म का गाना। इस गाने के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखा भी था, अंदाज़ा लगाया था उन्होंने कि आज की इबारत पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि ये गीत तो आप सुनवाएंगे। जी हाँ, यही गाना अब आपको सुनवा रहे हैं। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ें, गुलशन बावरा के बोल हैं, संगीत किसका है ये आप बताइए।

उमर कैद फिल्म का गाना जिसमें संगीत सोनिक ओमी का। एक साथी लिख रहे हैं कि इस तेज गर्मी में जब ऑफिस के लिए निकलता हूं और धर्मपत्नी मुस्कुराते हुए लंच बॉक्स और चाय का थर्मस देती है तो मानो तेज गर्मी छुमंतर हो जाती है और उनकी मुस्कुराहट की ठंडक का एहसास होता है पूरे समय। और एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि जब कोई अपना करीबी ठंडा मन से सुकून से कह दे कि मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, तो मानो दिल में इतनी ठंडक और सुकून महसूस होता है कि क्या बताएं। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि पंजाब में भी अभी गर्मी पड़ रही है तो नींबू पानी, मीठी लस्सी, गोंद कतीरा और मीठी छबील का शरबत का लंगर लगाया जा रहा है और इस तरह से ठंडक लोगों को मिल रही है। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं, जो पहले अनोखा प्यार फिल्म का गाना हमने आपको सुना उसके बारे में उन्होंने लिखा कि ये गाना तो हमने पहली बार सुना है और ये विविध भारती की लाइब्रेरी में ही हो सकता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अबोध शिशु को गोद में लेकर खेलना और उसकी किलकारी हंसी में खो जाना, ये भी मन को बहुत शीतलता प्रदान करता है। और एक, हाँ, एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि चिलचिलाती धूप में भी अमलतास के फूलों की तरह ये कार्यक्रम चल रहा है, हमारे विविध भारती से गानों की ठंडी बुछार हो रही है और मन को आनंद एवं सुकून मिल रहा है। सचमुच ही सुरीला सफ़र हम दोस्तों को एक डोर में माला की तरह पिरो कर रखता है। अमलतास के फूलों का आपने जिक्र किया, वो जो एक गुच्छा होता है अंगूर की तरह पीले फूलों का, वाह, सचमुच बहुत तेज़ गर्मी में भी जब आप बाहर जा रहे हैं और अमलतास के फूलों का गुच्छा अगर आपको दिख जाए तो उसे निहारिए सिर्फ दो मिनट के लिए, देखिए आपकी आंखों को कितना सुकून मिलता है, कितनी ठंडक मिलती है। और जब मैं इसे देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने या ईश्वर ने हमें जो ये उपहार दिए हैं इसके बदले में हम उन्हें कैसे धन्यवाद कह सकते हैं। भाई बहन फिल्म का गाना, शमशाद बेगम की आवाज़, इसमें संगीत किसका है ये आप बताइए।

भाई बहन फिल्म का गाना इसमें संगीत है श्याम सुंदर का। एक साथी हमारे लिखने की सुबह सुबह प्राणायाम में चंद्रभेदी और शीतली प्राणायाम से अंदर तक शीतलता मिलती है। जी हाँ, ये प्राणायाम भी बहुत कारगर है। अगर आप गर्मी से परेशान हो तो इसे करके आप थोड़ी राहत इसे पा सकते हैं। और एक साथी हमारे लिखे, प्रकृति में पानी और हवा के अलावा भी कई ऐसे तत्व हैं जो हमें शीतलता और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। हरी घास, नंगे पैर चलने पर शरीर की गर्मी शांत होती है। घने पेड़ सूर्य की किरणों को रोककर तापमान कम करते हैं। पौधों से वाष्पोत्सर्जन, हवा में नमी बढ़ाकर प्राकृतिक कूलिंग करते हैं। मिट्टी और चट्टाने, गीली मिट्टी, इसकी सुगंध और स्पर्श मन को शांत करता है। गुफाएं, भूगर्भीय संरचना के कारण ये स्थान हमेशा ठंडे रहते हैं। चंदन और मुल्तानी मिट्टी त्वचा पर लगाने से तुरंत ठंडक मिलती है। चंद्रमा की रोशनी, चांदनी रात में मन और मस्तिष्क को शीतलता मिलती है। भोर का समय, सूर्योदय से पहले की प्रकृति सबसे अधिक ठंडी और ठंडी होती है। हरियाली के दृश्य, हरा रंग आंखों के तनाव को दूर करता है। पक्षियों की चहचहाट से मानसिक सुकून मिलता है। और इस तरह से इन्होंने गर्मी को थोड़ा कम कर सके, इस तरह की बातें इन्होंने लिखी। एक साथी हमारे लिखे, खाने में खरबूजा, तरबूज, आम फ्रिज में काटकर ठंडा करके ठंडक का एहसास किया जा सकता है। पना बेल का शरबत भी शरीर को तरोताज़ा रखता है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम बात करते हैं कश्मीर की कली, इस फिल्म के गाने की। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले की आवाज़ें, एस एच बिहारी के बोल, संगीत ओ पी नैयर का। कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी लिख रहे हैं कि मंजू जी भले मेरी लिस्ट आपकी लिस्ट से ना मिले पर आपके गीत सुनकर दिल तो गदगद हो गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आपने जो बहुत पुराने कम सुने गाने सुनवाए हैं सुनने तो इससे भी है ना सुरमई ठंडक हमें मिल गई। एक साथी लिख रहे हैं कि गर्मी की दोपहरिया में मिट्टी के सकोरों में पंछियों को नहाते हुए देखकर भी मन को बहुत सुकून मिलता है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि सुराही का पानी सबसे अधिक ठंडक देता है तो उसे भी पीकर के आप अपने दिल दिमाग को ठंडक पहुँचा सकते हैं। चलिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, हमारी आखिरी लाइन थी कि याद किया है, ठीक है तो चलिए पतिता फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, हेमंत कुमार और लता जी की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, देव आनंद और उषा किरण पर फिल्माया गया ये गाना है।

0: दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है, लेकिन आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स, प्यारी प्यारी बातें, और उसमें कई बातों में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी छुपी हुई थी, जानकारी छुपी थी, तो आपकी इन बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब कार्यक्रम का सफ़र यहीं तक है, और मुझे यानी कि मंजू द्विवेदी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
3: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार दिन में 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली, प्रायोजक हैं देवदर्शन।

नमस्कार दोस्तों, बच्चे कच्चे घड़े की तरह होते हैं। बचपन में उनकी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी शरारतें, रूठना मनाना, उनके मासूम सवाल बहुत प्यारे लगते हैं। उनकी नटखट जिद भी बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि उस जिद में प्यार, स्नेह, अपनापन भरा होता है। जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी को आकार देता है, उसी तरह माता पिता के द्वारा स्नेह सिंचित बच्चों का मन भी धीरे धीरे सुंदर रूप लेता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है और किशोरावस्था और युवावस्था की ओर बढ़ते हैं, उनके भीतर अपनी सोच, अपनी पसंद और अपनी पहचान बनने लगती है।

आजकल बच्चों और युवाओं में क्रोध और जिद की अधिकता हो रही है। हर बात पर उनकी ये जिद होती है कि वो ही सही हैं, बाकी सब गलत। बड़ों की बातों पर विश्वास ना करते हुए पुराने जमाने की सोच बताकर नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी बात मनवाने की जिद और बड़ों की बातों पर असहमति उनकी बढ़ने लगती है। यही वो समय होता है जब वो खुद को समझे जाने की अपेक्षा रखते हैं। बहुत सारे सवाल उनके जहन में होते हैं और आत्मसम्मान उन्हें बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन शब्दों में उसे वो व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए उनका व्यवहार बदलता हुआ दिखाई देता है। जबकि भीतर से वो बहुत अधिक स्नेह, प्रेम, विश्वास और अपनापन खोज रहे होते हैं, अत्यधिक ऊर्जा से भरे होते हैं।

अक्सर जिद और गुस्से का कारण केवल बिगड़ना नहीं होता, और बच्चों और युवाओं की ये जिद अचानक नहीं आ गई, बल्कि आजकल के माहौल की ही देन है, जहां ज्ञान और जानकारी तो बहुत है लेकिन अनुभव बहुत कम। और भी बहुत से कारण हैं, जैसे करियर का प्रेशर, मन की उलझने, अकेलापन और उनकी बात ना सुने जाने, ना समझे जाने की भावना आदि आदि। ये वो समय है जब इन्हें प्यार और स्नेह की बहुत अधिक जरूरत होती है, और ज्यादातर माता पिता इन्हें तमाम कारणों की वजह से ये समय नहीं दे पाते। यदि बच्चों युवाओं को समय निकालकर धैर्य से उन्हें सुना जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए और प्यार से सही गलत क्या है ये बताया जाए और उनसे बातचीत किया जाए, तो उनका स्वभाव धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। बच्चों और युवाओं के जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए परिवार और समाज को आगे आना होगा, जिससे उन्हें ये एहसास न हो कि हम अकेले हैं। उनके भीतर स्नेह और सहिष्णुता का बीज बोना होगा।

कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट

0: विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
2: It is ironic that Pakistan with its long time...
3: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
2: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां AI स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
4: इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड।
5: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
4: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
6: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोकभवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में 4th स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
7: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
8: चाय, ये चाय।
9: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है बड़ा आदमी। इस फिल्म का महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है चित्रगुप्त का।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर।

0: 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और गीता दत्त की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, संगीत एस मदन का, फिल्म का नाम है बंटवारा।

0: दुख छोड़ो जी मेरा दल, जर गल सुन खजरे वाली।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आशा भोसले और मुकेश की आवाज़ों में भाभी की चूड़ियाँ इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना, संगीत सुधीर फड़के का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं तलत महमूद की आवाज़ में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, संगीत है सलील चौधरी का, फिल्म का नाम छाया।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं दाग फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। और अब आपको सुनवाते हैं घराना फिल्म का गाना। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शकील बदायूनी के बोल, संगीत रवि का। ये है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अंतिम गाना। आप इस गीत को सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली। कीजिए बस कुछ पल का इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सभी सखियों को और मेरे सामने बैठी हैं आरती, आपको नमस्कार। कैसी हैं आप?
2: चंचल जी, और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को, श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और कैसी हैं पूछ रही हो इतनी गर्मी में? बस ऐसा लग रहा है कि आधे हो गए गर्मी में पिघल पिघल के।
1: भाई देखिए, आलम तो गर्मी का ऐसा है कि शायद देश का कोई कोना इससे अछूता नहीं होगा, सिवाय कुछ जो बर्फीले प्रदेश हैं जहाँ अभी भी राहत के लिए लोग जा रहे हैं घूमने फिरने।
2: लेकिन इस वजह से वहाँ पे भी गर्मी होने शुरू हो गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसी जगहों पे भी गर्मी पड़ने लगती है।
1: लेकिन अपने ही शहर में आप हैं जहाँ रह रहे हैं और गर्मी में आपको कहीं बाहर निकलना हो तो लू से बचाव के तो बहुत सारे इन दिनों हम तरीके बता ही रहे हैं और कई बार हमने डॉक्टर से भी बातचीत सुनवाई है, लेकिन आंखों की देखभाल कैसे करनी, क्योंकि आंखों पर भी जो तपती धूप है, चिलचिलाती धूप है, इसका बहुत बुरा असर
2: इसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहे हैं आंखों में।
1: हाँ,
2: तो बहुत ध्यान रखने वाला है, तो इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो और आप घरेलू उपाय क्या अपनाते हैं या आप क्या क्या चीजें करते हैं तो आप हमें बताइए।
1: और
2: हम तो
1: घरेलू उपचार के अलावा कुछ खास बातें, जैसे घर से निकलते वक्त सर पे कोई कपड़ा लेना, कैप पहन लेना, आंखों पर काला चश्मा लगा लेना, ये उपाय तो सभी करते होंगे। इसके अलावा अगर आंखों में कोई ईचिंग इरिटेशन हो गया तो क्या घरेलू उपाय तुरंत किए जा सकते हैं, इसके बारे में जरूर हमारे साथी लिखकर बताएंगे। और कुछ चीजों से डर होता है, फोबिया होता है।
2: हाँ, फोबिया पता नहीं हर एक को कुछ ना कुछ होता ही है, जैसे कि हमें भी है। हर एक को होता है।
1: अभी हमारे क्या फोबिया, हम इसके बारे में बाद में करेंगे बात, लेकिन हमारे सुनने वालों को किस तरह का फोबिया है भाई,
2: वो उन्हें बताएं अपना। हाँ, बिल्कुल छुपाइए नहीं, बताइए ईमानदारी से पूरी अपनी अपनी बात, क्योंकि सभी को होता है कुछ ना कुछ किसी में किसी चीज का डर, तो आप बताइए।
1: इसके अलावा आज बात होगी कहानी पद्मश्री की, में राहीबाई सुमा पोपरे जो महाराष्ट्र की बीज माता है, यानी कि सीड मदर कही जाती हैं, इनके बारे में। और बहुत खास दिन है भाई, हाँ, चाय दिवस, चाय की चुस्कियां लेते लेते बहुत सारे काम है ना खत्म हो जाते हैं, कब हो जाते पता ही नहीं पड़ता। और जब भी हम
2: देश ऐसा यही है भारत, जहाँ पे इतनी 50 आप सोच लीजिए कि गर्मी, इतना तापमान चल रहा है, उसके बाद भी उनको क्या चाहिए, चाय
1: चाय चाहिए,
2: चाय के बिना गुजारा नहीं है।
1: हाँ, चार दोस्त बस मिलकर बैठे तो वहाँ एक पांचवी चीज होती है वो चाय होती है, दो लोग बैठे तो चाय होगी, अगर आप अकेले भी बैठे हैं तो आपका साथी अगर चाय का प्याला है तो बस। और बड़े से बड़ा होटल हो या छोटी सी एक टपरी हो, हर जगह चाय की चुस्कियाँ जो हैं वो अपना आलम बांध देती हैं। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, इसके बारे में तो थोड़ी चर्चा होगी, लेकिन एक और बड़ा खास दिन है संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, इसके बारे में
2: बात करेंगे। और साथ ही हम चाय के बारे में, आप भी बताइए कि आप किस तरीके से अपनी महफिल जमाते हैं चाय की प्याली के साथ में।
1: और जब संवाद की बात हो रही है तो संवाद यानी कि बातचीत के लिए भी चाय जरूरी होती है। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का जो दिवस है, ये जनता को इसके महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए और विश्व की बहुत सी समस्याओं का समाधान करने के लिए, संसाधनों को जुटाने और मानवता की उपलब्धियों का जश्न मनाने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए आयोजित किया जाता है।
2: जी और बिल्कुल, ऐसे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का अस्तित्व संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से भी पहले का है, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें एक शक्तिशाली प्रचार उपकरण के रूप में अपनाया है, इसीलिए दुनिया भर में इन संयुक्त राष्ट्र दिवसों को हम मनाते हैं।
1: तो आज हम मना रहे हैं संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, और साल 2001 में यूनेस्को ने इस दिन को अपनाया था, इसकी घोषणा की थी, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2002 में इसका प्रस्ताव रखा और हर साल 21 मई को इसे मनाने की आधिकारिक शुरुआत की गई फिर।
2: जी, और इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया की संस्कृतियों को समृद्धि का जश्न मनाना और शांति बनाए रखना और सतत विकास को बढ़ावा देना, ताकि सभी अलग अलग समाजों के बीच आपसी संवाद को प्रोत्साहन मिल सके।
1: बिल्कुल, ये दिन दुनिया भर की विभिन्न भाषाओं, परंपराओं, कलाओं, जीवन शैलियों को सम्मान देने और उनका जश्न मनाने के लिए होता है, और इस दिन शांति और विकास संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में संघर्षों को कम करने और संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में जो विकास के लक्ष्य हैं, संस्कृति की क्षमता है, उसको उजागर किया जाता है।
2: जी हाँ, और अभी समय हो रहा है, इतना हम लोगों ने इतनी बातें करी तो एक अच्छा सा प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।

0: ही बात बन जाती है, कुछ तुमने कहा कुछ हमने कहा और इसी तरह से संवाद होता है, बात बन जाती है और आगे बात को हम बढ़ा रहे हैं राहीबाई सोमा पोपड़े की बात के साथ में, जिन्हें महाराष्ट्र की सीड मदर या बीज माता कहा जाता है और सह्याद्री पर्वतमाला के बीचों बीच महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में, जिसे पहले अहमदनगर नाम से हम जाना करते थे, वहीं पर स्थित कोंभालने की ढलानों पर पर्वत श्रृंखला के भीतर गहराई में बसे स्थान पर महिलाएं दोपहर में भी एक साथ मिलकर काम करती हैं। थोड़ी ही दूरी पर राहीबाई सोमा पोपड़े का अपना यहाँ पर बीज भंडारण है। राहीबाई महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले आदिवासी ब्लॉक के कुंभले गांव में रहा करती थी। मूल रूप से महादेव कोली आदिवासी समुदाय से वो ताल्लुक़ रखने वाली उनका राहीबाई का जन्म एक बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ, जिसमें उनके 5 भाई बहन थे। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर सकी। उनका अधिकांश बचपन अपने माता पिता के साथ खेतीबाड़ी करते हुए बीता और जब वो सिर्फ 12 साल की ही तभी थी तभी उनका विवाह हो गया था और उसी गांव के समुदाय के एक किसान थे जिनके साथ उनका विवाह हुआ। शादी के बाद उन्होंने अपने पति के साथ खेती का काम जारी रखा और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता भी उन्होंने हासिल कर ली।
1: बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया कि महज 12 साल की उम्र में राहीबाई का विवाह हो गया था उनका, तो वो उसी गांव के समुदाय के किसान थे और शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के साथ खेती जारी रखी और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता हासिल कर ली थी उन्होंने। और शिक्षा से वंचित होने के बावजूद राहीबाई का दिमाग बहुत तेज था और उनकी दृष्टि पैनी थी। खेती करते करते उन्हें एक समय ये एहसास हुआ कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसलों का उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन खेती की लागत भी साथ साथ बढ़ती जाती है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों से उगाई गई जो फसलें होती हैं उनका सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। और जब राहीबाई अपनी बीज बैंक के दरवाजे को खोलती हैं, जहाँ वो बीज इकट्ठे करती हैं, जमा करती हैं, तो अंदर जो होती है वो गौरैया रहती है।
0: क्या बात है।
1: तो गौरैया उड़ती है तो राहीबाई कहती है कि पक्षियाला कलता काय खाच अनि काय नहीं, मनसाला एकता ज्ञान असुनपण त्याला हे समझते नहीं। यानी पक्षी सहज रूप से जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है लेकिन मनुष्य हमारे सभी ज्ञान के बावजूद समझने में विफल रहते हैं।
0: बिल्कुल, राहीबाई पोपड़े जो हैं वो बाजरे की एक देसी किस्म को बोने के लिए अपने अनुभव बयान करते हुए बताती हैं कि पहले 3 साल तो अच्छी फसल हुई, पक्षी खेतों में आते, दाना चुगते और अनाज में कुछ रुचि दिखाते, लेकिन 4th साल कुछ ऐसा हुआ जो वाकई अद्भुत था। पंछियों के झुंड खेतों में उतरे और पूरी फसल चट कर गए। और हैरानी की बात ये थी कि इन्होंने अपने आसपास के बाजरे के खेतों में जिनमें आधुनिक हाइब्रिड अनाज बोए गए थे बिल्कुल उनको छुआ भी नहीं। पक्षियों की पसंद बिल्कुल साफ थी कि उन्हें बाजरा पसंद नहीं था जो कि सख्त हो, कड़वा हो और कम पौष्टिक हो। और दूसरी तरफ जो देसी बीजों से उगाई गई फसल थी स्वाभाविक रूप से बहुत मीठी थी, मुलायम थी, पंछियों को भी वही मन भाई।
1: बिल्कुल, और वो याद कर क्योंकि पक्षी जो होते हैं वो उनको एहसास होता है कि कौन सी हम किस तरीके की जो फसल है वो किस तरह से उगाई जा रही, मिलावटी बीजों से उगाई गई है या असली देसी बीजों से उगाई गई है। तो याद करती हैं कि हम अनाज को हथेलियों में मसल कर ताज़ा ही खा लेते थे। इसी के साथ उन्होंने धीरे से एक बर्तन उठाया और बीज बैंक में राख में संरक्षित वॉल या घेवड़ा कहते हैं इसको के बीजों का एक मुट्ठी भर हिस्सा निकाला और कहती हैं कि वो ये सिर्फ बीज नहीं है, ये वो कहती हैं पीढ़ियों की विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अपनी सूझबूझ और ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने खेत पर तालाब और एक पारंपरिक जलकुंड बनाए। पहले अनुत्पादक समझे जाने वाली 2 एकड़ भूमि अच्छी उपज देने लगी और उस पर उगने वाली सब्जियों से उन्हें आय भी होने लगी। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र ग्रामीण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संस्थान में वहां से उन्होंने मुर्गी पालन में सहायता प्राप्त

0: को पहचानते हुए राहीबाई ने कई तिलहनों के अलावा चावल की 15 किस्मों, अरहर की 9 किस्मों और सब्जियों की 60 किस्मों सहित कई देसी फसलों का संरक्षण किया है। उन्होंने समुदाय को सलाह दी कि कृषि रसायनों से दूर रहिए। राहीबाई कहती हैं, हाइब्रिड फसलों से बने भोजन का सेवन करने के बाद ग्रामीण अक्सर बीमार पड़ रहे थे।
1: बिल्कुल, और अपनी सीखी हुई सारी बातों को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद राहीबाई अब किसानों और छात्रों को बीज कैसे चुनना चाहिए या मिट्टी की उर्वरकता को किस तरह बढ़ाना चाहिए, इसकी तकनीक और कीट प्रबंधन, इन सभी चीज़ों का प्रशिक्षण वो देती हैं। वो किसान को देसी फसल उगाने के लिए पौधे उपलब्ध करवाती हैं और उन्हें देसी किस्मों की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन भी देती हैं। उन्होंने देसी बीजों के संरक्षण के लिए कलसुबाई परिसर बरियानी बियानी संवर्धन समिति इस नाम से एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। उनके अथक प्रयासों के लिए उन्हें बाभलेश्वर स्थित कृषि ज्ञान विज्ञान केंद्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ बीज रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साल 2014-2015 में उन्हें BIF का सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान भी प्राप्त हुआ।
0: जी बिल्कुल, और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक ने उन्हें बीज माता की उपाधि दी थी। वो BBC की 100 महिलाएं 2018 की सूची में शामिल 3 भारतीयों में से एक हैं। उन्हें भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया।
1: उन्होंने एक बीज बैंक भी बनाया है और किसानों को इस शर्त पर उन्होंने वहां बीज दिए जाते हैं कि उधार लिए गए बीजों को दुगनी मात्रा में वो लौटा देंगे, यानी कि किसी तरह का ब्याज नहीं देना है, ब्याज के रूप में आपको दुगना बीज दे देना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और राहीबाई को धान, हायसिंथ बीन, बाजरा, दालें और तिलहन सहित 17 अलग-अलग फसलों की 48 स्वदेशी किस्मों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौरव प्राप्त है।
0: बिल्कुल, और हजारों किसानों और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रही राहीबाई को 2020 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: और अब सुनते हैं एक बड़ा प्यारा सा।

0: इस समय तो खेतों की हालत यही है कि धूप से वो जल रहे हैं, और कहीं बादल का एक टुकड़ा आके थोड़ी सी छांव ले आता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि सुकून दे गया है। और इन दिनों बहुत सारी नजरें बस निहार रही हैं कि वो काले बादल का कोई टुकड़ा है जो बरस जाए। हालांकि बारिश आने में थोड़ा सा भी समय बाकी है, लेकिन अगर अभी हमें सुकून चाहिए तो गर्मी में भी एक गर्म चाय की प्याली अगर मिल जाए,
1: मिल जाए ना, तो बस ऐसा लगता है कि अगर चाय ना मिले ना तो ऐसा लगता है कि सर में दर्द अपने आप ही महसूस होने लगता है। मतलब ये सोच है हमारी, असल में ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन अपने दिमाग को ऐसे सोचने में मजबूर, चाय नहीं पिए इसीलिए सर में दर्द हो रहा है, चाय नहीं पिए इसीलिए कुछ काम सही नहीं हो रहा है।
0: कुछ लोगों को आदत होती है काम करते समय बीच बीच में एक टी ब्रेक लेने की, थोड़े थोड़े अंतराल पे अगर उन्हें चाय ना मिले तो सच में उनका सर दर्द होने लगता है। और चाय दुनिया के सबसे पुराने पेय पदार्थों में से एक है, आरती हमारे सुनने वाले भी इस बात को जानते होंगे। पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सेवन किया जाने वाला कोई पेय पदार्थ अगर है तो वो है चाय। और दुनिया भर में एक बात बड़ी सामान्य सी मानी जाती है, और हिंदुस्तानियों की तो चाय पीने की आदत जो है ना वो वर्ल्ड फेमस है।
1: अगर आप किसी के घर गए चंचल जी, अगर आप कहीं किसी के घर में जाते हैं तो अगर उसने पानी दे दिया, कोल्ड ड्रिंक दे दिया, आपको खाने को सब कुछ दिया, लेकिन आप घर के उसने मुझे चाय नहीं पिलाई, चाय बस चाय नहीं पिलाई तो आपको शिकायत हो जाएगी।
0: भाई कुछ लोग कहते हैं कि एक लत होती है, लेकिन कुछ कहते हैं ये जिंदगी की खुराक है। लेकिन बता दें कि मेहमान नवाजी का भी प्रतीक मानी जाती है चाय, और अपना इसका एक खास दिन भी आता है। जी हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 21 मई की, आज के दिन की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे के बारे के नाम से भी हम जानते हैं। और इस दिन चाय दुनिया भर में सुर्खियों में रहती है, और सभी चाय प्रेमी अपना पसंदीदा पेय चाय उसका जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। दुनिया भर के बहुत सारे समुदाय हैं जहाँ चाय का गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। ये एक बहुत व्यापक रूप से सेवन किया जाने वाला पेय पदार्थ है। आतिथ्य, परंपरा, सामाजिक जुड़ाव, इन सब का प्रतीक भी हम इसे मानते हैं। और चाय पर जो शोध किए जाते हैं ना वो भी बहुत हैं, जो बताते हैं कि भाई करीब हर सेकंड में 25,000 कप लोग चाय पी लेते हैं, यानी कि अगर पूरे दिन में अगर से हम जोड़ें तो 1 अरब से भी ज़्यादा चाय एक दिन में पी जाती हैं।
1: सच में बहुत ज्यादा।
0: और पौराणिक कथाएं है ना वो बताती हैं कि चीन के सम्राट शेन होंग ने चाय की खोज तब की जब एक बार एक पेड़ से कुछ पत्तियां उड़कर उनके उबलते हुए पानी में गिर गईं, और जब उन्होंने उस उबलते हुए पानी को पिया तो वो जो गर्म पेय था ये उन्हें बहुत ही पसंद आया, और तब से बस चाय का जो है इजाद हो गया, ऐसा कहा जाता है।
1: और चंचल जी ऐसा है ना कि एक प्यारी चाय अगर दोस्तों के साथ हो तो क्या होता है, तो मतलब ऐसा समा बनता है ना कि बस लगता है कि अब ये समय जो है वो खत्म ना हो, बस चलता चला जाए।
0: जहाँ लगता है कि हम सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट के लिए मिले हैं ना, वो 10 मिनट कब आपके 1 घंटे में बदल जाएंगे ना।
1: वो चाय की चुस्कियाँ चलती रहती हैं, चलो एक बार और हो जाए एक एक प्याली और हो जाए। तो एक प्याली चाय अगर अपने अपनों के साथ हो तो घर मुस्कुराहटों से भर जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और एक प्याली चाय अगर रिश्तेदारों के साथ हो तो सारी मुश्किलें, सारी परेशानी, जिससे समस्याएं, लड़ाई झगड़े, सबका हल निकल आता है वहीं बैठे बैठे। और जो एक प्याली चाय ऑफिस की टेबल पर मिल जाए, या जैसे हमें मिल जाए अगर समय बात करते करते, तो हमारी जो बातें वो और स्वादिष्ट हो जाती हैं, और फाइलें अगर हम काम कर रहे हैं फाइलों पे तो फाइलें निपट जाती हैं फटाफट।
0: और जब पुराने दोस्त मिलते हैं उनके सामने अगर एक चाय की प्याली हो तो पुराना जितना समय साथ गुजारा हुआ है उसे हम एक बार फिर से जी भर के जी लेते हैं। और जब दिन भर की पीड़ा, चिंता, थकान, इसके बाद एक चाय की प्याली मिल जाती है ना, तो उसके एक एक घूंट में जो सुकून मिलता है आरती, वो शब्दों में शायद हम बयां भी नहीं कर सकते। और चाय अभी से नहीं, सदियों से बहुत तरह तरह के स्वाद से और भीनी भीनी सुगंध से हम सबका मन लुभाती रहती है।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत से शोध कहते हैं कि चाय बनाने और पीने, खाली पीने नहीं, बनाने और पीने की प्रक्रिया मन को शांत करती है, तनाव कम करती है और आराम पाने में सहायक होती है। और भारतीय संस्कृति में चाय महज एक पेय नहीं है बल्कि एक एहसास ताजगी का प्रतीक है, सामाजिक मेल जोल का सबसे लोकप्रिय माध्यम भी है। और इतना ही नहीं, चाय में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो तनाव कम करने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं।
0: भाई चाय की बातें हम करते रहेंगे लेकिन चाय के अलावा सुकून गीतों में भी होता है, तो एक गीत भी सुन लेते हैं।

0: भाई हम भी चाय जरूर पियेंगे कार्यक्रम खत्म होने के बाद में.
1: बिल्कुल पीते ही हमेशा.
0: हाँ हाँ. और आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है और फिर हम बैठकर चाय लेकर थोड़ी बहुत गपशप ना करें, बातें ना करें, तो भाई उस चाय को कहते ना तौहीन हो जाएगी.
1: सम्मान करना जरूरी है भाई.
0: और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये चाय की सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक महत्व का के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में है, उसके अवसर बताने के बारे में है. साथ ही इसके उत्पादन को खेत से लेकर प्याले तक टिकाऊ बनाने की दिशा में काम करने का भी एक दिन है, ताकि लोग संस्कृतियां और पर्यावरण और इसके आने वाले लाभ के बारे में पीढ़ियों तक लोगों को पता लगे. खेत से लेकर कब तक कुशल, पारदर्शी और टिकाऊ मूल्य श्रृंखलाएं और लोगों और पर्यावरण दोनों के लिए सुनिश्चित करने के लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं
1: जी. और अभी कुछ साल पहले तक दुनिया भर में 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता था, पर अब ये 21 मई को मनाया जाने लगा है. अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, बदला क्यों होंगे आखिर. तो हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे भारत की अहम भूमिका, मतलब इसके पीछे भारत का हाथ ये तो हम कहेंगे.
0: चाय की बात और भारत की बात ना ऐसे कैसे होगा.
1: इसमें तो हम भारत का हाथ कहेंगे क्योंकि भारत ने ही चाय को उसका हक दिलाया है. दरअसल दुनिया भर में चाय उत्पादक देश 15 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते रहे हैं, क्योंकि तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता नहीं दी गई थी.
0: लेकिन हाँ, इसे लेकर भारत ने एक बड़ी पहल की. 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया. और अच्छी बात तो ये हुई आरती कि इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया.
1: बिल्कुल.
0: और इसे आधिकारिक तौर पर 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया और पहली बार 2020 में विश्व स्तर पर इसे मनाया गया था. ये सारी जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें लिखकर पहुंचाई.
1: हाँ, बहुत सारे उन्होंने कमेंट्स किए हैं इस पे. और चाय का उत्पादन यूं तो कई देश करते हैं, लेकिन भारत इस मामले में दूसरे पायदान पर आता है. और मजे की बात यह है कि चाय के उपभोग यानी कि इस्तेमाल के मामले में भारत पहले स्थान पर है और रहना ही चाहिए था. तो भारत में चाय की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से आप आसानी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में सबसे अधिक चाय का उत्पादन, लगभग 30% चाय की खपत जो है उत्पादन की, वो भारत में ही होती हो जाती है.
0: और दुनिया भर में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है एशिया के जो अन्य देश उनमें होता है, जिसमें भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका और केन्या जैसे कई देश शामिल हैं. इन देशों में चाय पीना रोजाना दिनचर्या से लेकर समारोह अगर हैं तो वहाँ भी इनका प्रचलन बहुत है. लेकिन सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि चाय आसानी से और बेहद कम लागत में उपलब्ध हो जाती है. अब अगर हमें भी बातचीत करनी हो तो ज़रूरी नहीं हम बहुत बड़े होटल या रेस्टोरेंट में जाकर बैठे, एक टपरी पर भी हम आराम से 5-6 रुपए की एक चाय की छोटी सी प्याली लेकर
1: स्वादिष्ट मिलती है
0: और वहाँ घंटों बैठकर बतिया सकते हैं.
1: बिल्कुल. और हालांकि चाय के भी कई रूप हैं और हर रूप में इसका स्वाद भी अलग है. अलग अलग क्षेत्रों में चाय बनाने के तरीकों में भी भिन्नताएं हैं. कोरोना महामारी के दौरान में कई ऐसे लोग जो चाय नहीं पीते थे, लेकिन वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अदरक, लौंग, इलायची वगैरह सब चीजें.
0: और भाई चाय के चक्कर में तुम ये ना भूल जाओ कि इस अंतराल का समय हो चला.
1: हाँ, मैंने देख लिया आपको, आप मुझे कह रही हैं कि अब बस करो, अब बस करो.

0: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली, और आपके साथ हाजिर हैं हम सखियां, मैं चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और भाई हम बात कर रहे थे ना अदरक लौंग इलायची वाली अंदाज की,
1: आरती अंतराल का समय हो गया, चाय टी टाइम हो गया है।
0: हाँ तो अब समय है एक प्यारा सा कमेंट पढ़ने का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चाय एक तृप्त करने वाला पेय है जो भोजन के बीच भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है, ये हृदय के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। चाय के जो मसाले हैं उन्हें चाय के साथ मिला देने से पॉलीफेनॉल का अच्छा स्रोत मिलता है जो रक्त में वसा का स्तर नियंत्रित करता है और धमनियों में जमाव को रोक देता है।
1: बिल्कुल, बस एक बात का ध्यान रखिए कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय मत पीजिए, और चाय पीने से पहले आप एक गिलास पानी पी लेंगे तो जो अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ चाय एसिडिटी कर रही है तो वो चीज़ नहीं होगी। अब हम श्रोता का अपने कमेंट ले रहे हैं, तो हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि सिर्फ आज ही के दिन क्यों, हम तो चाय दिवस हर दिन हर सुबह शाम मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे, चाय पीते आए हैं और पीते रहेंगे। सखी सहेली प्रोग्राम खत्म होने के बाद आज की चाय हमारी ओर से आप सभी को पिलाई जाएगी, जो चाय से करते हैं प्यार वो इस आमंत्रण से कैसे करें इनकार। इस बात पर गुजराती मुहावरा चाय चा बाकी बीजा पीना वगड़ाना वा,
0: क्या बात है,
1: क्या बात।
0: और जैसे तुम बता रही थी ना बहुत सारे जो फ्लेवर डाले जाते हैं, स्वाद डाले जाते हैं, जिसमें अदरक लौंग दालचीनी काली मिर्च, तो बहुत सारे लोग इसे इम्यूनिटी बूस्टर झिंगर टी कहते हैं, कुछ मसाला टी कहते हैं, लेकिन जो थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं वो दूध वाली चाय ना पी के ब्लैक टी या ग्रीन टी, हरी चाय जिसे कहते हैं, उसे पीना पसंद करते हैं। लेकिन भारत में अधिकांश लोगों की जो पसंद है वो दूध वाली चाय ही होती है, और कड़क चाय जिसे हम कहते हैं ना वो पीना पसंद करते हैं।
1: अगर आप चाहते हैं कि चाय जैसे हमें लगती है दूध वाली, बहुत ज्यादा दूध मत डालिए उसमें, अगर आपने एक छोटा चम्मच दूध भी डाला ना तो भी चलेगा, तो भी आपको वो नुकसान नहीं करेगी। बहुत ज्यादा दूध डालने से थोड़ा सा एसिडिटी का परेशानी कर देती है, तो आप इस तरह से बना के पी सकते हैं। भाई चाय तो चाय है। और एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि एक कप चाय का महफिलें जमा देता है और कई मसले जो है वो सुलझा देता है, और हाँ मेरे जैसे चाय के दीवाने पति से एक कप अदरक इलायची वाली चाय से धर्म पत्नी के कई फरमाए

0: भी पूरी करा देता है। इस साल इंटरनेशनल टी डे का विषय है चाय की उपयोगिता बनाए रखना। मुबारक हो सबको अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। मैं तो सिर्फ चाय का दीवाना दीवाना दीवाना, मतलब इनकी वाइफ जो है वो इनसे सब अपने जो चीजें हैं कि भाई साड़ी लानी है, ये काम करना है, वो काम करना है, वो करवा लेती
1: चाय की प्याले भी करवा लिए जाते हैं।
0: कब चाय मिल जाने पे।
1: अगले श्रोता का कहना है कि चाय हमें धैर्य सिखाती है, धीरे धीरे उबालना, खुशबू फैलाना, फिर दिल को सुकून देना। शायद इसीलिए कहा जाता है चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि एक भावना है। एक और बड़ा अच्छा सा संदेश है जिस पर लिखा गया है, सुनो तुम ना बड़े गजब हो, बिल्कुल चाय की तरह मेरी तलब हो। सांवला है रंग, थोड़ा कड़क मिजाज है, मेरी खुशियों की चाबी बस चाय का प्याला है।
0: ओहो, क्या बात है भाई।
1: लिखने का अंदाज ही बड़ा प्यारा है इनका।
0: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर बशीर बद्र का, मतलब एक जो शायर है उनका एक बेहतरीन शेर है कि हंस पड़ी शाम की उदास फजा, इस तरह चाय की प्याली हंसी। सच ही तो है कि चाय की एक प्याली से उदास शाम भी हंस पड़ती है। चाय तो प्रेम है लेकिन इन दिनों वजन ज्यादा होने की वजह से चाय पीना हमने छोड़ दिया है। सारा दोष भयंकर पड़ रही गर्मी पर डाल दिया है।
1: तो वही चलिए, गर्मी में सुकून देते हैं, राहत देते हैं एक प्यारे से गीत के साथ।

0: भाई हर दर्द की दवा होती है एक कप चाय का प्याला। और हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि सुबह की शुरुआत हो या दोस्तों की महफिल, चाय भारतीय जीवन शैली का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन चुकी है। हर घूट ताजगी और स्वाद का एहसास कराती है।
1: बिल्कुल। और हमारे दीक्षित हैं जो लिखते हैं कि अभी भी हम चाय पीते पीते ही मैसेज लिख रहे हैं, मीठे नीम पुदीना और तुलसी पत्ती वाली चाय बनाती श्रीमती जी ने आप दोनों बहनों को दो कप चाय भेजी है, हमने बहुत टेस्टी और शरीर के फायदेमंद ये जो चाय है वो भयंकर गर्मी में वो भेजी है उन्होंने। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो इतनी गर्मी में हमारे लिए चाय बना रही है।
0: हमारे श्रोता साथी लिखते हैं कि हर घूट में घुला अपनेपन का प्यार, चाय की खुशबू से महके हर घर द्वार, थकी हुई सुबह को देती नई मुस्कान, चाय दिवस पर सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। तो आपको भी नमस्कार और आपको भी चाय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता हैं जो लिखते हैं कि विश्व हमारे घर में मेरे घर में सुबह की जो पहली चाय होती है वो मैं ही बनाता हूँ और इस बहाने मेरी वाइफ को सब्जी बनाने का थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है और हेल्प हो जाती है और धीरे से पढ़ना उन्होंने कहा है, मीठी मीठी बातें और शरारतें भी हो जाती हैं। अरे क्या बात है।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि सर्दियों की सुबह रजाई में पैर सिकोड़ कर सोया हुआ बचपन और कोयले के लाल अंगारों पर केतली से उड़ती सुगंधित चाय की नींद को तोड़ती हुई सीधे पेट में पहुंच जाती और बिना कुछ सोचे समझे चीनी मिट्टी की प्लेट के साथ वाला कप और उसके साथ घी के बने हुए नमकीन कुरकुरे पराठे के साथ सर्दियों की सुबह की शुरुआत होती थी। और हमारे लिए बचपन की जो चाय और पराठे की दुनिया थी ये सबसे लजीज पेय हुआ करते थे। चाय सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि हमारे समाज में सम्मान सूचक भी है। बिल्कुल सही बात है, सर्दियों में अगर चाय का प्याला मिले तो बात ही क्या है, इस गर्मी में कोई चाय नहीं जोड़ता।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि चाय सिर्फ एक पेय नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है जो सुकून, गहरी बातचीत और नए रिश्तों की शुरुआत का प्रतीक है। चाय के साथ लोगों के गहरे जज्बात जुड़े होते हैं। एक हाथ में मेरी चाय का कप है, एक हाथ में मेरे हाथ में मेरे हाथ तेरा हाथ है, हाथों को तलब है हाथों की और दिल को तलब है साथ की।
0: देखो भाई संदेश बहुत सारे हैं लेकिन चाय विषय ही ऐसा है कि चाय छोड़ना तो छोड़, हम उस विषय को ही नहीं छोड़ पा रहे। हम आगे बढ़ते हैं और फोबिया कैसे कैसे होते हैं इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। फोबिया किसी चीज या स्थिति के प्रति एक अत्यधिक तर्कहीन डर होता है जो अक्सर वास्तविक खतरे से कहीं ज्यादा होता है। ये एक प्रकार की एंजाइटी डिसऑर्डर या चिंता विकार कहा जा सकता है। जैसे कि एक्रोफोबिया, ऊंचाई से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, ये भी एक फोबिया हो सकता है। और बताओ कौन कौन से फोबिया होते हैं।
1: फोबिया होते हैं जैसे कि किसी को किसी जगह बंद हो गया, जैसे लिफ्ट में नहीं जाना चाहता कोई,
0: हाँ।
1: तो एक छोटी सी जगह में बंद हो जाने का डर होता है,
0: हाँ।
1: है ना, ये भी फोबिया होता है। किसी को भूतों का डर होता है, तो बहुत से सारे फोबिया ही होते हैं। आपको अगर किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लग रहा है अनावश्यक तौर पर तो वो फोबिया ही है।
0: जैसे साइनोफोबिया, कुत्तों का डर होता है। ग्लासोफोबिया, सार्वजनिक रूप से पब्लिकली जो बात करने का यानी कि सबके बीच में आकर बात करने का, उन्हें कुछ कहने का जो डर है,
1: हाँ।
0: उसे कहा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: हीमोफोबिया होता है खून देखने से डर। कई बार लोगों को होता है ना कि कहीं अपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, अस्पताल में गए, हमारे कोई परिचित है, यहाँ तक कि अगर आप सिर्फ ब्लड देने भी गए जाँच के लिए तो वो इतना सा खून भी कई लोगों से देखा नहीं जाता, वो फोबिया होता है सिर्फ उनका।
1: बिल्कुल। और एक होता है ट्राइपैनोफोबिया जो कि सुई या इंजेक्शन से डर लगता है जिसमें आपको। और सोशल फोबिया जैसे कि सोशल, जो भी आप बाहर जाते हैं तो सोशल जो एंजाइटी होती है आपको वो होता है। और बहुत से लोगों को लोगों के बीच में शर्मिंदगी महसूस होती है तो वो भी एक तरीके का फोबिया है। और एगोराफोबिया होता है, वो उस स्थानों या स्थितियों का डर होता है जिनसे बचना मुश्किल हो सकता है या जहाँ फंस जाने पर मदद नहीं मिल सकती है। तो इसमें पीड़ित जो होते हैं वो खुली जगहों पर, या हम जैसे अगर इसमें हमारा फोबिया ऐसा तो हम भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहेंगे, बचना चाहते हैं वहाँ पर जाने से। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं ये अपने मन का जो डर है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो फोबिया कहलाता है।
0: तो फोबिया पर हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं।

0: भी देखो, हमारे श्रोता लिखते हैं कि फोबिया एक ऐसा डर होता है जो सामान्य डर से बहुत ज़्यादा होता है। किसी चीज़, जगह, जानवर या किसी परिस्थिति को देखकर मन में घबराहट होने लगती है। जब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तब डरते भी हैं। फोबिया अक्सर पुराने बुरे अनुभव, तनाव या मन में चिंता के कारण हो सकता है, लेकिन इसका इलाज भी संभव है। सही सलाह, काउंसलिंग, सकारात्मक सोच और धीरे धीरे डर का सामना।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि फोबिया मतलब एक भय है जिसकी कोई सीमा तय नहीं, किसी विशिष्ट वस्तु, जानवर या स्थिति के प्रति अत्यधिक तर्कहीन तीव्र भय है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके तीन प्रकार होते हैं, विशिष्ट फोबिया, सोशल फोबिया और एगोराफोबिया। किसी को कोई विशेष जानवर से डर लगता है तो किसी को मौसम की स्थिति या प्राकृतिक तत्वों का डर लगता है। मेरा एक सहकर्मी था, अब वो भी मेरे साथ में सेवानिवृत्त हो चुका है, उसे कुत्तों का डर सेवा काल के दौरान लगता था और आज भी लग रहा है। मतलब वो जो डर है,
0: बहुत सारे लोग तो सिर्फ बिजली जब कड़कती है उसी से डर जाते हैं। अभी हमारी श्रोता सखी लिखती हैं कि मेरी बेटी छिपकली को देखकर बहुत डर जाती है और सिर्फ देख लेने भर से ही उसकी चीख निकल जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है, मुझे सफाई का बहुत फोबिया है।
1: सफाई का बहुत लोगों का होता है कि ये फोबिया, कि मतलब मुझे भी है कि जरा सा भी कुछ गंदा होगा, ये क्यों ऐसा हो रखा है, फिर से उसमें लग जाएंगे।
0: हाँ बिल्कुल, उनको हर जगह साफ सुथरापन चाहिए होता है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि फोबिया दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को अंधेरे से फोबिया होता है, किसी को स्टेज से डर लगता है। बहुत लोगों को स्टेज पर जाने से बहुत फोबिया होता है, इतना बर्फ हो जाते हैं वो। और मुझे बचपन में फोबिया था, गुब्बारे से मुझे बहुत डर लगा करता था और तब मैं उसको देख भी नहीं पाता था।
1: एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे सिर्फ भूत प्रेतों से डर लगता है, ये जानते हुए भी कि ये सब कपोल कल्पित है, फिर भी अंधेरा होते ही सारी भूत प्रेत की कहानियाँ या फिल्में जाने कहाँ से याद आने लगती हैं और फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए रात गुजरती है। तो मतलब ये है कि भूतों का भी उनको, ये अधिकतर लोगों को होता है कि तब तक दिन में नहीं लगता है, रात होते अंधेरा होते लगते रहता है डर।
0: तो चलिए अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं आरती, और गर्मियों में आंखों की देखभाल किस तरह कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं कि आप पर्याप्त पानी पीजिए ताकि आंखों में सूखापन ना आए, क्योंकि आंखों में सूखापन, जलन और बेचैनी ये सभी पानी की कमी के लक्षण होते हैं और दिन भर पानी का

0: सेवन करने से आँखों में भी नमी बनी रहती है और सूखापन दूर हो जाता है। तैराकी या साइकिलिंग अगर करने वाले कुछ लोग हैं तो उनके उचित जो चश्मे होते हैं वो पहनकर आँखों की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और चश्मे के रूप में आँखों की सुरक्षा क्लोरीन और खारे पानी के संपर्क के साथ साथ तैरते समय बैक्टीरिया से भी बचाती है। और स्पोर्ट्स ग्लासेस और रैप राउंड जो सनग्लासेस होते हैं जो पूरे अपने आँखों आपके पूरी आँखों को कवर करते हैं, उससे धूल के कणों, मलबे और जो भी आप आ रहा है उससे सीधी धूप से आँखों की रक्षा करते हैं। और अपने दैनिक भोजन में आप पत्तेदार सब्जियां, गाजर और खट्टे फल शामिल कर लीजिए तो ये बेहतर होगा आपके लिए।
0: और बातें आगे बढ़ाएंगे पर एक गीत सुन लेते हैं।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इस आयोजन की जिसकी चर्चा भी हो रही थी
2: बिल्कुल जाना है शुरू होने वाला है
1: और कुछ ही समय बाकी है तो जो मुंबई में रहने वाले हमारे श्रोता हैं वो जरूर ही इसका हिस्सा बनेंगे।
2: पहुंचिए फटाफट।
1: और हम बात कर रहे थे आँखों की।
2: तो एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि तेज गर्मी और एसी

0: में अगर बैठे हैं आप बहुत ज्यादा, तो वहां से आंखें जल्दी सूखती हैं, और आंखों के प्राकृतिक आंसू के स्तर को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए आप आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: इसके अलावा हमारे श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में पिंक आई यानी कंजक्टिवाइज का जो है संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, और अपनी आंखों को ऐसे में बार बार ना रगड़ें। घर अगर आप लौटते हैं कहीं बाहर से धूप से, तो साथ साथ आंखों को भी साफ पानी से जरूर धोया करें।
0: बिल्कुल, और धूल प्रदूषण से बचें। और साथ ही हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि गर्मियों में आंखों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है, तेज़ धूप और गर्म हवा और धूल से आंखों में जलन या खुश्की हो सकती है, तो आप धूप का चश्मा ज़रूर पहनिए।
1: बिल्कुल, और हम सुन लें गाना, और है ये कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: और देखो आरती, कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं हमारे सुनने वालों से इजाजत। हाँ बिल्कुल, चंचल वर्मा
1: और आदि श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओ, विविद भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूँ संगीता श्रीवास्तव, लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। मौसम बेशक करवटें ले चुका है श्रोताओ, और हमारे श्रोता भी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ऐसे में विविद भारती से आपके रेडियो तक पहुँचते गीत है ना किसी शीतल छाया की तरह। इन्ही गीतों की झनकार लिए आ चुका है आपका पसंदीदा प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जो सज रहा है हमारे श्रोताओं की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों से और उनके पसंदीदा गीतों से। तो चलिए शुरू करते हैं बातों का सिलसिला, और ये बजी टेलीफोन की घंटी। चलिए देखते हैं ये पहला कॉल किसका है। ध्यान से सुनिए, कहीं ये आपका कॉल तो नहीं। हेलो फरमाइश। हाँ जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंजनल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: तो विविद भारती में आपकी बात हो रही है, बताइए अपने जयपुर शहर के बारे में कुछ।
1: जी मैडम, बहुत खुशी हो रही है विविध भारती में मेरा कॉल लग गया। तो यहाँ मौसम बढ़िया है मैडम, गर्मी पड़ने लगी। आपके वहाँ बम्बई में कैसा हो रहा है मौसम मैडम?
0: बम्बई का तो मौसम इस समय थोड़ा बहुत गर्म है, वैसे तो मौसम यहाँ का खुशगवार ही रहता है। राजस्थान के बारे में कुछ बताइए, पिंक सिटी कहा जाता है इसे।
1: पिंक सिटी कहा जाता है, और यहाँ जयपुर में ना दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं मैडम। यहाँ घूमने के लिए जगह है बहुत सारी, जैसे रामनिवास बाग हो गया और आमेर किला हो गया, आमेर की माता हो गई।
0: अच्छा, तो यहाँ का तो खान पान भी बड़ा प्रसिद्ध है।
1: हाँ जी, यहाँ खान पान बड़ा दाल बाटी चूरमा होता है मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि विविध भारती सुनते रहते हैं?
1: जी मैडम, मैं विविध भारती सुन रहा हूँ, 2011 से मैं विविध भारती के साथ जुड़ा हूँ मैडम।
0: अच्छा, कार्यक्रम कौन कौन से अच्छे लगते हैं आपको?
1: मेरे को सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मैं सुबह से लेकर शाम तक सुनता रहता हूँ। ये हेलो फरमाइश हो गया, आज के पनकार हो गए, और ये सखी सहेली में खासकर मेरे बहुत फेवरेट है। उसमें सखियों की बात होती है और सखाओं की बात होती है, फेसबुक पे कमेंट पढ़े जाते हैं मैडम, बचपन से लेकर हमारे जो भी बातचीत होती है तो बताया जाता है मैडम।
0: अच्छा, अब ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं?
1: जी मैडम, हम खेती बाड़ी करते हैं और इस टाइम तो खेत खाली है।
0: अच्छा, चावल की तैयारियाँ हो रही होंगी या क्या लगेगा गर्मी के बाद? फिर
1: अभी से बाजरा की फसल लगाएंगे मैडम, 1-1.5 महीने बाद बाजरा बोएंगे।
0: अच्छा, तो चलिए अब आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैडम, आज फिल्म का नाम रहेगा सलाके, और इसमें गाने के बोले धक धक वाला ऐसा कुछ गाना है, वो सुनना चाहूंगा मैडम मैं।
0: तो चलिए, आपके रेडियो सेट पर आ रहा है ये गीत आपकी पसंद का, सुनिए।

0: हेलो फरमाइश, बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: मेरा इंटर सारिया प्रयाग से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं
1: जी? अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
0: अच्छा, कौन से क्लास में है?
1: नाइन्थ में।
0: नाइन्थ में, तब तो बड़ी सारी जिम्मेदारियां आ रही हैं। नाइन्थ का एग्जाम तो बहुत सावधानी से देना पड़ता है क्योंकि उसके बाद तो टेंथ आ जाता है, तो जिम्मेदारियां नाइन्थ से बढ़ जाती हैं। तो बताइए तैयारियां कैसे चल रही हैं आपकी, और अभी तो वैसे रिजल्ट आ गया होगा।
1: जी।
0: अच्छा, तो आप दसवीं क्लास में चले गए।
1: जी, आपके कार्यक्रम सारे सुनते हैं।
0: अच्छा, कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं?
1: आज के फनकार, गीतों भरी कहानी, आज के मेहमान, सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
0: तो आप तो पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं और रेडियो भी साथ साथ सुनते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो रेडियो से आपका जुड़ाव कैसे हो गया?
1: रेडियो जुड़ा बचपने से सुन रहे हैं रेडियो को,
0: क्योंकि देखिए आजकल जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर तो मोबाइल देखते हैं और ज्यादातर टीवी देखते हैं, रेडियो की तरफ तो झुकाव होना बहुत अलग बात है। लेकिन आप रेडियो सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है?
1: हमें जो सखी सहेलियां जो विषय रखते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: अच्छा, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियां होती हैं।
1: हाँ, हमें मोबाइल ज्यादा नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसमें आंखों में रोशनी भी जा सकती है।
0: तो आप अपने आप को मोबाइल से कैसे दूर रखते हैं?
1: क्योंकि हम रेडियो सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं, हमारी पढ़ाई भी चलती रहती है।
0: तो बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आप अपने साथ के जो बच्चे हैं जो आपको सुन रहे हैं इस समय रेडियो पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके लिए मैं ही कहेंगी कि आप भी पढ़ाई करें, रेडियो सुनिए, मोबाइल से ज्यादा ज्यादा दूर रहिए।
0: और अपने शहर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, यहाँ संगम है, बहुत ही अच्छा संगम है।
0: तो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अभी से हम दे देते हैं क्योंकि आप दसवीं में आ गए हैं। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है फिर तेरी कहानी याद आई। काले बोले दिल में सनम की सूरत, आंखों में आके दे मेरे खुदा मुझे एक और जिंदगी दे।
0: और अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा गांव गुरुपुरी से गोल्डी बात कर रहा हूँ।
0: हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, ये तो बहुत सुंदर जगह है गोल्डी जी।
1: जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल
0: जी। तो आजकल क्या मौसम है वहाँ?
1: जी मैम, बहुत गर्मी है आजकल, तो पक्षी की मतलब पता नहीं लग रहा, पक्खा लगाया हुआ कि नहीं लगाया हुआ, लगाया दो पक्खे लगाएंगे वो भी काम पक जाएंगे।
0: मतलब अभी गर्मी पड़ रही है वहाँ?
1: जी बहुत गर्मी है मैम।
0: अच्छा, काम क्या करते हैं?
1: मैं दृष्टिहीन हूँ, ऐसे घर का ही काम करता हूँ थोड़ा बहुत।
0: अच्छा अच्छा, तो विविध भारती सुनते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते रहते हैं मैम कुछ प्रोग्राम।
0: बताइए कि विविध भारती के कौन से प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मैम हेलो फरमाइश।
0: तो अपने काम काज के साथ कैसे समय निकालते हैं रेडियो सुनने का?
1: मैम रेडियो सुनते रहते हैं काम काज, क्योंकि रेडियो तो ऐसा मनोरंजन साधन है कि इसमें तो काम काज में कोई रुकावट आ ही नहीं सकती, क्योंकि रेडियो तो हमने सिर्फ कानून से सुनना होता है।
0: हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैम, हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा है, इसमें देवी देवताओं के स्थान है, ज्वाला जी माता का मंदिर है, चिंतपूर्णी माता है, नैना देवी है, और भी बहुत है, देवल सिद्ध बाबा बालकनाथ जी है।
0: और हमारे सुनने वाले अगर हिमाचल प्रदेश जाना चाहें तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहेगा?
1: मैम आजकल का जो मौसम है बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर मई जून में बरसात आ जाएगी, तो बरसात में थोड़ा फिर मुश्किल हो जाती है ना, नवंबर से लेकर आज मई तक आ जाए, और थोड़े दो तीन महीने में जून जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ना आए, क्योंकि बरसात पड़ती है तो फिर कोई क्या होता है, कभी रास्ते खराब हो जाते तो फिर मुश्किल हो जाती है जी।
0: अच्छा देखिए, हिमाचल की जो संस्कृति है वो बड़ी अलग सी है, यानी कि वहाँ के अगर हम पोशाकों के बारे में बात करें, पारंपरिक पोशाक के बारे में बात करें, वहाँ की संस्कृति के बारे में बात करें, तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे?
1: मैम संस्कृति तो हर राज्य की अलग अलग ही होती है मैम अपनी अपनी।
0: बिल्कुल
1: मैम, यहाँ हमारी ये है कि हमारे जो कांगड़ा की जो धान है वो कुछ अलग ही है, वो

0: हेलो फरमाइश। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: क्या करती हैं हसीना जी?
1: सिलाई करती हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो इंदौर के क्या हाल हैं?
1: अच्छे हाल है, मगर गर्मी तो सब दूरी है मैम।
0: तो गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या खास है, क्या खान पान है, या किस तरह से गर्मी से निजात पाने की कोशिश की जा रही है?
1: गर्मी के लिए तो एक शायरी कर देती हूँ आपके लिए। इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो ये तो विविध भारती की आवाज है, और इसका जब आगाज होता है तो फिर हर तरफ शीतलता ही शीतलता होती है, और बहुत हमारे श्रोता
1: पहुँचाते हैं आपके गाने जो मुंबई से आते हैं ना मैडम, बहुत ठंडक पहुँचाते हैं, चलता देते हैं।
0: जी जी जी। हसीना जी, अपने काम काज के बारे में बताइए।
1: मैं गनी बेग का काम करती हूँ, जूट का होता है मैडम। सुबह हम 9:30 बजे चले जाते हैं और 6 बजे वापस आते हैं। मतलब घर का भी काम करना पड़ता है, बाहर का भी करना पड़ता है।
0: तो जूट का काम, क्या काम, कुछ बनाती हैं उसका?
1: इसका रिपेयरिंग होता है मैडम, हाथ से रफू होता है।
0: अच्छा अच्छा, और क्या करती हैं
1: इसके अलावा? तो बस अभी कहीं पर भी कॉल रहते तो लगाती रहती हूँ मैं, आप लोगों को सुनती रहती हूँ, हेलो सहेली में भी, और विविध भारती के जितने भी कार्यक्रम आते हैं। जब मन चाहेगी तो आपने शुरू करा, इसके लिए भी शुक्रिया।
0: अच्छा हसीना जी, एक बात बताइए कि आप काम करने भी जाती हैं, घर भी संभालती हैं, तो इस बीच रेडियो कैसे सुनती हैं?
1: मैडम दुकान पे भी रेडियो रहता है दिन भर, और घर पे भी रहता है।
0: तो काम भी चलता रहता है, रेडियो भी चलता रहता है। तो

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ।
0: नरोत्तम गौड़ जी, आप तो विविध भारती के बहुत पुराने श्रोता हैं।
1: जी मेहरबानी आप लोगों की,
0: क्योंकि मैं आपको जो आपका नाम है वो बहुत पुराना है, बहुत समय से मैं सुन रही हूँ। तो नरोत्तम गौड़ जी, क्या समाचार हैं आपके शहर के?
1: हमारे शहर में भी हम 40 डिग्री से लेके 44 डिग्री तक की गर्मी में जीवन यापन कर रहे हैं।
0: जी, अपना ख्याल कैसे रखते हैं आजकल?
1: ख्याल तो बस आवश्यक कार्य होता है तो बाहर निकलते हैं, और जो उपाय होते हैं वो करते हैं। भरपूर पानी पीते हैं, लिक्विड ज्यादा काम में लेते हैं,
0: बिल्कुल
1: पुरानी खाने पीने की चीज ताजा ही खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, और हमको अभ्यास भी है। राजस्थान के लोग हैं हम तो, गर्मी का अभ्यास है।
0: तो नरोत्तम जी ये बताइए, घर के जो सदस्य हैं वो भी रेडियो पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल, मेरा रेडियो बजता है तो सभी सुनते हैं, क्योंकि मैं सेवा पूरी तो अधिकतर मैं घर पे ही रहता हूँ। पूरे दिन तो नहीं, लेकिन कम से कम 3-4 घंटे तो मेरा रेडियो चलता ही है और विविध भारती ही उससे सुनते हैं।
0: तो आपके अगर शौक के बारे में बात किया जाए तो क्या है शौक आपका?
1: मैं दरअसल राजकीय सेवा से निवृत्त हूँ, तो 41 साल मैंने मेरे जीवन के राष्ट्र सेवा में, राजकीय सेवा में, लोक सेवा में निकाले। मेरे को भोजन करने का, खाने पीने का बहुत शौक है, गुनगुनाता भी हूँ।
0: तो कुछ गुनगुना कर बताइए हमें फिर।
1: अभी जो गाना मैं सुनना चाहूंगा, दरअसल क्या है कि उदयपुर में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो रखी है।
0: जी,
1: धर्मेंद्र हेमामालिनी और जानी वाकर पे फिल्म आया हुआ है, राजा जानी फिल्म का, तो वो मैं गुनगुना देता हूँ और आप सुना भी दीजिए।

0: हेलो फरमाइश,
1: कैसे हो आप?
0: हाँ मैं अच्छी हूँ, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: कच्छ गुजरात से, गांव का नाम नया अंजार, कच्छ खत्री कॉलोनी एरिया से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुल कादिर खत्री।
0: तो अब्दुल कादिर जी, अपने शहर के बारे में, गुजरात के बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ, हमारे कच्छ जिले के बारे में बात करें तो कच्छ तो एक बड़ा जिला है।
0: क्या करते हैं?
1: बंदेज साड़ी आता है ना, बांधनी, वही साड़ी बनाने का काम है हमारा।
0: अच्छा, तो ये तो बड़ी ही क्या कहते हैं ना कि समृद्ध कला गुजरात की।
1: जटिल कला है, जटिल कला है, जो तो कोई नहीं कर सकता, सीखने में टाइम लग जाता है। और बारीक धागे से इसे राई की दाने के बराबर बांधा जाता है और बांधने के बाद इसे डाइंग किया जाता है कोई भी कलर में। जैसे कि कपड़ा सिल्क है तो सिल्क का कलर चलेगा, कॉटन है तो कॉटन का चलेगा कलर, और अगर दूसरा कोई दुसियान है या कोई तसर है कपड़ा, दूसरा कोई भी कपड़ा जॉर्जेट, तो उसके हिसाब से दूसरा कलर चढ़ेगा।
0: अच्छा।
1: मगर कलर करने के बाद इसका जो गेटअप आता है ना, वो बहुत बढ़िया आता है गेटअप।
0: लेकिन अक्सर करके देखते हैं कादिर जी कि जो बंदेज साड़ियां होती हैं या जो इसके शलवार कुर्ते बनते हैं, इनमें रंग बहुत जल्दी निकल जाता है, तो ऐसा क्यों होता है?
1: क्या है कि सिल्क में तो कलर की गारंटी बिल्कुल नहीं आती, हेवी साड़ी होती भी तो भी नहीं आती, क्योंकि इसमें एसिड कलर का यूज किया जाता है और ये सब भारी साड़ी आती है ना, ड्राई क्लीन भी होती है। मगर कॉटन में आप लेंगे ना कहीं से भी, तो कॉटन में शायद इसमें बहुत कम कलर निकलते हैं। कॉटन में, कॉटन आता है ना कपड़ा, वो वेट कलर चढ़ता है, तो इसमें कलर निकलने का कोई शिकायत नहीं आता।
0: जी जी, तो उस पर जो काम किया जाता है, जो आप बनारसी काम बता रहे हैं, तो वो क्या पहले के समय में तो सोने और चांदी के तारों से होता था, तो अब ये किस तरह से होता है?

0: है जो आप बता रहे
1: ना वो तो
0: हैं।
1: आता है, वो तो रेडी आता है ना, वो सफेद कपड़ा है ना, वो तो बनारस से रेडी आता है, वो जैसा भी धागा होता है ना सोने चांदी का डिजाइन किया हुआ, उसके ऊपर हमारा काम तो बंदेज करना है। देखो व्हाइट साड़ी है तो इसमें हमने सफेद दाना निकाला, येलो दाना निकाला, उसके बाद उसे डाइंग कर दिया, ग्रीन किया, फाइनल फाइनल ग्रीन करने के बाद दो तरह के दाने निकलेंगे, येलो भी निकलेगा और व्हाइट भी निकलेगा इस तरह से।
0: जी बिल्कुल, लेकिन ये है कि कादिर जी, ये जो आप बंधेज की साड़ियों का काम करते हैं, ये मुझे ये बताइए कि ये आपके परिवार में सभी लोग करते हैं और इसको आपको आगे बढ़ाना है, या फिर ये सिर्फ आप ही करते हैं?
1: ना मैं करता हूँ, मेरा वाइफ भी करता है, मेरा लड़का ही, हम तीनों इस काम में लगे हुए रहते हैं।
0: तो इस काम के साथ साथ विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
1: ना बिल्कुल सुनते रहते, क्यों नहीं, विविध भारती में आप तो एक नया कार्यक्रम भी शुरू हुआ उसके लिए हम बधाई देते हैं आपको, मन चाहे गीत पत्रों के ऊपर आधारित।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप बताइए कादिर जी अपनी पसंद का गीत।
1: खानदान फिल्म से है, जितेंद्र अभिनीत फिल्म है ना खानदान, उसका ये लता मंगेशकर की आवाज में है, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है।
0: और अब आपके रेडियो सेट पर आ रहा है।

0: हेलो फरमाइश।
1: हम भी रमेश साहब बोल रहे हैं, बिहार बांका जिला गांव झिकुरिया से।
0: तो बिहार में तो इस समय बहुत गर्मी पड़ रही होगी कमलेश जी।
1: हाँ जी, ये तो 2-3 दिन पहले बारिश हुआ था जी।
0: तो बताइए काम क्या करते हैं कमलेश जी?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: खेती का काम जो होता है अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि सर्वोपरि है, क्योंकि आप न सिर्फ अपने लिए मेहनत करते हैं बल्कि जो खेतों से अनाज आता है उससे हम सब भी जो है वो पोषित होते हैं, है ना? तो कमलेश जी, ये बताइए कि आजकल क्या चल रहा है खेतों में, यानी कि जो अगली फसल है। देखिए अभी तो आम का मौसम है।
1: हाँ जी, मौसम तो अभी आम का है और खेतों में अभी मूंग लगा हुआ है और सब्जी भी लगा हुआ है।
0: सब्जियां और मूंग तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो आम की खेती है वो इस समय तो पूरी तरह से अच्छी होगी।
1: हाँ जी, अच्छी है।
0: अच्छा, तो ये बताइए कमलेश जी कि जो खेत हैं, जैसे आपने मूंग की बात करी, तो इसमें जो आजकल खाद इस्तेमाल की जाती है वो क्या आप जैविक खाद इस्तेमाल करते हैं?
1: खाद एक यूरिया पड़ता है, वो पड़ता है जी।
0: अच्छा अच्छा, कमलेश जी बताइए फिर खेती का काम करते हैं तो रेडियो कैसे सुनते हैं, मेड़ पे रख के सुनते हैं?
1: रेडियो तो मैम जी पहले चलता था, अब तो हम मोबाइल ऐप पे न्यूज ऑन ऐप पे सुनते हैं।
0: तो मोबाइल ऐप तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस वो है कि सिग्नल हाँ आना चाहिए, है ना?
1: हाँ जी, सिग्नल बहुत अच्छा पकड़ता है कहीं से भी, हर जगह जहाँ भी खेतों में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं वहाँ मोबाइल पास में और न्यूज ऑन ऐप पे चलते रहता है आपका हेलो फरमाइश का कार्यक्रम। पंचायत गीत भी चालू हो चुका है आपका।
0: तो आप कौन कौन से कार्यक्रम पसंद करते हैं विविध भारती के?
1: कार्यक्रम तो हमको हेलो फरमाइश सबसे फेवरेट है, और शाम को जो 7 बजे आता है
0: शाम को
1: माला कार्यक्रम।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आप बताएं अब अपनी पसंद का गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
1: बेटा फिल्म का गाने का बोले कोयल सितेरी बोले कू कू वाला गाना सुना दीजिए।
0: तो आप लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार,
1: मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ जी, शरण पल्ला जी।
0: अच्छा,
1: महाराष्ट्र आम की मुंबई, सुंदर मुंबई। मैं बॉम्बे में रहा हूँ 18 साल जी।
0: मुंबई में किसी कामकाज के सिलसिले में रहते थे?
1: हेल्पर था मैं नेवी, जब ये त्रिशूल और विजय बनते थे ना, विक्रांत चालू हुआ था, मैं उस टाइम बॉम्बे में ही था जी।
0: अच्छा अच्छा,
1: मैं अभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं फिर अमृतसर आ गया जी, मेरे को हो गया 20-22 साल अमृतसर में जी।
0: अच्छा अच्छा, तो अमृतसर के क्या हाल है बताइए?
1: अमृतसर में इस टाइम गर्मी बहुत है मैडम जी, फसल तो कट गई है, खेत खाली पड़े हैं बस।
0: जी जी जी, और वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी हो तो थोड़ा घर में ही रहना ज्यादा दोपहर के समय अच्छा होता है।
1: ये आप लोग बताते रहते हैं ना कि गर्मी में 12 बजे से लेके 4 बजे तक बाहर मत निकलो, सुन के अमर भी करते हैं। अमृतसर तो खाने पीने वाला शहर है जी, मेरा वैसे अमृतसर के बाजू में अटारी गाँव है, वाघा बॉर्डर।
0: तो अमृतसर तो बड़ी सुंदर जगह है।
1: बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर, गोल्डन टेम्पल, दुर्गियाना मंदिर, जलियांवाला बाग, घूमने लायक जगह है जी।
0: जी जी जी,
1: बॉर्डर जो हमारा अटारी है वहाँ शाम को रोज 25-30 हजार आदमी इकट्ठा हो जाता है जी, झंडा उतरता है लख।
0: हाँ
1: जी
0: हाँ हाँ, तो वो सेना का जो ये कार्यक्रम होता है बहुत ही अच्छा होता है।
1: हाँ जी,
0: एक बात बताइए, जो अमृतसर का यानी पंजाब का सुंदर सी परंपरा है सांझा चूल्हा की, इस बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: हाँ जी, सांझा चूल्हा, जैसे परिवार एक साथ रहते थे ना जी, सांझा चूल्हा उसको बोलते हैं कि परिवार एक और चूल्हा एक ही बनेगा, सबकी रोटी बनेगी। अभी सांझा चूल्हा तो खत्म हो गया, अभी तो एक एक बेटा कहाँ, एक बेटा कहाँ, पहले एक ही घर में 25-25 जी रहते थे, तो तंदूर भी एक चलता था, रोटी सारा मोहल्ला बनाता था, तो चूल्हा एक होता था, सारे खानदान की रोटी बन जाती थी, उसको बोलते थे सांझा चूल्हा। ये टीवी सीरियल भी आया था सांझा चूल्हा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और अमृतसर या पंजाब की कहें तो वहाँ की जो खेती बाड़ी है, वहाँ की परंपरा जो है और वहाँ का खान पान बड़ा है। तो अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, और बताइए कि विविध भारती आप ही सुनते हैं या आपके परिवार
1: में? मैं ही सुनता हूँ बहुत, मैं तो ना जी जब बड़े बड़े रेडियो होते थे ना जी, पनाका गीत माला आता था सिलोन से, मैं तभी से जुड़ा हुआ हूँ।
0: तो अब आप बताइए कि आप कौन सा अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म मनोज कुमार की पत्थर के सनम है जी, विजय रहमान मुमताज, तौबा ये मतवाली चाल, फूलों की डाल।
0: तो सुनिए लीजिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: मैम, नमस्ते
0: नमस्कार, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं
1: जी। मैम मैं ग्राम अली नगर बरेली उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ मैम। मेरा नाम है मोहम्मद उमर रैना।
0: रैना जी बताइए क्या हालचाल है आपके, क्या करते हैं
1: जी। मैम बहुत बढ़िया हालचाल है मैम, आज बहुत दिनों में कॉल लगी मैम, बहुत खुशी हो रही है मैम जी। मैम मैं कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री उसमें काम करता हूँ मैम।
0: तो कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं क्या?
1: जी मैम पीना पसंद करते हैं गर्मी में मैम।
0: अच्छा तो कोल्ड ड्रिंक के बारे में हमें कुछ बताइए कि वहाँ फैक्ट्री में क्या काम करते हैं आप?
1: जी मैम मैं वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम देखता हूँ मैम, जो है डिस्पैच का काम देखता हूँ, सुपरवाइजर हूँ मैम वहाँ में। ये तो मैम जो है लोड कराते हैं कंपनी मैम, जो है बढ़िया से बनती है मैम, ये चीनी से और इसकी जो होती है वगैरह वगैरह उससे बनती है मैम।
0: अच्छा तो ये कोल्ड ड्रिंक बच्चे भी बहुत पीते हैं और सबको भी बहुत पसंद है।
1: जी जी मैम ये चीनी से बनती है मैम।
0: तो इसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं कि भाई इसको कम पिए?
1: जी मैम कोल्ड ड्रिंक है जैसे सोटनर की कोल्ड ड्रिंक होती है मैम, ये बच्चों को से भी बच्चों को कम पिलाना चाहिए सोटनर की कोल्ड ड्रिंक मैम। ये कहना चाहता हूँ सोटनर के माल से बच्चे रहे मैम, चीनी का माल पिए और कंपनी का माल पिए, अच्छा माल पिए मैम, उससे कुछ नहीं होता मैम। सोटनर का माल पीने से थोड़ी बीमारी होती है।
0: और इसके अलावा और क्या काम करते हैं, यही है आपका मेन काम?
1: जी मैम यही काम है, गांव में दुकान है मैम अपनी।
0: अच्छा रेडियो विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
1: जी मैम मैं ये सब बहुत सुनता हूँ मैम, मेरा बचपन से शौक रहा रेडियो सुनना मैम, और विविध भारती तो बहुत समय सुनता हूँ मैम। इससे पहले एक प्रोग्राम आता था SMS के बहाने BBS के तराने, ये मैम तो बहुत पसंद था मैम।
0: तो ठीक है अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम फिल्म का नाम है आई मिलन की रात और गाने के बोल है कितने दिनों के बाद आई सजना रात मिलन की।
0: तो हम आपको सुनवा रहे हैं

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार भाई।
0: नमस्कार, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मैं सुरेश रामू साबले, ग्राम सामनाकर तालुका कागल शिल्ला कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ। सही,
0: क्या हाल चाल है कोल्हापुर के सुरेश जी?
1: गर्मी साधारण है और हमदे करवांदा का मौसम है, धान मेवा है। वही के तीसरे साल में बंद रहता हूँ, घर में रहता हूँ।
0: और सुरेश जी ये बताइए कि कोल्हापुर में गर्मी कैसी पड़ रही है?
1: गर्मी बहुत है।
0: तो फिर दिनचर्या कैसी रहती है?
1: दिनचर्या क्या है, कभी उठता हूँ, रेडियो सुनता हूँ, भजन सुनता हूँ, भजन गाता हूँ। भजन मंडल है, ये भजन मंडल में भजन गाता हूँ।
0: अच्छा, तो भजन भी गाते हैं, तो कुछ सुनाइए भजन।
1: दक्कनचा राजा जोशी बमाजा बोलूया चांगे भले, दक्कनचा राजा जोशी बमाजा बोलूया चांगे भले। शासन काठी डुले जोशीबाची, शासन काठी डुले, शासन काठी डुले जोशीबाची, शासन काठी डुले, शासन काठी डुले काटी।
0: बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आप गाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इसको ढोल मंजीरे के साथ गाते होंगे तो ये भजन और भी अच्छा और भी सुंदर लगता होगा, है ना? तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैंने प्यार किया लता मंगेशकर, एस बी बालसुब्रमण्यम, और गीत है देव कोहली, संगीतकार का नाम है राम लक्ष्मण। बोल भाई, दिल दीवाना दिल सजना के मानना ये पगला है, समझानी से समझे ना।
0: ठीक है सुरेश जी, आपकी पसंद का ये गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, लीजिए सुनिए।

0: ये था हेलो फरमाइश कार्यक्रम। आप सुन रहे थे अपनी पसंद के गीत। आपको याद दिला दें श्रोताओं कि आज इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं के कॉल हमने शामिल किए हैं वो कृपया हमें 2 महीने बाद ही दोबारा फोन करें, जिससे हमारे दूसरे श्रोताओं को भी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सके। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कीजिए हमारा फोन नंबर 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। एक बार फिर आपको बता दें हमारा फोन नंबर आप नोट करें 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। मुंबई का STD कोड 022। इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक गुरुवार शाम 4 बजे से। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर्लेकर का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। तो अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात और फिर होंगी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी।

0: ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छायांकित कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: सामिन, कुछ रिश्ते जैसे जन्म जन्मांतर के लगते हैं, क्योंकि ये रिश्ते केवल इस जीवन के नहीं होते, सात जन्मों से साथ हैं जैसे यूं लगता है कभी कभी। हालांकि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, पर प्यार में लगता है कि हम हर पल साथ रहें, एक दूसरे में खोए खोए से, एक दूसरे में गुथे हुए से, क्योंकि ये प्यार सिर्फ प्यार नहीं, आदत भी नहीं, रूह का एक हिस्सा बन जाता है। तब
1: भूल गया सब कुछ, भूल गया सब कुछ।

मैंने उस दिन पहली बार अपने भीतर उतर कर देखा, वहां मैं थी और वो था। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने कहा था, तुम्हारा चेहरा चांद जैसा नहीं है, पर तुम एक प्यार से लिखी हुई किताब हो जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। तुम जैसी हो तुम वैसी ही पूरी हो। कहते कहते उसकी आंखें शरारती हो गई थी।

0: दीवाना। मैं चाहती थी कि कोई मेरे जज्बात को बिना बोले समझे, फिर तुम मिल गए। साधारण सा प्यार भी असाधारण हो जाता है तुम्हारे साथ जैसे। न कोई बड़े सपने, न दीवानगी, न झूठा रोमांस। तुम्हारा प्यार किसी फिल्मी डायलॉग से शुरू नहीं होता, वो तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। पर हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी आंखों में झांक कर शरारती अंदाज में कुछ कह जाती हो,
1: ए, आओ ना, दिल है बेकरार।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर कोई थोड़ा सा भी थाम ले तो मन थिरकने लगता है, जिंदगी खुशगवार हो जाती है तब। हाँ, छोड़कर चले जाना तो आसान है, लेकिन थामे रहना, जैसे तुमने थामा मुझे। सैकड़ों को प्यार करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हीं ने तो कहा था बस एक को 100 तरीके से प्यार किया जाए वही काफी है। प्रेम की जरूरत होती है सच्चाई, विश्वास और धैर्य। जरा थाम कर तो देखिए किसी को, कभी किसी तरह।

उसका यूं गले लगाना एक अजीब सुंदर सा एहसास है। वो थोड़ा सा स्पर्श, वो थोड़ी सी करीबी, अहा, एक आवेग नहीं, पल भर की शांति है वहां जैसे। उसका वो आलिंगन एक विश्वास देता है मेरे मन को। उसकी बाहों की खामोशी मेरी टूटन को जोड़ देती है। उसका यूं गले लगाना जैसे दिल की गहराइयों में पना देता है मेरे समूचे अस्तित्व को।

प्रेम सिर्फ एक अनुभव नहीं, प्रेम साथ रहने का नाम भी नहीं, ये तो एक रूपांतरण है। हाँ, एक रूपांतरण। तपिश है, नरमाहट है, गर्माहट है, विश्वास है, प्राणवायु है। ये तो उसका प्रेम सर्दियों में सुबह की सूरज की गर्मी जैसा है। उसका चाहना गर्मी की तपन से दूर एक ठंडक का एहसास देता है। कभी कभी ये प्रेम बसंत में हवा की हल्की सी सरसराहट जैसा लगता है, और कभी कभी वो प्रेम सितार की मधुर तान जैसा बन जाता है। प्रेम की वो गर्माहट, वो तपिश, आह कितना सुकून।

0: तराने नए पुराने
1: गाने, तराने नए पुराने लेकर आते हैं बस कुछ ही पलों में।
2: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
3: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिस्तरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
4: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार दिन में 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली, प्रायोजक हैं देवदर्शन।

0: तराने नए पुराने
1: साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस प्रोग्राम तराने नए पुराने में। लीजिए इस प्रोग्राम की पहली पेशकश।

0: ये मस्तानी शाम में मस्ताना गीत कटी पतंग से आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज थी।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता, और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त प्रोग्राम तराने नए पुराने।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं तराने नए पुराने।

जुबिन नौटियाल की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। राबता फिल्म से प्रीतम का संगीत था। और तराने नए पुराने के बाकी के नगमे आप सुनेंगे समाचारों के बाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा, ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में LPG प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन LPG देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1,000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। महाराष्ट्र में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग ने दक्षिण कोरिया के शैक्षणिक संस्थानों के साथ आज 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ महाराष्ट्र की साझेदारी से राज्य के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती और अब लीजिए तराने नए पुराने की अगली पेशकश।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

एरी पवन, ये गीत अभी आप सुन रहे थे बेमिसाल फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, आर डी बर्मन का संगीत था। तराने नए पुराने में ये अगली पेशकश। फिल्म न्यूयॉर्क, सुनिधि चौहान की आवाज में संदीप श्रीवास्तव ने इसे लिखा, प्रीतम का म्यूजिक।

प्रोग्राम तराने नए पुराने में हम ये गीत लेकर आए हैं पड़ोसन फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज़।

0: पड़ोसन फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का ये प्रोग्राम तराने नए पुराने यहीं संपन्न होता है।
1: तराने नए पुराने।

आप सुन रहे थे राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रम। हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 6:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, उसके बाद जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे। इन्हें हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल से प्रदेश दौरे पर, राजस्थान को कई नई रेल सुविधाओं की सौगात देंगे। राज्य में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर वार्डों के पुनर्गठन और मतदाता सूची का काम पूरा हुआ। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का दौर जारी, लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी बेहाल। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए मनाए गए गोडावण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित और कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में चयन। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल से 2 दिन के प्रदेश दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और प्रदेश को नई रेल सुविधाओं की सौगात देंगे। रेल मंत्री कल सुबह जोधपुर पहुंचेंगे, जहां वे विभिन्न रेल सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: रेल मंत्री के इस दौरे की एक बड़ी सौगात जोधपुर दिल्ली वंदे भारत की क्षमता में होने वाला रिकॉर्ड बढ़ोतरी के रूप में मिलने वाली है। 22 मई से ये ट्रेन 20 कोच के साथ दौड़ेगी, जिससे इसकी क्षमता लगभग 3 गुना बढ़कर 1440 सीटें हो जाएगी। भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए मेंटेनेंस डिपो के फेस 2 और लगभग 400 करोड़ की लागत से नए मेगा कोचिंग टर्मिनल की स्थापना की घोषणा की जाएगी। समारोह में साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को जैसलमेर तक विस्तार किया जाएगा। ट्रेन के जैसलमेर तक विस्तार से पर्यटन नगरी को गुजरात से सीधी सुपरफास्ट ट्रेन सुविधा मिलेगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: जोधपुर से श्री वैष्णव जालौर जाएंगे, वहां वे भुज नई दिल्ली ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। ये रेलगाड़ी राज्य के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इसके बाद उनका पाली जाने का कार्यक्रम है, जहां वे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे पुनर्विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। साथ ही वे लघु उद्योग भारती के नए भवन का लोकार्पण भी करेंगे। रेल मंत्री शनिवार को जयपुर में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके बाद वे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम के तहत डूंगरपुर की धम्बोला ग्राम पंचायत में ग्रामीणों से संवाद का कार्यक्रम है। इससे पहले उन्होंने बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र जनों तक पहुंचाने के लिए समर्पित भाव से काम करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अवैध धर्मांतरण करवाने वाले तथा राजनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने नहरों और तालाबों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने और पानी का सदुपयोग करने का आह्वान किया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कुशलगढ़ के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. गिरीश भाभोर और बांसवाड़ा नगर परिषद के आयुक्त दुर्गेश सिंह रावल को तत्काल एपीओ करने के आदेश जारी किए। राज्य में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर वार्डों के पुनर्गठन और मतदाता सूची का काम पूरा कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज झुंझुनू के नारनोद गांव में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्री पटेल ने अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर ही राजनीतिक आरक्षण दिया जाएगा।
2: हमारी सरकार आने के बाद आयोग का गठन किया है। आयोग अपनी कार्यवाही तीव्र गति से कर रही है और जो आयोग की रिपोर्ट आएगी, सरकार चुनाव कराने को तैयार है। संवैधानिक बाध्यता के तहत जब तक ओबीसी वर्ग के संबंध में आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक चुनाव कराया जाना शायद चुनाव आयोग।
0: राज्य मानवाधिकार आयोग ने नागौर जिले में खनन श्रमिकों में सिलिकोसिस बीमारी और समुचित चिकित्सा सुविधाओं के अभाव पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जी आर मूलचंदानी ने नागौर के जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य खनन अभियंता को नोटिस जारी कर अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने अधिकारियों को सभी खनन क्षेत्रों का भौतिक निरीक्षण करने, श्रमिकों की सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने और गीली खनन प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा है। आयोग ने सिलिकोसिस रोगियों के इलाज के लिए हर महीने विशेष चिकित्सा शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज लोक भवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। राज्यपाल ने अधिकारियों से आम जनता के प्रति संवेदनशील होकर काम करने का आह्वान किया। श्री बागड़े ने जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता से लेने की बात कही, साथ ही गरीब तथा वंचित लोगों के कल्याण के लिए काम करने को कहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का कहर जारी है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से हाल बेहाल है। लगातार पड़ रही गर्मी से आम जीवन के साथ ही पशु पक्षी भी परेशान नजर आ रहे हैं। बाड़मेर में दिन भर धूल भरी आंधी चलने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। श्रीगंगानगर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तेज गर्मी के मद्देनजर आमजन से विशेष एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में ज्यादातर स्थानों पर तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। 45.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। इस बीच विभाग ने कल से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना जताई है। इससे तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से पहली बार आज गोडावण दिवस मनाया गया। जैसलमेर में आयोजित कार्यक्रम में वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वन विभाग और स्थानीय निवासियों की कोशिशों से इस विलुप्त प्राय पक्षी इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि इन साझा प्रयासों और गोडावण प्रजनन केंद्रों के माध्यम से इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
3: और जो मुझे जानकारी दी गई है, इस अपने नेचुरल सोर्स में लगभग 130 गोडावण पक्षी हमारे पास हैं और 87 गोडावण पक्षियों को हमने चूजे पैदा करके कृत्रिम तरीके से तैयार किए हैं। आने वाले समय में जो हमारा राजकीय पक्षी है गोडावण, उसके संरक्षण में वन विभाग मुस्तैदी से काम करेगा। गोडावण की संख्या में वृद्धि होगी और पर्यावरण के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका वन विभाग और हमारा गोडावण पक्षी और वन विभाग देने का।
0: वन मंत्री ने गोडावण प्रतिमाओं का अनावरण भी किया, साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम के बाद श्री शर्मा ने सम स्थित गोडावण ब्रीडिंग सेंटर और डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का दौरा कर गोडावण संरक्षण के लिए चल रहे प्रयासों का जायजा लिया। कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का चयन आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है। वे स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित होने वाले इन खेलों में 70 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अरुंधति कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाली राजस्थान की पहली महिला मुक्केबाज बन गई हैं। इससे पहले वे बॉक्सिंग वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके लिए अरुंधति को बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया संदेश में श्री शर्मा ने कहा कि उनकी ये उपलब्धि युवा शक्ति के लिए प्रेरणा है। राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ की ओर से दृष्टिबाधित शतरंज प्रतियोगिता कल से शुरू होगी। जयपुर स्थित कल्याण संघ परिसर में होने वाली इस प्रतियोगिता में वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्ग दो वर्गों में होगी। 3 दिन की स्पर्धा में लगभग 65 दृष्टिबाधित खिलाड़ी भाग लेंगे। जयपुर के बिचून औद्योगिक क्षेत्र में माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। श्री यादे माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने आज जयपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से माटी कलाकारों के लिए आधुनिक तकनीक के माध्यम से नए रोजगार के द्वार खुलेंगे। राज्य में माटी कला के सभी कलाकारों कामगारों के लिए शिविर लगाकर आर्टिजन कार्ड बनाए जाएंगे। श्री टाक ने बताया कि बजट घोषणा के तहत 5,000 बिजली से चलने वाले चाक और मिट्टी गूंधने की मशीनों का वितरण किया जाएगा। राज्य सरकार और गूगल इंडिया की ओर से आज जयपुर में बिल्ड विथ एआई कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 100 से अधिक स्टार्टअप संस्थापकों छात्रों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिन्हें गूगल के अत्याधुनिक एआई टूल्स का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के शासन सचिव डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं और स्टार्टअप्स को विश्व स्तरीय तकनीकी मंच उपलब्ध कराना है। उन्होंने सरकारी सेवाओं और

0: जन कल्याणकारी योजनाओं की आमजन तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एआई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल से प्रदेश दौरे पर, राजस्थान को नई रेल सुविधाओं की सौगात देंगे। राज्य में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर वार्डों के पुनर्गठन और मतदाता सूची का काम पूरा हुआ। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का दौर जारी, लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी बेहाल। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए मनाए गए गोडावण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। और कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में चयन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से दौसा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले में राष्ट्रीय डिजिटल जनगणना प्रक्रिया के पहले चरण में मकानों का सूचीकरण किया जा रहा है। 1 मई से 15 मई तक नागरिकों ने ऑनलाइन स्वगणना की, वहीं 16 मई से जनगणना कर्मियों ने घर घर जाकर मकानों की गिनती शुरू कर दी है। ये 14 जून तक चलेगी। इससे पहले मास्टर ट्रेनर्स को CMMS पोर्टल और मोबाइल ऐप के इस्तेमाल संबंधी प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही जिला प्रशासन ने डिजिटल जनगणना के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम आयोजित किए। दौसा लोकसभा क्षेत्र में रेलवे फाटकों पर लगने वाले लंबे जाम की समस्या से जल्दी ही राहत मिलने वाली है। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से रेलवे की ओर से 31 नए रेलवे अंडरपास RUB स्वीकृत किए गए हैं। इन अंडरपासों के निर्माण से दौसा शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैफिक दबाव कम होगा, साथ ही रेलवे फाटकों पर रोजाना लगने वाले जाम से भी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। शहर के सबसे व्यस्त मंडी फाटक, जड़ाव फाटक और छतरी वाली ढाणी फाटक पर अंडरपास निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा खोर्रा, निमाली, जोपाड़ा, कोलवा, मानोता, भजड़ा दुब्बी, दयालपुरा बस्सी, हंसमहल बस्सी और थानागाजी के टहला बाईपास रोड फाटक सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों को भी योजना में शामिल किया गया है। क्षेत्र में RUB बनने से स्कूल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों सहित आमजन को फायदा मिलेगा। लंबे समय से स्थानीय लोग रेलवे फाटकों पर जाम की समस्या से परेशान थे, जिसके कारण कई बार एम्बुलेंस और जरूरी सेवाएं भी प्रभावित होती थीं। रेलवे के इस फैसले को क्षेत्र के विकास और यातायात सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से जिले में भी ग्राम रथ अभियान चलाया गया। पिछले दिनों ये ग्राम रथ जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे। इनके जरिए किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही कला जत्थे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए भी जागरूकता की अलख जगाई गई। जिले की लालसोट कृषि उपज मंडी इन दिनों सौंफ की खुशबू से महक रही है। मंडी में सौंफ की आवक अपने पूरे परवान पर पहुंच चुकी है। इन दिनों लालसोट कृषि उपज मंडी में सौंफ की 3000 से अधिक बोरी की आवक बनी हुई है। इसके चलते पूरी मंडी में दिन भर जगह जगह सौंफ की ढेरियां लगी हुई दिखाई देती हैं और पूरा मंडी क्षेत्र सौंफ की खुशबू से महकता रहता है। लालसोट मंडी की सौंफ की खुशबू और क्वालिटी ने देश के साथ विदेशों तक में भी अपनी पहचान बना ली है और विदेशों से भी लगातार डिमांड होने के चलते मंडी का कारोबार काफी फल फूल रहा है। कुल मिलाकर ये मंडी सौंफ व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र बन चुकी है और अब इसका विस्तार अन्य बड़े व्यापारिक केंद्रों के समकक्ष माना जा रहा है, जिससे इसका महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है। हालांकि मौसम में पिछले दिनों उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जिले भर में धूल भरी आंधी चली, वहीं कुछ गांवों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई और ओले गिरे। कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई। हालांकि थोड़ी राहत के बाद उमस और तेज गर्मी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। तेज गर्मी को देखते हुए लोगों को लू और तापघात से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। चिकित्सकों ने ठंडे पेय पदार्थों का सेवन अधिक करने की सलाह दी है। उन्होंने डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए सर ढककर ही बाहर निकलने और प्रचंड गर्मी में बच्चों, बुजुर्गों तथा गर्भवती महिलाओं से विशेष सावधानी बरतने को कहा है। भीषण गर्मी के कारण सड़कों और बाजारों में आवाजाही कम देखी जा रही है। दिन के समय पैदल राहगीर पेड़ों और टीन शीट के नीचे छाया तलाशते नजर आ रहे हैं। प्रचंड गर्मी के कारण विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से लोगों की सुविधा के लिए कई स्थानों पर प्याऊ भी लगाई गई है। पिछले दिनों जिले में विश्व पृथ्वी दिवस पर विभिन्न संस्थाओं, संगठन, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक समूहों द्वारा कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के अवसर पर जिले में अनेक स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रम रखे गए। वहीं पुलिस प्रशासन ने संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए निरंतर निगरानी भी रखी। इसके साथ ही दौसा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव काल प्रदेश का दौरा सारू पधारेला, राज्य ने नुवी रेला री सौगात देवेला। प्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव जुड़ियो वार्ड पुनर्गठन और वोटर लिस्टानो काम पूरो फियो। राज्य में जबरदस्त तावड़ो, लोगों सागे जिनावर और परिंदाई बेहाल। राज्य पक्षी गोडावण ने बचावण सारू आज गोडावण दिवस मनाई चियो। और कोटारी मुक्केबाज अरुंधति चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 सारू भारत री टीम में चुनी जी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रो प्रदेश रा दो दिन रा दौरा सारू काल पधारण रो कार्यक्रम है। वे काल समारोह जोधपुर में न्यारी न्यारी रेलगाड़ियां री शुरुआत करेला। पेश है माना खबर नवी श्री रपट।
3: रेल मंत्री के इस दौरे की एक बड़ी सौगात जोधपुर दिल्ली वंदे भारत की क्षमता में होने वाला रिकॉर्ड बढ़ोतरी के रूप में मिलने वाली है। 22 मई से ये ट्रेन 20 कोच के साथ दौड़ेगी, जिससे इसकी क्षमता लगभग 3 गुना बढ़कर 1440 सीटें हो जाएगी। भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए मेंटेनेंस डिपो के फेज 2 और लगभग 400 करोड़ की लागत से नए मेगा कोचिंग टर्मिनल की स्थापना की घोषणा की जाएगी। समारोह में साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को जैसलमेर तक विस्तार किया जाएगा। ट्रेन के जैसलमेर तक विस्तार से पर्यटन नगरी को गुजरात से सीधी सुपरफास्ट ट्रेन सुविधा मिलेगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार जोधपुर।
2: जोधपुर रेल मंत्री रो जालौर जावन रो कार्यक्रम है। वठे वे भुज नई दिल्ली रेलगाड़ी ने रवाना करेला। आगाड़ी प्रदेश का कई स्टेशनों वेती निकलेला। इन पाछे श्री वैष्णव पाली माय अमृत भारत स्टेशन योजना रा तेज चाल रहा कामारो जायजो लेवेला। रेल मंत्री रो थवर ने जयपुर माय राख्या जावन वाला रोजगार मेला माय केंद्र सरकार रा न्यारा न्यारा दफ्तरा माय नुवी नौकरी लाग्या कर्मचारियां ने नौकरी लागण रा कागजात देवन रो कार्यक्रम है। इन पाछे वह इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमी कंडक्टर उद्योग जुड़िया नुमाइंदा सा गई बातचीत करेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रो ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम रा तहत आज डूंगरपुर जिला री धम्बोला ग्राम पंचायत माय गांव वाला सागे बातचीत रो कार्यक्रम है। इनु पहली वे बांसवाड़ा माय अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। श्री शर्मा गैर कानूनी तरीकाओं धर्म बदली करावन वाला और सियासी हलचल माय शामिल होने वाला सरकारी कर्मचारियों रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई रा हुकम दीना। मुख्यमंत्री नहरा और तलावां री साफ सफाई सागे माही नदी रा पानी री हर एक बूंद काम लेवन सारू कहो। वे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान माथे जोर देता थका पानी रा हल्का माय खुद रे पान उबो वेवन न सब ऊंचो बतायो। मुख्यमंत्री कुशलगढ़ रा खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गिरीश भाभोर और बांसवाड़ा नगर परिषद रा कमिश्नर दुर्गेश सिंह रावल ने तुरंत एपीओ करण रा हुकम ही दीना। राज्य में स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं रा चुनाव सारू वार्डा रा पुनर्गठन और वोटर लिस्ट तैयार करण रो काम पूरो फेंक्यो है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल आज झुंझुनू जिला रा नारनोद गांव माए खबरनवीसा सागे बातचीत करता था का आ जानकारी दीनी। वह कहो कि चुनाव री तैयारी पूरी कर ली रिची है। श्री पटेल अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण रा बारा माए कहो कि सुप्रीम कोर्ट रा हुकम रा मुजब ट्रिपल टेस्ट रपटरा आधारों राजनीतिक आरक्षण दियो जावेला।
4: हमारी सरकार ने अनेक बार आयोग का गठन किया, आयोग अपनी कार्यवाही गति से कर रही है और जिन आयोग की रिपोर्ट आएगी सरकार चुनाव कराने को तैयार है। था संवैधानिक बाध्यता के तहत जब तक ओबीसी वर्ग के संबंध में आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक चुनाव कराया जाना शायद चुनाव आयोग।
2: राज्य मानवाधिकार आयोग नागौर जिला माए खुदाई रा काम जुड़िया मजूरा माए सिलिकोसिस री बीमारी अरवारा इलाज सारू जरूरी सुविधा री कमी मत है खुद संज्ञान लिनो है। आयोग रा अध्यक्ष जस्टिस जी आर मूलचंदानी नागौर रा कलेक्टर और चीफ माइनिंग इंजीनियर ने नोटिस जारी कर गैर कानूनी तरीकों खुदाई रा खिलाफ करड़ी कार्रवाई रा हुक्म दीना। आयोग अहलकारा ने सगला खनन हलकां री भौतिक जांच करण और मजूरा ने हिफाजत तों जुड़िया साजो सामान मुहैया कराउणो तय करण और सिलिकोसिस रा मरीजां रा इलाज सारू हर महीना खास शिविर लगावण बाबत ई कह्यो। भारतीय प्रशासनिक सेवा रा साल 2025 बैच रा सिखावण ले रिया अहलकार आज जयपुर रा लोक भवन माए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े उ मुलाकात कीनी। ई मौके राज्यपाल आ अहलकाराओं जनता रा प्रति संवेदनशील भैर काम करण सारू कह्यो। श्री बागड़े जनताओं जुड़िया मुद्दा मत है खास ध्यान देवण री राय दीनी। राज्यपाल केंद्र और राज्य सरकार का नियम चलाई जावन वाली विकास री योजनावां ने असरदार तरीकों लागू करण मत है ई जोर दीनो। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश माए पड़ रहा जबरदस्त तावड़ा सागे उन्नो बायरो बाजनो मिनखा जिनावरा और परिंदा रा हाल बेहाल है। बाड़मेर माए आखा दिन आंधी चालनो परेशानी रो सामो करनो पड़ियो। राज्य माए लारला 24 घंटा माए सब बत्तो तापमान श्री गंगानगर माए 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज करीचियो। वठे तेज गर्मी ने ध्यान रखता थका चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग री ओर जनताओं एहतियात राखण री अपील करी ची है। फलौदी माए 44.8 और अलवर और पिलानी माए 44 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान नापी चियो। मौसम विभाग रे मुजब आवता एक सप्ताह ताई प्रदेश रा घनखर हलका माए मौसम साफ रहवेला। हालांकि काल राज्य रा उत्तराद आतुणी हलका माए 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तारों आंधी चालन रा आसार है। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा कहो है कि जनता री भेड़ी कोशिशां और गोडावण प्रजनन केंद्रां रे जरिए राज्य पक्षी गोडावण री तादाद माए लगातार बढ़ोतरी फैल रही है। वह आज जैसलमेर माए राखी जिया राज्य रा पहला गोडावण दिवस कार्यक्रम माए बोल रहा है।
5: और जो मुझे जानकारी दी गई है इस अपने नेचुरल सोर्स में लगभग 130 गोडावन पक्षी हमारे पास हैं और 87 गोडावन पक्षियों को हमने चूजे पैदा करके कृत्रिम तरीके से तैयार किए हैं। आने वाले समय में जो हमारा राजकीय पक्षी है गोडावन उसके संरक्षण में वन विभाग मुस्तैदी से काम करेगा। गोडावन की संख्या में वृद्धि होगी और पर्यावरण के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका वन विभाग और हमारा गोडावन पक्षी और वन विभाग देने का।
2: ई मौके वन मंत्री गोडावण री मूरत रो अनावरण कीनो और पर्यावरण ने बचावण रे बारा माए स्कूला माए राखी जी होणा जीतण वाला रो मान कीनो। ई पाछे वे समरा गोडावण ब्रीडिंग सेंटर और डेजर्ट नेशनल पार्क रा सुदासरी हलका रो दौरो कीनो। श्री शर्मा वठे अहलकाराओं गोडावण ने बचावण सारू करी जा रही कोशिशां री जानकारी लीनी। स्कॉटलैंड रा ग्लासगो माए 23 जुलाई 2 अगस्त ताई होवण वाला कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 माए शिरकत करण सारू भारत रा खिलाड़ियां रा नाम रो ऐलान करतियो चियो है। आमाए कोटारी मुक्केबाज अरुंधति चौधरी शामिल है। वा 70 किलोग्राम भार वर्ग माए भारत री ओर रिंग माए उतरेला। अरुंधति राष्ट्रमंडल खेला माए शामिल होवण वाली राजस्थान री पहली महिला मुक्केबाज वेला। वह बॉक्सिंग विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप माई तमगा जीतर देश और प्रदेश रो नाम रोशन किन्नो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अरुंधति ने सोशल मीडिया संदेश रे जरिए बधाई देता थका कहो कि हमारी आ उपलब्धि नौजवाना सारू सीख देवन वाली है। अरुंधति फिलहाल भारतीय खेल प्राधिकरण साई रा पटियाला केंद्र में शिखावण ले रही है। राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ री ओर दृष्टि बाधित शतरंज होड़ काल शुरू

0: पहला जयपुर रा कल्याण संघ परिसर में फेवनवाड़ी तीन दिन री ई होड़ में दृष्टिबाधित 65 खिलाड़ी शामिल फैला। आ होड़ वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्ग में फैला। जयपुर रा बिचून औद्योगिक हलका में माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनायो जावेला। श्री यादे माटी कला बोर्ड रा अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक आज जयपुर में खबरनवी सागे बातचीत करता थका आ जानकारी दीनी। वे कहो कि इनू माटी कलाकार सारू नुवी तकनीक रे जरिए नुआ काम धंधा रा मौका बनेला। श्री टांक कहो कि राज्य में माटी कला रा सगला कलाकार और कामगार रा आर्टिजन कार्ड बनावण सारू बोर्ड री ओर शिविर लगाया जावेला। वे बतायो कि प्रदेश में बिजली चालन वाला 5000 चाक और मिट्टी गूंदवारी मशीना दी जावेला। इस आगे मौजूदा साल में माटी कला रा 100 प्रशिक्षक तैयार करावण तय करीचियो है। राज्य सरकार और गूगल इंडिया री ओर आज जयपुर में बिल्ड विद एआई कार्यशाला राखी जी। इनमें नुआ एआई टूल्स री सिखावण दीरी जी। ये मौके सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग रा शासन सचिव डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर सरकारी सेवावा और जनता रा भलारी योजनावां री पात्र लोगां ताई बेहतर पहुंच तय करण सारू एआई तकनीक रा इस्तेमाल माथे जोर दीनो। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में उम्मीद नेटवर्क देश ने सौंपियो। ये मौके वे कहो कि जनता सारू स्वास्थ्य जुड़ी सेवावां सस्ती और आसान बनावण माथे केंद्र सरकार रो खास ध्यान है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहो कि उम्मीद पहल हाल ताई 3 लाख लोगों ने फायदो मिल चुकी है। आ पीढ़ी दर पीढ़ी वेवन वाली बीमारियां आगीकरण सारू जैव प्रौद्योगिकी विभाग री राष्ट्रीय पहल है। इरा तेत आम बीमारियां रा इलाज राय रोकथाम और जनता रा स्वास्थ्य रे बारा माए जाग जगावण माथे खास ध्यान दियो जा रियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 31 मई ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई तई राय दे सको हो। नंबर ओजु सुन ली राव सा 1800117800। आखिर माए खास समाचार एक कर फेर सुन ली राव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव काल प्रदेश रा दौरा सारू पधारेला। राज्य ने नुवी रेला री सौगात देवेला। प्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव जुड़ियो वार्ड पुनर्गठन और वोटर लिस्टा रो काम पूरो भयो। राज्य में जबरदस्त तावड़ो लोगों सागे जिनावर और परिंदाई बेहाल। राज्य पक्षी गोडावण ने बचावण सारू आज गोडावण दिवस मनाई चियो। और कोटारी मुक्केबाज अरुंधति चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 सारू भारत री टीम माय चुनी ची। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजा हिंदी माय प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 100.3 MHz पर। श्रोताओं कुछ ही पलों में आप जुड़ेंगे राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रमों से और सुनेंगे कार्यक्रम जयमाला।

फौजी साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जयमाला। आज इस सफर में मैं हूं आपके साथ अनुराधा। शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

0: लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और साथियों की आवाज़ों में गीत अभी आप सुन रहे थे वीर ज़ारा फिल्म से, इस प्रोग्राम की पहली पेशकश। जावेद अख्तर ने इसे लिखा था, संजीव कोहली का संगीत था। और अब लीजिए सुनते हैं भारतीय सेना गीत कैलाश खेर की आवाज़ में।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

भारतीय सेना गीत आप सुन रहे थे कैलाश खेर की आवाज में। लीजिए कारवा फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में।

कारवा फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में गीत, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था, आर डी बर्मन का म्यूजिक था।

वहीं पर। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे। इस गीत में अजनबी फिल्म का नाम था, आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और आर डी बर्मन की तर्ज। जयमाला में आगे ये गीत। किशोर कुमार की आवाज, सागर फिल्म से ये गीत। जावेद तख्त ने इसे लिखा और आर डी बर्मन की तर्ज।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: विचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।

0: एक नई खुशी।
1: जे डी ए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, स्वर्ण विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, पटेल नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, SMS हॉस्पिटल अंडर पास, आदिनाथ सरोवर, यूनिक सिटी, शिवांग सिटी, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी कला, अटल योजना, वसंत कुंज, गोविंदपुरा, न्यू आतिश मार्केट, द रिंग एवेन्यू, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशंस पर विभिन्न साइजों के आवासीय व्यावसायिक मिश्रित वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा मई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।

लम्हे फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर सुरेश वाडकर की आवाज में, आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और शिव हरी का संगीत। लीजिए सुनिए चांदनी फिल्म से ये अगली पेशकश। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, शिव हरि का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम जयमाला।

और इस गीत के साथ ही आज का जयमाला कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इजाजत दीजिए।

0: एक नई खुशी।
1: जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, स्वर्ण विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, पटेल नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडर पास, आदिनाथ सरोवर, यूनिक सिटी, शिवांग सिटी, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दैमी कला, अटल योजना, वसंत कुंज, गोविंदपुरा, न्यू आतिश मार्केट, द रिंग एवेन्यू, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय व्यावसायिक मिश्रित वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा मई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141-256-9696 पर।
3: आपसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रिकर।

0: दोस्तों इनसे मिलिए कार्यक्रम में हमारे साथ हैं उभरते गिटार वादक अनिकेत गुंडेवार, जो गिटार पर शास्त्रीय संगीत बजाते हैं। अनिकेत जी, क्या आपके फ्यूचर प्लान्स है, आपकी भविष्य की योजनाएं क्या है?
1: म्यूजिक ही करते रहना है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, और कुछ ऐसा प्लान नहीं है, ऐसे गोल नहीं है। म्यूजिक से जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में रह के जितना कर सकता हूँ उतना करना
0: जी। तो जो भी आपने सोचा है उसके लिए विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।
1: थैंक यू।
0: और यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिकेत जी, आपने बताया कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, तो उसके बाद सीधे तो म्यूजिक की तरफ बढ़े नहीं होंगे?
1: हाँ, तो
0: और जैसे आमतौर पे हमारे अभिभावक, हमारे माता पिता घर में ये उम्मीद करते हैं कि आपने डिग्री कर ली भाई, अब कोई नौकरी करो या कोई अपना व्यवसाय करो,
1: राइट,
0: है ना, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: तो आपके सामने, आपके लिए भी ये प्रश्न खड़ा हुआ होगा, आपसे भी उम्मीद की जा रही होगी।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: उस उम्र में
1: एक्चुअली हुआ ऐसा था, इंजीनियरिंग फोर्थ ईयर में कैंपस प्लेसमेंट होती है।
0: जी जी।
1: तो तब मुझे एक्सेंचर में जॉब मिल गया था, लेकिन उसका जो ज्वाइनिंग था वो पुश हो गया था, 6 महीने से या आई थिंक 1 साल से पुश हो गया था तब।
0: अच्छा।
1: तो जुलाई में पास आउट हुए और फेब में ज्वाइनिंग आने वाला था, ऐसा कुछ था तभी। तो 6 महीने फ्री था और कॉलेज में एक्चुअली डिसाइड कर लिया था कि म्यूजिक में कुछ करना है।
0: अच्छा।
1: लेकिन तब, क्योंकि मैंने तभी सीखना भी शुरू किया था, मतलब काफी 2-3 साल ही हुए थे क्लासिकल म्यूजिक, ऐसे ही आप बजाना नहीं शुरू कर सकते, बहुत कुछ सीखना बाकी था तब। तो फिर मैंने सोचा कि मैं साउंड इंजीनियरिंग करके एटलीस्ट म्यूजिक में जॉब करता हूँ
0: जी,
1: ताकि मैं म्यूजिक से कनेक्टेड रहूंगा, मुझे पता चलेगा म्यूजिक इंडस्ट्री कैसे काम करती है। तो फिर तभी मैंने पेरेंट्स को बोला कि ऐसा साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स मुंबई में था एक बहुत अच्छा,
0: जी,
1: वहां पर कि मैं कोर्स कर लेता हूँ और जॉब मिल गया है तो अगर, तो इधर अगर एक बार प्लेसमेंट में मिल ही गया है तो फिर से मिल ही जाएगा अगर कुछ नहीं हुआ तो
0: अच्छा,
1: मैं ये ट्राई करके देखता हूँ।
0: हाँ हाँ
1: तो मैंने साउंड इंजीनियरिंग किया और फिर वहां से मुझे एक्चुअली एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जॉब मिल गया।
0: अच्छा।
1: उसके बाद तो फिर मैं वही करता रहा 8 साल तक।
0: ये वही था जो आप चाहते थे?
1: हाँ, वो लकीली हो गया, वो
0: म्यूजिक से जुड़े रहना चाहते थे और
1: से
0: आपको
1: जुड़ा रहना चाहता था,
0: रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही जॉब मिल गया।
1: हाँ,
0: क्या,
1: तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जॉब मिल गया और फिर मेरा काम भी म्यूजिक के रिलेटेड ही था, मैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड करता था,
0: हाँ,
1: अलग अलग म्यूजिशियन से मिलता था।
0: हाँ, हाँ, हाँ,
1: फिर कुछ सालों के बाद मैं लाइव साउंड भी करने लग गया। तो जो म्यूजिक की जो टेक्निकलिटीज होती है,
0: जी जी
1: जो परफॉर्मेंस की जो टेक्निकलिटीज होती है, उसके बारे में भी मुझे काफी कुछ सीखने को वहां से मिल गया। और हाँ, और मजा तो आता ही था क्योंकि आप म्यूजिशियंस के साथ ही हो, म्यूजिक की बातें कर रहे हो, तो इस तरह से।
0: फिर भी आपके पेरेंट्स की तरफ से ये सवाल तो कभी आया होगा कि एक इंजीनियर के रूप में आप बहुत अच्छी तरह से सेटल हो सकते थे अपने लाइफ में?
1: हाँ, मतलब उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी कि तुम्हारा डिसीजन खुद लो,
0: अच्छा,
1: ताकि फिर बाद में रिग्रेट हो तो तुम्हारी वजह से हो, तुमको,
0: इट्स योर लाइफ,
1: इट्स योर लाइफ।
0: अच्छा अच्छा
1: कि तो तुम सोच लो, क्योंकि लाइफ डिफिकल्ट तो होगी। और प्रोफेशनल म्यूजिक बैकग्राउंड नहीं होने की वजह से उनको भी बहुत आइडिया नहीं था, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला था कि हमें कुछ पता नहीं है तो हम तो आप तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे ये फील्ड में बिल्कुल भी। तो यू आर ऑन योर ओन, तो आपको अभी,
0: और आप अपने निर्णय पे पक्के थे?
1: हाँ, मतलब
0: पूरी तरह से। क्या,
1: वो थोड़ा होता है, वो एज में एक स्टुपिडिटी होती है कि अच्छा मैं कर लूंगा, तो फिर आप घुस जाते हो उसमें और फिर
0: नहीं, लेकिन ये एक एक मजबूत जो है निर्णय ले पाना उस उम्र में भी बहुत बड़ी बात है।
1: हाँ, मतलब वो एक्चुअली लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, वो मेरे लिए निर्णय नहीं था वो, एक्चुअली मैंने सिर्फ सोच लिया कि अच्छा ये करना है और फिर इतना कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा नहीं था तब। तो वो somehow
0: उस उम्र में इतनी चीजें हमें आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं कि किसी एक निर्णय पे टिके रहना भी बड़ा मुश्किल होता है।
1: हाँ, वो है, लेकिन वो हो गया, मतलब somehow फिर मैं वो सर्कल में ही घुस गया। फिर उसके बाद म्यूजिशियंस के साथ ही सराउंडेड हो तो आपको स्ट्रगल्स दिख रही है और आपको दिख रहा है कि अच्छा पूरी इंडस्ट्री ये कर रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही,
0: अच्छा
1: पूरी इंडस्ट्री वैसी है ना। तो
0: जी जी जी,
1: जब आप काम करने लगते हो, और एक्चुअली ऐसा होता है ना कि लोगों को लगता है कि अगर आप फेमस हो तो आपको लाइवलीहुड हो रहा है, लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसा पूरी इंडस्ट्री होती है जो सर्वाइव कर रही है।
0: हाँ।
1: और बहुत काम है उसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं है,
0: जी,
1: आपको सिर्फ यू हैव टू बी विलिंग टू डू द वर्क।
0: जी,
1: तो ऐसा होता नहीं है कि अगर आप कि आपको कुछ काम ही नहीं मिल रहा है, या आप,
0: काम बहुत है, टास्क बहुत है, करने वाले चाहिए,
1: करने वाले चाहिए, आपको विलिंगनेस भी होना चाहिए
0: जी,
1: और आप सीखते रहना पड़ता है। और ऐसा नहीं होता है कि आपने एक डिग्री ले ली हो तो आपको, क्योंकि वो क्रिएटिव वर्क है तो आपको अपने इम्प्रूव करते रहना पड़ता है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो एक वो चीज है, और एक लक का भी है, मतलब मुझको ऐसा भी होता है कि आपको एक अच्छी संगति मिल जाती है और फिर आप उसमें सेट हो जाते हो, तो फिर वो वहां पे उसी तरह से हो गया था एक्चुअली साउंड इंजीनियरिंग में भी, कि उसके बाद एक स्टूडियो में गया, फिर
0: जी
1: वो स्टूडियो के ओनर भी मतलब काफी मतलब मेरी एज के थे वो, जस्ट दैट उन्होंने स्कूल के बाद ही सीधा स्टूडियो ही ओपन कर दिया 12th के बाद, इंस्टेड ऑफ डूइंग द डिग्री. सो ही वाज अ कंपोजर, उनके साथ काफी सीखा काफी
0: जी, जी.
1: तो उस तरह मजा आ रहा था, तो फिर कर रहे थे.
0: क्या बात है. और ये उम्र होती है जब बहुत से हमारे दोस्त होते हैं और वो दोस्त भी अपनी अपनी तरफ खींचते हैं हमें, मगर आपको संगत मिली उन साउंड रिकॉर्डिंग.
1: हाँ. स्टूडियो के ओनर मेरे दोस्त भी एक तो ऐसा है ना कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्टेड हूँ, तो मेरे दोस्त भी ऐसा बहुत लिमिटेड है.
0: अच्छा.
1: और मोस्टली मेरे जो दोस्त है वो भी बहुत अलग अलग फील्ड्स में है, ऐसा नहीं है कि कोई सब लोग इंजीनियरिंग ही कर रहे हैं, तो फिर वो लोग भी काफी सपोर्टिव ही थे.
0: क्या
1: तो,
0: कोई खास दोस्त जिसको बारे में आप बताना चाहेंगे कि उन्होंने आपको इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए मदद की हो?
1: एक्चुअली मेरा एक दोस्त था अश्विन, है मतलब अभी भी वो अभी भी है. तो हम दोनों ने एक्चुअली साथ में कोर्स करना शुरू किया, बचपन का ही दोस्त है वो भी, मेरे साथ ही बड़ा हुआ है कॉलेज में. वो भी गिटार प्लेयर था, वो क्लासिकल में नहीं आया, वो रॉक म्यूजिशियन ही था. और फिर उसके बाद तो हम दोनों ने साथ में साउंड इंजीनियरिंग किया, साथ में ही स्टूडियो में काम किया. अभी वो प्रीतम के साथ हेड, वो पूरा उसका साउंड डिपार्टमेंट संभाल रहा है.
0: क्या बात. तो संगीत आपकी सबसे पहली पसंद है, मगर हाँ. इसके अलावा और क्या क्या पसंद है आपको, आपके शौक क्या क्या है?
1: मुझे घूमना पसंद है, ट्रैक करना पसंद है.
0: अरे वाह.
1: बाकी आई थिंक बचपन में मैं जो कॉलोनी में रहता था वहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट्स थे, तो स्विमिंग करता था, बैडमिंटन खेलता था, तो वो सब एक स्पोर्ट्स वाला जो एंगल है.
0: हाँ.
1: तो अभी भी मैं स्विमिंग करने के लिए जाता हूँ कभी कभी, वो एक अच्छा लगता है मुझे.
0: जी जी.
1: अभी रिसेंट एक शौक है जो डिस्क्राइब कैसे करूँ पता नहीं, बट कॉफी. कॉफी का एक शौक काफी है आजकल, तो मैं मतलब जो स्पेशलिटी कॉफी है, बीन्स लाओ और फिर उसको ग्राइंड करके आप जो कॉफी बनाते हो.
0: अच्छा अच्छा अच्छा. कॉफी बनाने का शौक.
1: कॉफी बनाने का मतलब आप एक तो इंस्टेंट कॉफी होते हैं जो आप डालते हो, पाउडर होता है, उस पे पानी डालते हो और वो घुल जाता है.
0: मगर ये कॉफी के बीज लाकर उन्हें भून कर
1: लाकर उस हाँ
0: और उसको पीस करके फिर वो कॉफी बनाई जाती है.
1: तो उसकी एक बहुत मूवमेंट, बड़ी मूवमेंट शुरू हो गई है अब.
0: अच्छा.
1: तो वो देख देख के उसका शौक आ गया, तो फिर वो एक हाँ. बहुत बड़ा शौक.
0: कई बार हमारे शौक हमारे काम को प्रेरित करते हैं, उनमें कुछ नयापन लाते हैं.
1: हाँ.
0: ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? जैसे हमारे एक मित्र हैं, वो बेसिकली गिटारिस्ट है मगर वो पेंटिंग भी करते हैं.
1: राइट.
0: तो गिटार बजाते बजाते उनके दिमाग में कुछ ख्याल आते हैं, तो उसके अनुसार उनका पेंटिंग नया पेंटिंग बन जाता है.
1: राइट राइट राइट राइट.
0: कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है?
1: नहीं, तो आर्ट में तो मैं यूजुअली गिटार ही है, तो ऐसा तो नहीं हुआ है. बट एक्चुअली मैंने एक चीज नोटिस की है, जब आप तो ऐसा लगता है लोगों को कि आर्टिस्ट ऐसे खाली बैठे रहते हैं बहुत बार. या मतलब और अगर कोई नॉर्मल अगर आपका कोई 9 to 5 जॉब हो, आपको लगेगा कि अच्छा ये काम क्यों नहीं कर रहा है. इतना देर खाली, पूरा दिन खाली है तो कुछ और काम कर ले. बट होता है क्या कि वो जो खाली फेजेस होते हैं, जब आप अकेले में होते हो या जब आप चल रहे होते हो, मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है, मैं चल रहा होता हूँ और नए नए म्यूजिकल आइडियाज आते हैं.
0: अच्छा.
1: या मैं कहीं ट्रैक पे जा रहा होता हूँ जब इंस्ट्रूमेंट से दूर होता हूँ.
0: जी बिल्कुल.
1: तो
0: और
1: हाँ,
0: आप कहीं घूम रहे हैं तो नेचर से भी आपको
1: प्रेरणा मिलती काफी. हाँ हाँ
0: जी जी जी.
1: तो जब अकेले होते हो और आप आपके पास कुछ होता नहीं है, फोन नहीं होता है, तो आप कुछ सोच में होते हो, तो उसमें से जो आइडियाज आते हैं वो काफी हेल्पफुल होते हैं फिर वापिस आके जब आप ट्राई करते हो तो.
0: क्या बात. बहुत खूब. अनिकेत जी, क्लासिकल म्यूजिक में कई बार सुगम संगीत की झलक भी सुनने को मिलती है.
1: हाँ.
0: बंदिशें बजाई जाती हैं.
1: राइट.
0: तो ऐसा कोई टुकड़ा, कोई छोटा सा पीस जो गजल की तरह हो या किसी सुगम संगीत की तरह हो, क्या सुनाना चाहेंगे आप हमें?
1: आज जाने की जिद ना करूं, बजाओ थोड़ा.
0: वाह वाह वाह, स्वागत है.

0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर। हम भी आपसे यही कहेंगे कि आज जाने की जिद ना करो और यूं ही धुने सुनाते रहो, मगर किसी भी आयोजन के समय की अपनी सीमा होती है और उसका पालन हमें करना पड़ता है। तो विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, हमारे तमाम सुनने वालों की ओर से आप जो कुछ भी आगे करने वाले हैं उसके लिए ढेर सी शुभकामनाएं, और यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।
1: थैंक यू।

अभी आप सुन रहे थे गिटारिस्ट अनिकेत गुंडेवार से जयंत पात्रकर की बातचीत की तीसरी और अंतिम कड़ी। अगले सप्ताह हाजिर होंगे किसी और मेहमान के साथ। विविध भारती की ओर से कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्रीकांत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।

हवा महल में आज सुनिए विष्णुदत्त गौड़ का लिखा प्रहसन जान बची। निर्देशक हैं जयदेव शर्मा कमल।

0: श्रीमान जी, आपने मुझे श्रीमान जी कहा? वाह वाह वाह वाह, आइए आइए, तशरीफ रखिए। आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई।
1: मुझे भी
0: बड़ी प्रसन्नता हुई। आज पहली बार मुझे किसी सज्जन महापुरुष ने श्रीमान जी कहा है। बोलिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या सत्कार कर सकता हूँ? अरे, सुनने सुनाने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। आप आए हमारे घर, खुदा की कुदरत, कभी हम आपको देखते हैं तो कभी अपने
1: पागल खाने को।
0: वाह वाह, मुकर्रर इरशाद, वाह क्या बात है, क्या नुकता खींच के मारा है, सारा भेजा बाहर आ गया। लगता है आप शायर हैं?
1: जी नहीं।
0: तो फिर कवि हैं?
1: जी नहीं।
0: तो फिर आप?
1: जी, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी शहर का अदना सा समाज सेवक हूँ।
0: समाज सेवक यानी?
1: कहिएगा नहीं, मेरे दांत खाने के और दिखाने के और, अर्थात दुनिया के लिए समाज सेवक, अपने लिए पापी पेट का सेवक।

0: बिल्कुल ठीक फरमाते हैं जनाब। यहाँ जो भी आता है वो अपने आप को सेवक ही बताता है जनता का। आप तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है।
1: डॉक्टर साहब कहाँ हैं?
0: अजी डॉक्टर को मारिए गोली। पहले आप ये फरमाइए कि आप क्या लेना पसंद करेंगे
1: जी?
0: मेरा मतलब है आप क्या पिएंगे, चाय, कॉफी, लस्सी, शिकंजी या दूध निपल से?
1: मुझे कुछ नहीं पीना है।
0: अच्छा तो आप क्या नोश फरमाएंगे? हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरा मतलब है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, चपाती या चपाती, बिस्कुट या दालमोट?
1: मुझे ना तो कुछ खाना है ना कुछ पीना, मैं तो डॉक्टर साहब से मिलने आया हूँ।
0: ठीक है ठीक है, मैं ये कब कह रहा हूँ कि आप अपने ससुर जी से मिलने आए हैं
1: जी?
0: या अपने रिश्तेदार जी से
1: जी?
0: यहाँ तो जो भी आता है किसी ना किसी जी से ही मिलने आता है। मैं जब यहाँ पहली बार आया था तो मैंने भी यही कहा था कि मैं डॉक्टर जी से मिलने आया हूँ।
1: लगता है आप
0: जी मैं यहाँ का परमानेंट हूँ। लगता है मैंने आपको कहीं देखा है
1: जी।
0: आप आगरा में तो नहीं थे
1: जी? नहीं।
0: बरेली, रांची
1: जी? नहीं।
0: तो फिर मैंने आपको ख्वाब में देखा
1: जी,
0: होगा।
1: मैं वहाँ कभी गया ही नहीं।
0: अच्छा।
1: क्या वहाँ भी कोटा परमिट मिलता है?
0: अच्छा जी,
1: रिश्वत कितनी देनी पड़ती है?
0: मैं तो यहाँ की बात कर रहा
1: यहां
0: था
1: की। मैं तो पहली बार आया हूँ, बड़ी तारीफ सुनी है आपके पागल खाने की है, देखने चला आया हूँ।
0: अच्छा ठीक, चले आए हैं, ऐसे ही आना चाहिए था। मैं भी यहाँ आया था तो मैंने भी यही कहा था। अब आप इसे अपना ही समझिए। क्या
1: क्या
0: घर? मैं आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ का सबसे बड़ा वफादार हूँ, बहुत ही गैर जिम्मेदार
1: जी।
0: मेरा मतलब है बहुत ही जिम्मेदार हूँ। मैं अभी आपको सारा घुमाता हूँ पागलखाना। देखिए यहाँ अकेले घूमना मना है।
1: क्यों साहब, अकेले घूमना क्यों मना है?
0: अजी साहब, जानवरों और पागलों का क्या भरोसा, पता नहीं कब अटैक कर बैठे।
1: अच्छा तो यहाँ ये भी होता है?
0: यहाँ क्या कुछ नहीं होता, यहाँ क्या कुछ नहीं होता। मगर आप चिंता ना करें, मैं आपको यहाँ की खास खास बातों से अवगत यानी कि इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। पहले आप झुकिए।
1: झुकिए? मगर क्यों झुके साहब? समाज सेवक टूट सकता है पर झुक नहीं सकता। तालियां तालियां।
0: अगर आप झुकना नहीं चाहते हैं तो मेरी तरफ पीठ करके खड़े हो जाइए। अबाउट टाइम।
1: ये क्या मजाक है?
0: मजाक? आप इसे मजाक कह रहे हैं? मैं आपसे मजाक करूंगा? मेरा आपका कोई मजाक का रिश्ता है? अरे मैं तो आपको अवगत यानी कि इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। ठीक है अब आप बैठ जाइए।
1: बैठ जाइए?
0: यस।
1: बैठने का क्या मिलेगा, तुम कहते हो तो लो मैं बैठा जाता हूँ। आप निकालो थैली।
0: गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आप पूछिए कि मैंने ऐसा क्यों किया?
1: क्यों किया?
0: पूरा वाक्य बोलिए। आपने ऐसा क्यों किया?
1: आपने ऐसा क्यों किया?
0: ठीक। मैंने ऐसा एक राज की बात बताने के लिए किया है।
1: राज की बात?
0: एक बार मैंने और मेरे एक साथी ने इस चार दीवारी के बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया। छुट्टी का दिन था, एक पागल यहां से फाटक की तरफ भागा।
1: भागा?
0: मैंने देखा कि पागल खाने का फाटक खुला है और चौकीदार
2: जगदेव
0: सो रहा है। पागल ने चौकीदार से नमस्ते की।
1: नमस्ते?
0: नमस्ते। फिर क्या देखता हूं कि वो पागल पागलखाने के बाहर 100 की स्पीड से भागते चला जा रहा है।
1: फिर क्या हुआ?
0: इतने में डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब एक पागल पागलखाने से 100 की स्पीड से भागा है। डॉक्टर साहब 100 की स्पीड से भागा।
3: तुमने उसे भागते हुए देखा?
0: जी हाँ साहब, वो मेरी आंखों के सामने से भागा।
3: तो फिर तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं?
0: अरे साहब मैं उसे कैसे पकड़ता, वो अपने सिर पर पैर रखे हुए था।
1: डॉक्टर साहब गुड वेरी गुड, आपका तो प्रमोशन किया जाना चाहिए, वाकई में आप काफी होशियार हैं।
0: थैंक यू।
1: हाँ तो आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपने और आपके साथी ने

0: क्या प्रोग्राम बनाया था?
1: अरे हाँ, वो तो मैं बताना ही भूल गया, और खूब याद दिलाया आपने। मेरे दोस्त ने कहा चलो आज हजरतगंज घूमने चलते हैं, वहां से एक कार खरीद कर लाएंगे।
0: अच्छा,
1: उसने 10 रुपए का नोट मेरे हाथ पर रख दिया और हम दोनों हजरतगंज कार लेने चल दिए।
0: अम्मा क्या कह रहे हैं आप?
1: अजी मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ जनाब। अजी साहब पूरी बात तो सुनिए।
0: सुनाइए।
1: हाँ, तो मैं कह क्या रहा था?
0: यही कि आप 10 रुपए लेकर हजरतगंज कार लेने चल दिए।
1: अरे वाह, आपकी मेमोरी तो काफी तेज है, यहाँ आकर सबकी मेमोरी तेज हो जाती है। हाँ तो साहब, हम लोग घूमते घूमते गोमती पहुंच गए।
0: अच्छा,
1: मेरे दोस्त ने कहा कि यार आज मैं नदी पार करूंगा। झड़े का मौसम, सर्दी अपनी पूरी जवानी पर थी। मैंने कहा तुम्हें तैरना आता है? तो उसने कहा हाँ, और साहब वो कूद पड़ा नदी में।
0: अरे बाप रे।
1: अब मैं क्या देखता हूँ कि वो पानी में डुबकियां लगा रहा है। तब मैं भी साहब कूद पड़ा और उसे पानी के बाहर निकाल लाया। फिर मैंने उसका पैर दबाया,
0: वाह,
1: फिर उसका पेट दबाया,
0: वाह,
1: फिर उल्टा किया, फिर पीठ दबाई,
0: वाह,
1: फिर उल्टा किया, फिर आखिर में उसका गला दबा दिया।
0: क्या बात।
1: और जब सारा पानी उसके पेट से निचुड़ गया तो मैं उसे लाद कर वापस यहां आ गया। सुबह डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया और कहने लगे,
2: राम भरोसे
1: जी,
2: तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे साथी ने आत्महत्या कर ली है?
3: जी डॉक्टर साहब, वो आदमी इतना तो समझदार नहीं था। ये क्या हुआ?
2: समझदार नहीं था, फिर वो अपने गले में रस्सी का फंदा डालकर कैसे लटक गया?
3: आप गलत समझ रहे हैं डॉक्टर साहब, वो अपने गले में फंदा डाल ही नहीं सकता था, उसे तो मैंने लटकाया था।
2: तुमने लटकाया था? लेकिन क्यों?
3: साहब भीग गया था, मैंने उसे सूखने के लिए टांग दिया था।
0: गुड, वेरी गुड।
1: उधर वाली बैरक देख रहे हैं आप, उधर मत जाइएगा, उधर के मरीज टुम्मा फेंक कर मारते हैं।
0: अच्छा,
1: और उधर देखिए दूसरी बैरक, उधर भी मत जाइएगा।
0: क्यों?
1: उधर मरीज काट खाते हैं।
0: अरे बाप रे।
1: और वो देखिए तीसरी बैरक, उधर तो भूल कर भी मत जाइएगा।
0: क्यों क्यों?
1: उधर जो भी गया आज तक लौट कर नहीं आया।
0: अच्छा,
1: और वो रही चौथी बैरक, उधर की पागल कपड़े मार दो। उधर के पागलों की पीठ पर नंबर पड़े 1 से लेकर 420 तक। अगर कोई हादसा हो जाए तो आप मुझे याद कर लीजिएगा, मेरा नंबर ये देखिए 37 है।
2: नंबर 37। मैंने तुमको कितनी बार मना किया है कि तुम मेरे कमरे में मत आया करो,
1: अजी
2: तुम फिर आ गए।
1: डॉक्टर साहब, मैं आपको सुबह से ढूंढ रहा था, आप कहाँ गए थे?
2: क्यों क्यों ढूंढ रहे थे आप
1: मुझे? मुझे आपकी नाक बहुत अच्छी लगती है डॉक्टर साहब, मैं इसे काट कर अपने पास रखना चाहता हूँ।
2: क्यों भाई, मेरी ही नाक क्यों अच्छी लगती है? इन समाज सेवक जी की क्यों नहीं?
1: नहीं नहीं नहीं, इनकी नाक मोम की है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा भाई, तब तो एक प्रॉब्लम है। हाँ। आप मेरी नाक काटेंगे कैसे?
1: चक्कू से।
2: अच्छा, तो आप सब इंतजाम करके आए हैं? आप चुप रहिए
1: जी।
2: हाँ, तो राम भरोसे
1: जी सर,
2: तुम मेरी नाक काटोगे
1: जी?
2: पर भाई इस वक्त तो तुम देख रहे हो मैं बहुत बिजी हूँ, फिर ये साहब भी बैठे हैं, इनसे बात भी तो करनी है ना।
1: आप चिंता ना करें डॉक्टर साहब, मैं 1 घंटे बाद फिर आ जाऊंगा।
2: गुड, वेरी गुड। अच्छा जाओ, अब अपनी बैरक में जाओ।
1: अच्छा
2: जाओ।
1: थैंक यू सर। साहब को सलाम करेगा परेड? सलाम, 1 2 1।
0: जान बची जान,
1: 1 2 1।
0: जान बची जान,
1: 1 2 1।
0: जान बची जान।

अभी आप सुन रहे थे प्रहसन जान बची, लेखक विष्णुदत्त गौड़, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। अब आज का हवा महल कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
3: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार दिन में 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली, प्रायोजक हैं देवदर्शन ओवरसीज।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका कार्यक्रम चित्रलोक में। मेट्रो इन दिनों इस फिल्म से ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा और प्रीतम

तेरी बातों में उलझा ऐसा उलझा जिया, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। रोमी और तनिष बागची की आवाज़ों में नीरज राजावत ने इसे लिखा था और म्यूज़िक तनिष बागची का था।

ओके जानू, ये था फिल्म का नाम। जॉनिता गांधी की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा था, एआर रहमान का संगीत। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती से। चित्रलोक के बाकी के नगमे कुछ पलों में।

0: एक नई खुशी।
1: जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, स्वर्ण विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, पटेल नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, आदिनाथ सरोवर, यूनिक सिटी, शिवांग सिटी, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी कला, अटल योजना, वसंत कुंज, गोविंदपुरा, न्यू आतिश मार्केट, द रिंग एवेन्यू, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशंस पर विभिन्न साइजों के आवासीय व्यावसायिक मिश्रित वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा मई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141256969 पर।

एक बार फिर से आप सबका स्वागत कार्यक्रम चित्रलोक में। कपूर एंड सन्स फिल्म का नाम है, अरमान मलिक अमाल मलिक की आवाजें।

पंगा से ये गीत शाहिद माल्या और असीज कौर की आवाजों में। शंकर एहसान लॉय का संगीत है, जावेद अख्तर ने इसे लिखा।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से

0: समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: अमेरिका एंड इंडिया,
4: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसे अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
3: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में

0: आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: सुश्री शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
2: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह

0: रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
1: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन होजमार्क कजल्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: विविध भारती लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए।

0: फिर वही रात है, रात के इस पहर। ये गीत अभी आप सुन रहे थे घर फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा था और आरडी बर्मन का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

फिल्म वक्त से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। रवि का संगीत था और साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था।

जैसे कि आप जानते हैं, आदित्य चोपड़ा जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के सुपुत्र हैं। उनकी प्रतिभा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उनकी शख्सियत तीन आयामों वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि वे एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, दूसरी बात ये कि वे एक बहुत अच्छे लेखक हैं, और तीसरी बात वे एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम रोशनी डालेंगे आदित्य चोपड़ा की शख्सियत के इन तीनों पहलुओं पर।

आदित्य चोपड़ा होश संभालने के बाद अपने पिता को असिस्ट करते रहे, यानी उनके सहायक रहे। जाहिर है यश चोपड़ा के बेटे होने के नाते फिल्म संसार में ही उन्होंने अपनी आंखें खोली।

लेकिन युवा पीढ़ी का होने के कारण उनका अपना एक विजन था और वे अपनी तरह की फिल्में बनाना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने कई सालों पहले फिल्म संसार में कदम रखा तो एक बड़ी ही अनूठी फिल्म बनाई जिसका नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

0: आदित्य चोपड़ा की कुशल लेखनी इस फिल्म में झलक झलक पड़ी थी।
1: एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेर की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं।
0: जिस तरह से इस फिल्म में नाटकीय परिस्थितियां दिखाई गई थीं और ये दर्शाया गया था कि प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता ना ही उम्र का मोहताज होता है।

प्यार सर्वकालिक होता है, सर्वयुगीन होता है। फिल्म वीर ज़ारा की एक खासियत और थी कि इस फिल्म में जाने माने संगीतकार मदन मोहन की धुनों को पुनर्जीवित किया गया था, यानी वो धुनें जो मदन मोहन बना गए थे और उनके खजाने में पड़ी थीं, उनके बेटे संजीव कोहली ने दोबारा से तैयार की और उनके जरिए आए

0: आदित्य चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स को कॉर्पोरेटाइज किया है, यानी उसके ढांचे में परिवर्तन किया है और अब सिर्फ आदित्य चोपड़ा या उनके पिता यश चोपड़ा ही इस बैनर के तले फिल्में नहीं बनाते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं।
0: बल्कि इस बैनर में नई प्रतिभाओं को भी मौका दिया जाता है। Are you ready? Sit down. Let me tell you a little story about two cool cats. Yeah, Bunty or Bubbly. Coming in at an angle that they better than the rest. When you're looking in their hearts, they're gonna pass the test. ऐसी ही एक प्रतिभा थे निर्देशक संजय गढ़वी।

0: की शादी।
1: उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने पहचाना कुणाल कोहली की प्रतिभा को और आई फिल्म हम तुम। आदित्य चोपड़ा ने जाने माने फिल्मकार मुजफ्फर अली के बेटे शाद अली सहगल को भी मौका दिया।
2: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

और उनकी दूसरी फिल्म बंटी और बबली पेशकश थी यश चोपड़ा फिल्म्स की। निर्माता थे आदित्य चोपड़ा। ये फिल्म भी बड़ी कामयाब रही।

हमने संजय गढ़वी की पहली फिल्म मेरे यार की शादी है का जिक्र किया, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म का जिक्र किए बिना आदित्य चोपड़ा पर बनाया गया ये कार्यक्रम अधूरा होगा। ये फिल्म है धूम।

आज के जमाने में मोटर गाड़ियों वाली और टेक्नो फिल्म रफ्तार भरी फिल्में लाने का श्रेय जाता है आदित्य चोपड़ा को फिल्म धूम के जरिए। ये एक अलग ही जॉनर, अलग ही माहौल की फिल्म थी, अलग ही पीढ़ी की फिल्म थी, चाहे इसका संगीत हो, चाहे इसकी कहानी हो।

साल 2010 में एक साथ तीन बड़ी फिल्में यशराज फिल्म्स ने रिलीज की, जिनके प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। एक थी परमीत सेठी की फिल्म बदमाश कंपनी, प्रदीप सरकार की फिल्म लफंगे परिंदे और मनीष शर्मा की फिल्म बैंड बाजा बारात।

आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म्स की बागडोर संभाल रहे हैं और ये प्रोडक्शन एक के बाद एक कई फिल्मों का निर्माण कर रहा है। सलमान खान ने यशराज फिल्म्स के साथ अपनी पहली फिल्म की, कबीर खान निर्देशित एक था।

आज यशराज फिल्म्स की कमान आदित्य चोपड़ा संभाल रहे हैं। साल 2013 के आखिरी दिनों में आदित्य चोपड़ा ने रिलीज की विजय कृष्ण आचार्य के लेखन और निर्देशन वाली आमिर खान की फिल्म धूम 3। इस फिल्म ने 500 करोड़ की कमाई करके एक रिकॉर्ड कायम किया है।

आदित्य चोपड़ा इन दिनों अपने बैनर यशराज फिल्म्स के लिए बतौर प्रोड्यूसर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। साल 2014 में यशराज फिल्म्स के बैनर तले उन्होंने पेश की फिल्म मर्दानी। इसमें मुख्य भूमिका में थी रानी मुखर्जी। साल 2015 में शरद कटारिया के निर्देशन में एक फिल्म आई दम लगा के हईशा। इसे भी यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। यशराज फिल्म्स आजकल नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रहा है। साल 2014 में आई शाद अली की फिल्म किल दिल। इस फिल्म के गाने गुलजार ने लिखे थे। सुनते हैं ये गाना।

आदित्य चोपड़ा की एक चर्चित फिल्म रही है फैन, जिसमें शाहरुख खान दोहरी भूमिका में थे। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। आदित्य चोपड़ा ने काफी लंबे समय तक किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। फिल्म फैन और सुल्तान के वो निर्माता ही रहे। यशराज फिल्म्स की तमाम फिल्मों के निर्माण की जिम्मेदारी वो संभालते रहे और इस बैनर के तले कई निर्देशकों ने अपनी फिल्में निर्देशित की। बहुत बरस बाद आदित्य चोपड़ा एक बार फिर से लौटे निर्देशन की दुनिया में। उन्होंने बनाई फिल्म बेफिक्रे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता, निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा

0: भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छायागीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। गली गली अब यही अफसाना हो गया, छुप छुप के मिलना भी पुराना हो गया, नजरें क्या मिली शहर में चर्चा छा गया, लैला मजनू का इश्क अब सबके लबों पे आ गया।

आ जा कि रात ने बाहें खोल रखी हैं, मेरे लफ्जों में तेरे लिए नमी घोल रखी है, तेरी एक झलक को तरसती हैं ये निगाहें, जरा करीब आकर तो देख, मैंने मोहब्बत दिल में सजा रखी है।

नजरों से यूं दिल चुरा लेने का हुनर कहां से पाया, बिना लफ्जों के सब कह जाने का ये फन कहां से आया। हम तो समझते थे खामोशी बस खामोशी होती है, पर तूने इशारों इशारों में दिल जीतना सिखाया।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। अजनबी थे, कोई पहचान भी नहीं थी दरमियां, एक ही मुलाकात में लगा जैसे मिट गई हो दूरियां। तुझसे मिलकर यूं लगा जैसे अपना ही कोई मिल गया। भीड़ में चलते चलते अचानक हम सफर ने जैसे हाथ हो थाम लिया।

तेरी पलकें काजल से जब बोझिल सी हो जाती हैं, मेरे दिल की धड़कनें भी धीमी सी हो जाती हैं, माथे की बिंदिया जब चांद को छू कर आती हैं, तेरे हर सिंगार पर मेरी नजर ठहर जाती है।

0: उसकी मुस्कान से रोशन होती है मेरी सुबह, उसकी पलकों के बंद होते ही होती है मेरी शब। सामने वाली खिड़की में तो अक्सर नजर आती है, पर न जाने मेरे सामने वो मोहतरमा आएंगी कब।
1: अरे ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

0: होता है।
1: आज के छाया गीत में बस इतना ही, दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: विचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था।

0: अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:05 हो चुके हैं। हमारी प्रसारण सभा अब संपन्न होती है। कल सवेरे 5:53 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।